मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 भाद्रपद माह की 25वीं तिथि। तदनुसार 17 सितंबर 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: दिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत का आराधना। भगवान से केवल कुछ मांगना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उन पर विश्वास बनाए रखना हमारे मन को, हमारे विश्वास को सबसे ज्यादा इसी से तो शक्ति मिलती है। मन में प्रेम, करुणा और विनम्रता का भाव विकसित होता है सिर्फ एक भक्ति से।

जहाँ मन में विश्वास हो वहाँ भगवान का वास होता ही है। जहाँ प्रेम से प्रभु का नाम लिया जाता है वहाँ हर पल भक्ति का एहसास होता है, और यही एहसास हमें आगे ले जाता है।

प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति धन्यवाद करना है, सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगना है। दिन की एक अच्छी शुरुआत हो, हमें धैर्य आए, आत्मविश्वास, प्रेम, दया और दूसरों की सहायता करने की भावना जागृत हो, यही तो है भक्ति।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, सच्चे भाव और अच्छे कर्मों से प्रकट होती है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे विचार अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों और हमारे कारण किसी के जीवन में खुशियां आए, कष्ट नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम में लाला लाजपत राय के विचार।
1: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृति के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणति का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से।

0: उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के विचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए अमरीश कुमार की बातचीत। विषय है कृषि अपशिष्टों का सही प्रयोग। एमएस चौधरी से अमरीश कुमार की बातचीत।

0: कृषि और किसानी में एक चीज देखा जा था कि जो उन अवशेष होते हैं, खासकर खरपतवार हो गवा और कटाई के बाद जो नीचे खरपतवार बचा और ओकर अवशेष बचा, ओका के तरीके से ठीक रखा जाए कि वो पर्यावरण का नुकसान न करे और लोगन के लिए फायदेमंद हो जाए। इकरे लिए आज बातचीत करे बारे हमारे साथ ML चौधरी साहब, ये अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त लखनऊ से वहाँ हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातचीत इनसी हुई, खास करके कृषि अवशिष्टन पर। तो अब फिर बातचीत की जाए। ML चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक।
0: खेती किसानी में देखा जाता कि बड़ी सारी जो नहीं परेशानियां है ओकर एक जड़ देखा जाए तो अवशेष होता है। एक किसान भाई लोगन देखा है जलाए दे थी, उसी बड़ा पर्यावरण को नुकसान होता है। इसी अवशिष्ट के का कहा जाता, एक कैसे पहचान की जाए कि हाँ किसी अवशेष है, एक बारे में जरा आप विस्तार से बताओ।
1: किसान भाइयों, फसल उत्पादन में जो पौधे हैं, तना है, उसकी पत्तियां हैं, ये सभी प्रकार के जो अवशेष हैं ये अक्सर किसान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसकी मृदा संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
0: जी,
1: हमें किसानों में जागरूकता लानी है कि पौधों के अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं ताकि उनमें उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सूक्ष्म तत्व जैसे लोहा, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, तांबा, इत्यादि एवं दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया नष्ट न हो।
0: चौधरी साहब, यह जानकारी दें कि जैसे जो फसल अवशेष होता उहमा पोषक तत्व मौजूद होता है,
1: जी
0: लेकिन जो किसान भाई यहाँ हमरे इनका बहुत कम उकरे बारे में जानकारी हो पावत है, जेकरे कारण उनका नष्ट कर देथिन। जरा एकरे बारे में बताओ कि अवशेष जोन होथिन एकर कैसे इस्तेमाल किन जाए कि जोन एमा अब पोषक तत्व हैं उनका फायदा किन जा सके।
1: हाँ, किसान भाइयों, बहुत अच्छा सवाल है। फसल अवशेषों की खेती में जलाने को एक अनुचित सिलसिला प्रारंभ हो गया है, जिससे न केवल कार्बनिक पदार्थ के लाभों से वंचित हो रहे हैं अपितु पर्यावरण और प्रदूषण की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पौधों के अवशेषों को जलाने से उनके जड़, तना और पत्तियों में सिंचित पोषक तत्व नष्ट होते हैं। फसल जलाने से मृदा ताप में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे के कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब आप खड़ी फसल दाना निकालने के बाद जो अवशेष है उसको जला देंगे
0: जी,
1: तो निश्चय ही आपको पशुओं के चारे की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अवशेषों को जलाते समय बगल के खेत में खड़ी फसल में आग भी लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
0: जी।
1: किसान भाइयों, कार्बनिक खादों, कंपोस्ट व पशु

0: की खाद और हरी खाद आदि का प्रयोग न होने से फसल के अवशेषों को जला देने के कारण उर्वरकों की मांग जैसे यूरिया है, डीएपी है, इसकी खपत बढ़ जा रही है और इसमें आपका बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। ये सर्वविदित है कि दलहनी फसलों की जड़ों में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति का बड़ा महत्व है। दलहनी फसल जैसे ऊट, मूंग, लोबिया आदि फसलों की फलियों तोड़ने के उपरांत उसे पौधों को पलट दिया जाए तो एक हरी खाद का काम करता है। पौधों के समस्त अवशिष्ट भूमि में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि फसल के अवशेषों को जड़ाएं नहीं, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या जड़ें हो, क्योंकि उसमें बहुत से जो पौधों को पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक हैं वो सब रहते हैं, इसलिए इनको कम से कम नष्ट न किया जाए।
1: बड़ी अच्छी बात बताए ना आप कि देखें कि सरकार चाहत यह है कि किसान भाइयों का जो आय है ओका कौन तरह से दुगुना किया जाए
0: जी।
1: और जब ये किसान भाई फसल का अवशेष जला दे थीं तो हम जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी यूरिया डाई वगैरह जो मात्रा है ओका बड़ा ज्यादा डालक पड़ता है। ऐसी होत का है कि किसान भाइयों का जो खर्चा है खेती का वो बहुत बढ़ जाता है। अगर किसान भाई एक जलावे ना बल्कि एक उपयोग हरी खाद वगैरह में करें तो कितना बढ़िया लाभ हो जाए। तो आप थोड़ा सा हरी खाद का होता और किसान भाई कैसे हरी खाद का प्रयोग करें, एक आप बनाएं कैसे, जरा एक बारे में विस्तार से बताएं तो किसान भाई बड़ा लाभान्वित हुई हैं।
0: किसान भाइयों आप जानते हैं कि हरी खाद में हम फसल सनई है, ढेंचा है, उर्द है, मूंग है, लोबिया है, इन फसलों को जो जल्दी से जल्दी सड़ जाती हैं खेत में, मिल जाती हैं मिट्टी में, इन्हीं का उपयोग करते हैं। हरी खाद का प्रयोग किसान भाई करें। इधर काफी दिनों से हरी खाद का प्रयोग लोगों ने बंद कर रखी। हरी खाद की फसलों को जब एक उचित प्रकार की तैयार हो जाए तो समूचा पौधे को पलटने वाले हल से उसको मिला देना चाहिए। तो मिला देने से जो उनके जड़ों में हमारे नाइट्रोजनस बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं और सॉइल की संरचना, मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि हरी खाद को न छोड़ें। अगर जैसे जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं तो आप हरी खाद से उसकी काफी कम से कम 30% तक पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हरी खाद का तो बहुत महत्व है और इसको अवश्य करें।
1: देखा किसान भाई कितनी बढ़िया बात बताएं कि आप हरी खाद का अगर प्रयोग करी हैं तो न सिर्फ आपके जो मिट्टी का गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया हो जाए बल्कि जो फसल का उत्पादन है आपका वह बढ़ जाए। यानी कम खर्चा में अच्छा आप उत्पादन कर ली हैं और जो खाद का प्रयोग आप रासायनिक खाद खास कर रहें ओकर कमी आ जाए। तो जैसे कि आप बताएं कि हरी खाद का प्रयोग किन जाए, खास करके ये जो अवशेष है यही अवशेष से कई प्रकार से किसान भाई हमरे ओकर कंपोस्ट खाद बना लें कि वो कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपने किसानी में कर सकें और फसल का उत्पादन बढ़ा सकें, एकरे बारे में जरा विस्तार से बताऊं कि कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाए।
0: किसान भाइयों बहुत अच्छा प्रश्न है। कंपोस्ट पहले लोग ज़्यादा बनाते थे लेकिन इधर कम बना रहे हैं, तो हमको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बिल्कुल प्रेरित होना चाहिए। आप कंपोस्ट खाद में होता क्या है कि पहले एक कंपोस्ट पिट तैयार किया जाता है, खाद का गड्ढा, और बड़े पेड़ों की जमीन पर गिरी हुई पत्तियां, कूड़ा, करकट इत्यादि को कंपोस्ट पिट में अनुपातिक रूप से उसमें डालते हैं। गोबर, मलमूत्र इत्यादि भी के अवशेष उसमें हम दर परत दर बिछा कर पिट में, गड्ढे में डालते रहते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। इस प्रकार ऐसा करने से कुछ दिनों बाद वो कंपोस्ट, 2-3 महीने बाद वो कंपोस्ट खाद बनके तैयार हो जाती है जिसका प्रयोग खेती में करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कंपोस्ट खाद भी बनाना तैयार करने की विधि पर सदैव आधारित रहें
1: जी
0: और इसका उपयोग करें। किसान भाइयों घरों में सब्जी बनाने हैं तो सब्जियों के छीलन उपरांत छिलके, जड़, तना, पत्ती इत्यादि अवशेष पदार्थ बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें गड्ढों में गड़ाकर खाद बनाई जा सकती है जो फसलों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। अब इधर ये देखा जा रहा है कि इसे धान की फसल है
1: जी।
0: अब जब से मशीनों से कटाई होने लगी है तो करीब 9-10 इंच जो है फसल के पौधे छोड़ करके ऊपर से कटाई होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो किसान के सामने एक समस्या होती कि इसको क्या करें, उसको जला देते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन अवशेषों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो उसमें नमी दे करके और करीब 20 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से अगर छिड़क दें तो वो जितने पौधे फूट खड़े होते हैं वो सड़ जाते हैं और एक प्रकार से खाद के रूप में भी तैयार हो जाता है, इसलिए उसको जलाएं नहीं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दें एमएल चौधरी साहब। आप किसान भाई निश्चित

और पर एकर उपयोग करी हैं, ओकर लाभ उठाई हैं और सेशन का ना जलई हैं ना ओकर खराब ना करी हैं, बल्कि कंपोस्ट खाद और हरी खाद बनाए के ओकर उपयोग करी हैं। आप एक कार्यक्रम में आयन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे MS चौधरी से अमरीश कुमार की बातचीत। विषय था कृषि अपशिष्टों का सही प्रयोग। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आशुतोष मालवीय को। विषय है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के घरेलू उपाय।
1: स्वस्थ रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है उनमें रोग व्याधियों का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाता, पर जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर होती है उनमें प्रायः खांसी, जुखाम, बुखार, पेट के रोग अथवा चर्म विकार पनपने लगते हैं। अभी कोरोना काल में भी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। रोग प्रतिकार शक्ति एक दिन में मजबूत नहीं हो पाती, इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली अनुशासित करनी पड़ती है। आपका भोजन, जल, निद्रा, दैनिक योग प्राणायाम आदि ही संतुलित होकर और नियमित होकर अत्यंत आवश्यक होता है कि आप अपने आहार पे पूरा ध्यान दें। आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति या इम्यूनिटी क्यों और कब कमजोर होती है? यदि आपका आहार संतुलित नहीं होता है या आप पूर्ण निद्रा नहीं लेते हैं, आपका वजन आपकी उम्र और लंबाई के अनुसार अधिक है या बहुत कम है, या आप लंबे समय में मानसिक तनाव लेते रह रहे हैं, आप धूम्रपान और शराब आदि का अधिक प्रयोग करते हैं या दैनिक आहार में फास्ट फूड, जंक फूड आदि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की भी रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर हो जाती है जिनके आसपास प्रदूषित वातावरण ज्यादा रहता है। ये सब तमाम कारण ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर करते रहते हैं। आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नियमित एवं अनुशासित होना अत्यंत जरूरी है। जब आपकी उम्र 30, 32, 35 तक होती है तो आप इन बातों को ध्यान नहीं दे पाते, पर अचानक जब आप किसी रोग परेशानियों से घिर जाते हैं तब आपको इम्यूनिटी का महत्व महसूस होने लगता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक कार्य है आपका आहार संतुलित होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। मौसम के फल और हरी ताजी सलाद, अंकुरित अनाज का प्रयोग अपने पाचन और उम्र के अनुसार अवश्य करना चाहिए। पर्याप्त जल का प्रयोग करें। जल आपके शरीर में एकत्र होने वाले विजातीय द्रव्य यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता रहता है। अपने शरीर और उम्र को ध्यान में रखते हुए दैनिक व्यायाम, योग, प्राणायाम अथवा खेल कूद करना अति आवश्यक होता है। इससे भी टॉक्सिन्स दूर होते रहते हैं तथा शरीर के सभी अंग, ऊतक और कोशिकाएं मजबूत होती रहती हैं। नियमित 7 से 8 घंटे की अच्छी निद्रा आपके शरीर की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने शरीर के रक्त को अम्लज न होने दें। शरीर का रक्त क्षारीय होना चाहिए। अम्लज यानी एसिडिक ब्लड होने से रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। अतः मौसम के फल, सलाद, अंकुरित अनाज, पर्याप्त जल, सूखे मेवे में बादाम और अखरोट का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। बादाम और अखरोट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है तथा शरीर के रक्त को एल्कलाइन बनाता है। अधिक मांसाहारी भोजन, तंबाकू, अधिक शराब, नशा, मिर्चा, तेल, मसाला, खटाई, फास्ट फूड ये आपके शरीर

0: की प्रतिकार शक्ति को कमजोर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आहार अवश्य लें, जिसमें मौसम के अनुसार गाजर, चुकंदर, टमाटर, पालक, नींबू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, अंगूर आदि अत्यंत लाभदायक होते हैं। प्रातः नहाने से पहले शरीर पर जैतून का या सरसों के तेल की मालिश अवश्य करें। इससे त्वचा विकार नहीं हो पाता तथा रक्तवाहिनियां उत्तेजित रहती हैं। गिलोय, घनवट्टी, हरिद्रा, गुड़ और मीठी नीम का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होता है। अधिक मानसिक तनाव, अनिद्रा, ईर्षा, क्रोध इम्यूनिटी को नष्ट करता है, अतः इनसे बचते हुए प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। इम्यूनिटी को अच्छी रखने के लिए स्वाध्याय, ईश्वर की उपासना एवं अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। प्रातःकालीन धूप अवश्य लें, इसमें होने वाली विटामिन डी आपकी हड्डियों और त्वचा को नई शक्ति देती रहती है।
1: रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के घरेलू उपाय, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष मालवीय को। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव तो 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 4 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा संदेश टू सोल्जर्स, और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खा का शहनाई वादन, 12:15 पर गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और 10:30 पर उस्ताद निषाद खा का सितार वादन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। लखनऊ केंद्र से सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम 9:30 पर।

9:50 पर और रात 7:45 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा और एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिए दिन में 11:00। 11:30 पर सुनिए बोलते नगमे कार्यक्रम।

12:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में सुनिए अनुराधा श्रीवास्तव के गाए लोकगीत के साथ मधु चौधरी की बातचीत। विषय है त्योहार तो मना रहे हैं, क्या उनकी परंपराएं भी समझ रहे हैं। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT का उमंग। 5:15 पर योजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाड़ी और 6:30 पर

पंचायत घर कार्यक्रम में सविता सागर और साथी के गाय लोकगीत के साथ सुने किसान चर्चा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा, 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: मतदानम् आगामि मासस्य षष्ठे दिनांके भविष्यति। मतगणना च आगामि मासस्य नवमे दिनांके भविष्यति। भारतेन स्वघोषितः पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्तायोगः अस्वीकृतः। भारतस्य कथनमस्ति यत् अवैधेन बलपूर्वकेण च आधिपत्येन अधीन भारतीय प्रदेश सम्बद्धासु व्यवस्थासु प्रवेशाय पाकिस्तानस्य कश्चिदपि वैधानिकाधिकारः नास्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार उपहिमालय पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं सार्ध सप्तवादने दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमायां विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। ये पहली रचना हमने ली है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। आवाज सुषमा श्रेष्ठा, पद्मनी कोल्हापुरी के, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है अग्निपथ फिल्म से, आवाज अजय अतल की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत एक बार फिर अजय अतुल का।

0: अग्निपथ फिल्म के इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को दी मंजूरी। देश भर के 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारम्भ। वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: कैबिनेट के इस निर्णय से सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
3: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दूरदर्शी निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के मजबूत कवच का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का सुनिश्चित लाभ मिलने से श्रमिकों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होगा और लाखों कामगारों को एक स्थायी तथा सम्मानजनक कार्य व्यवस्था भी प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर आज से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज विशेष आयोजन होंगे।
4: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स

0: का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस विशेष यात्रा के निमित्त प्रमुख नदियों और पवित्र संगमों जैसे गंगा, यमुना, आमी, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेतवा, अलकनंदा, कुआनो, वरुणा और सरयू सहित संगम का पवित्र जल एकत्रित किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि सेवा यात्रा पर निकलने वाले युवा बाइकर्स अगले माह गुजरात के वडनगर पहुंचेंगे।
2: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक ये वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
1: आज से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है।
4: बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी, लगातार ये सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है।
4: गोरखपुर में आज 2 मेडिकल कॉलेज, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं। महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कल शाम को गोरखपुर के 2 दिवंगत अधिवक्ताओं के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। पिछले 6 सितंबर को एक हादसे में दोनों अधिवक्ताओं की मौत हो गई थी। देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 शुरू हो गया है। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म

आणंद बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पुनर्गठित बोर्ड में प्रदेश के अयोध्या जिले से यतीन्द्र मिश्र को भी शामिल किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को दी मंजूरी। देश भर के 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खाका शहनाई वादन, राग ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग ललित। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पद यात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करना रोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
3: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
4: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
3: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
5: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
3: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।

0: इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान

0: Indian Territory under its illegal and forcible occupation. U.S. Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international to be played in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नाम निहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमरीका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का मौजू है सिलिकॉन से सिस्टम तक इको निज़ाम की तामीर। इस मौके पर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन से वाबस्ता आलमी और भारतीय कंपनियां, पॉलिसी साज अहदेदार, सरमायाकार, तहकीककार, स्टार्टअप इदारे, तालीमी इदारे और तलबा शरीक होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में भारत में शराकत दारी, सरमायाकारी, इख्तरा और सलाहियत साजी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुतवाजी सेशंस में डिस्प्ले इंडस्ट्री में पेशरफ्त, शराकत दारी और मुश्तरका इकदाम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 मुल्कों के गोलमेज इजलास और खवातीन की क्यादत पर एक फोरम शामिल होगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में एक जामे वैल्यू चेन का नुक्ता नजर अपनाया जाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, आलात और चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स तक के सफर को पेश किया जाएगा। इसमें 600 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी और 52 मुल्कों के नुमाइंदों, 400 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव और 150 से ज्यादा मुकर्रीन के साथ तकरीबन 50,000 अफराद की आमद मुतवक्के है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह और अवामी खिदमत के उनके 25 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान आज गुजरात में उनके आबाई कस्बे वार्डनगर से शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल तकरीबात के हिस्से के तौर पर वार्डनगर से वाराणसी तक एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज उनकी जाए पैदाइश वडनगर में बहबूद के कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला भूपेंद्र पटेल तारीखी शर्मिष्ठा झील पर बड़ी महाआरती में शिरकत करेंगे जहां पवित्र जल को एक कलश में इकट्ठा किया जाएगा और उसे वाराणसी जाने वाले बाइकर्स के सुपुर्द किया जाएगा। मुमताज अफराद झील से हटकेश्वर मंदिर तक पैदल मार्च करेंगे जहां वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अवामी खिदमत के पैगाम की तशहीर के लिए 250 बाइकर्स के रैली को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर उनके पार्लियामानी हलके वाराणसी में कई बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: जनाब मोदी की सालगिरह के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक का अहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी से वार्डनगर जाने वाले 500 नौजवान बाइकर्स की इज्जत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मुमताज अफराद भी मौजूद रहेंगे। इधर रियासत के वजीर JPS राठौर ने बताया है कि बाइक रैली शुरू होने से पहले पवित्र दरियाओं का जल

0: काशी में काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाएगा। खुसूसी यात्रा के लिए गंगा, यमुना, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेटवा, अलकनंदा, कुआनो और सरयू समेत बड़े दरियाओं और पवित्र संगम से पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: दिल्ली सरकार आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर चार बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। इनमें खिदमत, लगन और अवामी शमूलियत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा अवामी जिंदगी में वजीर आजम मोदी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली सरकार एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट, सड़कों, पानी की निकासी, पानी को साफ करने, तालीम, बिजली, अवामी सहूलियात और शहरी इलाकों की तजीम कारी से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम के तहत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा से तहरीक लेकर ये प्रोग्राम आवाम की शराकत और खिदमत के जज्बे का एक मजबूत पैगाम देगा। एक साथ 1,25,000 दियों का रोशन होना लोगों की ख्वाहिशात, आशीर्वाद, शराकत और कौम की खिदमत के तहत अहदबस्तगी की अलामत होगा। इस दौरान त्यागराज स्टेडियम में 11 बजे से शाम 5 बजे तक खून के अतिये का एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 2,500 यूनिट्स खून जमा करने का निशाना रखा गया है। दिल्ली की वजीर आला ने कहा है कि अलीपुर में जीटी करनाल रोड में वाके खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंड योगा का एहतमाम भी किया जाएगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा का मंत्र और पुख्ता अहद उनके इस सफर की खासियत रही है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत लगातार काम कर रही है। आज खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नजरिए को मेक इन इंडिया के जरिए अमली शक्ल दी गई है, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इख्तिरा का आलमी मरकज बनाने की एक बड़ी कौमी पहल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत PLI स्कीमों के जरिए मुल्क में 20,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान तैयार किया गया और 14,15,000 से ज्यादा मुलाजमत के मौके दस्तियाब कराए गए, ताकि एक खुद कफील मुल्क की तामीर की जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
0: सरकर्दा पहल मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई थी। इसकी बदौलत मुल्क एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की तैयारी बढ़कर 13,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 2014-15 में यह महज 1,90,000 करोड़ रुपए थी। मोबाइल फोन की बरामदात में 171 गुना इजाफा हो चुका है। भारत नेट दरामदकार से नेट बरामदकार बन गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड नजरिए को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे खुदकफील भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया है।
3: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
0: इधर राजकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर पार्थ गणंत्र ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया स्कीम के जरिए MSME शोबे, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ है।
4: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
0: इधर अहमदाबाद के एक स्टार्टअप मालिक ध्रुव पटेल ने कहा कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से स्टार्टअप इदारों के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के तरक्की के एक अहम वसीले के तौर पर खड़ा है, जिसके तहत कौमी पॉलिसी को जमीनी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात की कामयाबी में बदल दिया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम।

0: इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनाब मोदी की मिसाली अवामी खिदमत और वजीर आला से लेकर वजीर आजम का ओहदा संभालने तक 25 साल के उनके सफर में मुल्क की तामीर में उनके अहम रोल को सराहा। अपने पैगाम में मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अच्छी हुक्मरानी के कई पैमाने तय किए हैं और जामे तरक्की को नई रफ्तार दी है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। स्वच्छता ही सेवा मुहिम आज से मुल्क में शुरू की गई है। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत विकसित भारत इस साल स्वच्छता ही सेवा मुहिम के 5 अहम सुतून हैं, जो इस तरह हैं: सफाई सुथराई की अक्सर तब्दीली के निशानजद किए गए यूनिट्स और साफ सुथरे अवामी मकामात, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी, स्वच्छता से समृद्धि। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकफ वाजे और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तर्जुमान ने यह बात दोहराई कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी 1963 के नामनिहाद चीन पाकिस्तान सरहदी समझौते को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसका यह मौकफ रहा है कि यह गैर कानूनी और नाजायज है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन 17 सितंबर 1948 को साबिका रजवाड़े हैदराबाद के भारतीय यूनियन के साथ तारीखी इंजमाम की याद में मनाया जाता है। मरकजी सरकार साल 2022 से बाजाब्ता तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीबात का एहतमाम करती रही है। इस साल की बड़ी तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होगी जहाँ नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसका आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में किया था। इस स्कीम के तहत 30 लाख मुस्तफिदीन के इंदराज का संगे मील हासिल किया गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अफराते जर की शरह को बढ़ने से रोकने की कोशिश में ऐसा किया गया है जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान ने रूसी हुक्काम और उसकी मईशत के अहम सुतूनों के खिलाफ बंदिशों को मंजूरी दी है। इस इकदाम का मकसद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए जरूरी मालियाती वसाइल से महरूम करना है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अलाक्वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सेमी कॉन इंडिया का इफ्तिताह किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी आज करेंगे सेमी कॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह, 600 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। अखबार इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, हुकूमत का पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की हद 15,000 से 25,000 रुपए करने का ऐलान। बेशतर अखबार ने मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर भारत की मजम्मत और सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान से मुंसलिक शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अखबार ने इस खबर को भी अहमियत दी है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नामनिहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के ओहदेदारों और

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8

0: 800-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 800-001-4242।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और ये सफर आप तय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीलम सिंह के साथ। श्रोताओं, वक्त हो चुका है आपके विचारों को पढ़ने का। सुनने वाले श्रोताओं को हम बता दें कि आप भी अपने सुविचार हमारे इस कार्यक्रम में लिख भेज सकते हैं। कैसे? फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 8004926250। तो सबसे पहले विचार ले लेते हैं हम नीरा त्रिपाठी जी का। ये लिखते हैं, उन पर भरोसा मत करो जिनका व्यवहार वक्त के साथ बदल जाता है। भरोसा उन पर करो जिनका व्यवहार उस समय भी पहले सा रहता है जब आपका वक्त बदल जाता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिखा है नीरा जी ने। अगला विचार श्याम जी लिखते हैं नैनी से। नीलम जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानी कभी कम नहीं हो सकती। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ये विचार हमारे सुनने वाले श्रोता सुन रहे होंगे कि कभी भी दूसरों को वजह ना माने अपनी परेशानी का। और नीरज त्रिपाठी जी एक और विचार लिखती हैं। इन्होंने लिखा है कि जिंदगी के मसले जिंदगी भर ख़त्म नहीं होते। कल और थे, आज कुछ और हैं, कल फिर कुछ और होंगे। बहुत ही सुंदर विचार लिख भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। वारिश अली जी लिखते हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम आपको भी। ये लिखते हैं कि जब पाप करने का ख्याल आए तो तीन बातें याद रखना, भगवान देख रहा है, देवी देवता आपके पापों को लिख रहे हैं, और तीसरी बात, मौत आनी है, मौत के बाद ऊपर वाले यहाँ सबका हिसाब किताब में हो रहा है। बहुत ही सुंदर विचार। अगर ऐसी बातें सभी सोचें तो कोई किसी प्रकार की गलती ना करे। अगला विचार लिख रहे हैं दिनेश वर्मा जी, अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल को चमकदार और साफ कर देती है। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने हमें लिख भेजा है। ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार आप हमें लिख भेजिए। हमें इंतज़ार रहता है आपके इन्हीं विचारों का, और हम समय समय पर बताते रहते हैं कि आप अपने विचार कैसे हमें लिख भेजेंगे। और हम बात कर रहे हैं आज अपने भगवान विश्वकर्मा की। भगवान विश्वकर्मा का निर्माण शिल्प और तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर कारखानों, कार्यशालाओं और विभिन्न संस्थानों में मशीनों, औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है। जीवन में सफलता केवल सपनों से नहीं मिलती, सपनों को सच करने के लिए मेहनत, हुनर और लगन की जरूरत पड़ती है। विश्वकर्मा पूजा हमें यही संदेश देती है कि हम अपने काम का सम्मान करें, अपने औजारों का सम्मान करें और अपने श्रम का सम्मान करें। विश्वकर्मा पूजा दिवस एक हिंदू भगवान विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार के लिए उत्सव का दिन है। उन्हें स्वयंभू और विश्व का निर्माता माना जाता है। उन्होंने द्वारिका के पवित्र शहर का निर्माण किया जहाँ कृष्ण ने शासन किया, पांडवों की माया सभा और देवताओं के लिए कई शानदार हथियारों के निर्माता रहे। उन्हें लोहार कहा जाता है। श्रोताओं, समय के साथ विश्वकर्मा पूजा का स्वरूप ही बदल रहा है। आज पूजा केवल पारंपरिक औजारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक मशीनों, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, उपकरणों और नई तकनीक को भी इसमें शामिल किया जाता है। बदलते स्वरूप का संदेश यही है कि तकनीक बदल सकती है, मशीनें बदल सकती हैं, लेकिन श्रम और सृजन के प्रति सम्मान कभी नहीं बदलता और ना ही बदलना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा केवल मशीनों की पूजा नहीं, उन हाथों का सम्मान है जो निर्माण और विकास की कहानी लिखते हैं।

इसी के साथ आप सभी को विश्वकर्मा पूजा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलते चलते हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि जीवन में आशा और लक्ष्य का संतुलन बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें हमारा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: ना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में अभी आपने सुना बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत। नीलेश मिश्रा की बोल थी और संगीत था प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर जुबिन नौटियाल की आवाज़ में जॉली LLB 2 फिल्म का ये गीत, साथ में नितिन मोहन की आवाज़।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

0: 8700142424 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424 पर।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अगला व अंतिम गीत सुनिए बर्फी फिल्म का, आवाज श्रेया और निखिल की, बोल निखिल के, संगीत प्रीतम का।

फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप अगला कार्यक्रम।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
1: सुल्तानपुर में प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने लम्बुआ और जयसिंहपुर में नवनिर्मित उप निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्रेता विक्रेताओं को पारदर्शी और बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में निबंधन विभाग का राजस्व 11,000 करोड़ से बढ़कर करीब 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। नए कार्यालयों में वातानुकूलित परिसर, वेटिंग रूम और CCTV की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 4,000 एवं सहायिकाओं के मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं में खुशी की लहर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा कि मानदेय बढ़ने से हमें आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी। सरकार ने हमारी मेहनत और जिम्मेदारियों को समझते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इससे हम और उत्साह के साथ बच्चों और महिलाओं की सेवा कर सकेंगे। दुबेपुर विकास खंड के टिकरिया केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम सिंह ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के मानदेय में दूसरी बार वृद्धि किए जाने से हम सभी बहुत खुश हैं। सरकार का यह निर्णय हम लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। इसके लिए मैं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।
1: सुल्तानपुर जिले में पिछले करीब एक माह से जारी बारिश ने जहां खेतों में धान की फसल को संजीवनी दी है, वहीं जर्जर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। लगातार बारिश के चलते कच्चे मकान और जर्जर दीवारें गिरने से कम 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। दोस्तपुर के खालिसपुर डिंगुर में कच्चा मकान गिरने से वृद्ध की मौत हुई, जबकि जयसिंहपुर के कोची गांव में जर्जर मकान की दीवार गिरने से महिला की जान चली गई और उसका बेटा घायल हो गया। इससे पहले भी बारिश के दौरान कच्ची दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत और महिला के घायल होने की घटना सामने आई थी। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुल्तानपुर और वाराणसी से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इससे नियमित ट्रेनों में वेटिंग यात्रियों को राहत मिलेगी। सुल्तानपुर LTT स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार को सुल्तानपुर से सुबह 4 बजे रवाना होगी। वापसी में LTT सुल्तानपुर स्पेशल 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 3 बजे चलेगी और रात करीब 11 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। त्योहारों के मद्देनजर नवागत पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में जिले की पुलिस ने नगर बाजारों और कस्बों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें उनके दायित्वों का बोध कराया और सतर्कता के साथ जनसेवा के निर्देश दिए।
0: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
3: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊंचाहार में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी वेशभूषा एवं रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन सभी श्रद्धालुओं के मन में भक्ति एवं शक्ति का भाव समान होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और सकारात्मक वातावरण ही समाज की वास्तविक ताकत है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय शेखपुर समोधा का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही शैक्षिक, आवासीय एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला, रसोई घर, डाइनिंग हॉल तथा छात्रा

0: छात्रावास का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की गुणवत्ता एवं छात्रों को मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण एवं सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
1: मैंने बच्चों से बैठ के बात करी, उनकी बातें सुनी। यहाँ पे हॉस्टल में जनरली जैसे जो इश्यूज होते हैं तो वो हमने ठीक कराने के लिए बोल दिया है। खाने में भी जो कमियाँ थी वो भी ठीक कराने के लिए बोला है। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए भी बोला है। बिजली की जो समस्या है तो उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बेटर करेंगे। जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसको भी बेटर करने की कोशिश करेंगे।
0: रायबरेली के जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने जनपद के कृषकों से अपील की है कि वर्तमान समय तोरिया की बुआई के लिए उपयुक्त है। जिन कृषकों के खेत बुआई योग्य हो गए हैं वे आवश्यक खेत की तैयारी एवं जुताई कर तोरिया की बुआई में विलम्ब न करें तथा शीघ्र बुआई पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि तोरिया कम अवधि में तैयार होने वाली महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो सामान्यतः 70 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कम अवधि में तैयार होने के कारण इसे रबी मौसम में अच्छी नकदी फसल के रूप में अपना कर कृषक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। समय से बुआई करने पर फसल की स्थापना एवं बेहतर उत्पादन की संभावना रहती है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी मौसम में कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चना, मटर, मसूर, सरसों एवं तोरिया के निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों एवं तोरिया के बीजों के सामान्य वितरण हेतु 50% अनुदान पर बुकिंग भी की जा रही है। इच्छुक कृषक अपनी आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर बीज की बुकिंग कर सकते हैं। रायबरेली के गंगासु घाट स्थित सौदरा गृह के आसपास जलभराव होने तथा अंतिम संस्कार में कठिनाई होने का जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा गंगासु घाट एवं डलमऊ घाट का स्थलीय निरीक्षण कर मौके की स्थिति का जायजा लिया गया। गंगासु गंगा घाट पर कुछ स्थानों पर जलभराव पाया गया। अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके दृष्टिगत प्रशासन द्वारा पूर्व से ही वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। शवदाह एवं अंतिम संस्कार हेतु अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में भी लोगों को अंतिम संस्कार कराने में कठिनाई न हो। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अयोध्या संजय कुमार झा ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय रायबरेली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता की जाँच की गई तथा कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ने कार्यालय में कार्यरत समस्त पटल सहायकों के पटल पर जाकर कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कार्यालय के परिसर की साफ सफाई एवं पत्रावलियों के रखरखाव पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यालय परिसर में फीस से संबंधित होर्डिंग लगाए जाने तथा कुछ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार हुआ। सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एपिसोड के साथ आप सभी का खैर मकदम है। आज के सेहतनामा की थीम है ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद। इस मौजू पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर सर्जन इम्तियाज अहमद साहब, लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल और जनरल सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
0: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्या?
1: देखिए, पहले के दौर में चीरा लगा के जो सर्जरी होती थी वो काफी बड़ी होती थी
0: जी।
1: तो उससे मरीज को बहुत सारी परेशानियां होती थी। एक तो दर्द ज्यादा होता था
0: जी, जी।
1: हॉस्पिटल में स्टे रुकना जो है वो काफी बड़ा हो जाता था
0: जी।
1: फिर कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे, जो कहते हैं कि टाका पक गया। फिर बाद में उसमें हर्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो फिर ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो आई उसको ये है, स्पेशली अब तो सब में हो रही, जिसको नाम दिया गया मिनिमल एक्सेस सर्जरी। तो इसमें छोटे छोटे चीरे लगते हैं, 10 मिलीमीटर के 5 मिलीमीटर के चीरे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए गालबेडर की सर्जरी है जो बहुत कॉमन है
0: जी, जी।
1: तो गालबेडर की सर्जरी भी 3 चीरे से और कोई कोई 4 चीरे से करते हैं। 4 पोर्ट कहते हैं उसको, ये जो डालते हैं जिसको, वो पोर्ट कहा जाता है
0: जी, जी। उसमें कैमरा के साथ जो
1: तो एक यहाँ नाभि के नीचे डालते हैं जिससे कैमरा दिखाते हैं, एक यहाँ ऊपर स्टर्नम के नीचे जस्ट यहाँ पे डालते हैं, और एक या दो, जैसे जनरली मैं एक डालता हूँ, कोई 2 डालते हैं, ठीक है। तो वो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ये गालबेडर की सर्जरी जिसको कहते हैं 4 पोर्ट या 3 पोर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
0: जी, जी, जी।
1: इसका फायदा क्या होता है कि मरीज 36 घंटे में छुट्टी होकर के घर चला जाता,
0: घर जा सकता है
1: जी। और जो चीरे वाली सर्जरी होती है उसमें मरीज कम से कम 5 से 6 दिन, और अगर कोई दिक्कत हो गई तो महीनों भी लग सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब यहाँ पर एक सवाल बन रहा है और हमारे सामने गौर से सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इन दोनों में महंगा और सस्ता, क्योंकि हर तरह के हमारे सामीन हैं, वो जानना चाहते हैं महंगा कौन होता है और कितना महंगा, और ये ओपन अगर सर्जरी ये सस्ती तो कितनी सस्ती, ऐसे आप हमारे सामने जरूर।
1: ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हर सर्जरी का अलग अलग होता है। मान लो एग्जांपल हम गालबेडर की बात करें या अपेंडिक्स की बात करें, ठीक है, इस तरह की जो कॉमन सर्जरी होती है, ठीक है। तो इसमें और उसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो आपकी मॉर्बिडिटी है, जिसको कहेंगे कि हॉस्पिटल में आप रुक रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसलिए कहा गया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर द गॉलब्लैडर गोल्ड स्टैंडर्ड है।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अभी आपने एक जिक्र किया था अपेंडिक्स का डॉक्टर साहब और हार्निया का, हमारे जो सामईन है वो हर तरह के लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हार्निया आम जबान में उसको क्या कह सकते हैं जो हमारे मरीज समझ सके।
1: देखिए, हर्निया ये है कि जैसे कहीं पे मान लीजिए आपकी टेबल में ही छेद हो जाए, कमजोर हो गई कहीं
0: जी, जी,
1: ठीक है, या चेयर में छेद हो गई, ठीक है, अगर जिसमें कपड़े की होती बैठने के लिए, तो क्या होगा कि बैठेंगे तो लटकेगी।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो उसी तरह से डिफेक्ट हो जाता है।
0: ओके, ये आंतों की एक तरह की दिक्कत होती है, राइट?
1: ये आंतों की नहीं, ये वाल की डिफेक्ट होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी।
1: तो जब डिफेक्ट होगा तो वहां से आंत तो बाहर आएगी ना।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
1: अगर आपको छेद हो जाएगा दीवार में तो पानी भरा हुआ पानी बाहर आएगा, या कोई भी चीज उसमें डली हुई है
0: जी,
1: तो ये होता है।
0: अब लैप्रोस्कोपिक के बाद कोलोरेक्टल सर्जरी क्या है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, कोलोरेक्टल सर्जरी, इसमें जो मैं सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं कि जिनको फिशर हो जाता है, जिनको फिस्चुला हो जाता
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: ठीक है, या पाइल्स जिसको कहते हैं, हेमोरॉइड कहते हैं
0: जी।
1: और ये सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, लेकिन मरीज उसको सबको एक ही समझता है, वो कहता है पाइल्स हो गया।
0: हाँ, हाँ, अक्सर लोग,
1: ठीक है,
0: खासतौर से गांव में उसको पाइल्स ही बवासीर बोलते हैं।
1: उसका सबसे बड़ा रीजन है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज।
0: बिल्कुल।
1: अब कब्ज क्यों होता है? पहले के लोगों में कब्ज बहुत कम होता था।
0: हाँ, ये तो है।
1: आजकल के दौर में कब्ज बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास जो मरीज आते हैं उसमें 10 में से अगर आप कहिए तो 5 को कब्ज होता ही होता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और उसका रीजन क्या है? एक तो डाइट, दूसरे जो हमने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अख्तियार कर रखा, सिडेंटरी लाइफ की, मतलब यहाँ से निकले तो कार में बैठ गए, बाइक से बैठ गए, साइकिलिंग बिल्कुल छूट ही गया है, फिजिकल एक्टिविटी छूट ही गई है। डाइट का क्या है कि पहले के लोग आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, मल्टीग्रेन जो आजकल हो गया, ठीक है, हरी सब्जी, सलाद, ये सब लेते थे। इसलिए ये होता था कि उनका ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था
0: और ना
1: कॉन्स्टिपेशन होता था, ना जो फैटी लीवर कहते हैं वो होता था, वो हेल्दी रहते थे 50 साल तक, 60 साल तक, उनको कोई बीमारी नहीं।
0: रेगुलर मेहनत किया करते थे, कभी खेतों में करते हैं, कभी कहां करते हैं, रेगुलर मेहनत किया करते थे जी।
1: अब बात करेंगे घरों के अंदर की, तो पहले घरों में होता था कि चक्की पीस रहे हैं, ये कर रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं हाथ से, ये फिजिकल एक्टिविटी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो चीजें अब सब मशीन ने ले लिया।
0: हाँ।
1: तो ना तो घर के अंदर काम है ना घर के बाहर, क्योंकि साइकिलिंग या इस तरह की चीजें, पैदल चलना, ये सब बंद हो गया, और वहां पे घर पे ये काम बंद हो गया, तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तीसरे, हम बाहर की बनी चीजें खाने लगे। बाहर की बनी चीजों में क्या हुआ? मैदा और बेसन,
0: ठीक
1: है, और चीज, पनीर, हाई फैट डाइट, तो इसमें तो फाइबर है नहीं। अब जब फाइबर

0: है नहीं, तो मोटिलिटी जो आंत की होती है, जो आंतों का मूवमेंट होता है, उसमें फाइबर का बहुत अहम रोल होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और जो फाइबर होता है,
1: हाँ बिल्कुल,
0: जिसको पेरिस्टेल्सिस कहते हैं,
1: जी जी
0: ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये चिपक जाता है हाथों से और फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज होगा। और जो सबसे बड़ी आंत होती है उसका जो लास्ट हिस्सा होता है पानी का एब्जॉर्प्शन कहता है, जिसको कोलन कहते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे कहा ना कि कोलन, उसके बाद रेक्टम होता है, ठीक है, उसके बाद फिर मलद्वार होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो कोलन में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हार्ड हो जाता है स्टूल। अब जब स्टूल हार्ड हो गया तो जो मलद्वार होता है उसके पास की जो म्यूकोसा होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, वो बहुत नाजुक होती है। वहां ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो वो फट जाएगी। और जब वो फटेगी, टाइट कोई चीज निकली जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा, तो फट जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और उसी को कहते हैं फिशर, और वो पेनफुल होता है, फिर दर्द होता है आदमी को। और फिर ज्यादा गहरा घाव हुआ तो ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो ताजा खून आएगा।
1: और ऐसे लगा हुआ हाल में बैतुल खला जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है।
0: जी, उसमें एक रीजन और हुआ कि जो वेस्टर्न हमने कल्चर अख्तियार करा, तो उसमें जो सीट आती है उसमें जो हम बैठते हैं, तो हम वो पूरा उकड़ू नहीं बैठ पाते।
1: हाँ,
0: से तो जो मसल्स होती है वहां की, वो अपना जो फोर्स लगाते हैं वो नहीं, पेरिनियल मसल कहते हैं,
1: जी
0: लगा नहीं पाती। तो आपका यह है कि इधर से भी मूवमेंट कम है, और जो वहां से इजेक्शन के लिए होना चाहिए
1: वो भी
0: नहीं हो पा रहा है प्रॉपर।
1: सही बात है,
0: ठीक है। हालांकि उसके लिए भी आया है कि टी शेप में वहां पे लगा लीजिए तो पैर ऊपर उठ जाएगा। चौथी बात यह कि टाइमिंग का,
1: हाँ,
0: खाना खाने का ना टाइम है कि किस टाइम खाएंगे किस टाइम नहीं खाएंगे,
1: और ना सुबह उठने का,
0: और ना सोने का ना उठने का टाइम। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज,
1: ठीक
0: है, जो कहावत थी उसका उल्टा हो चुका है ये। और स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो चुकी है,
1: ये तो तकरीबन 90% लोगों में देखा जा रहा
0: है। जो एक कंट्रोल होता है कि दिमाग का और आंतों का भी रास्ता एक है,
1: जी,
0: तो वहां से जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होते हैं, जो इस तरह के रिफ्लेक्सेज होते हैं, तो वो हार्मोनल कंट्रोल होता है जिससे आंतों का बहाव हो जाता है। आजकल के जो बड़े जो कहते हैं कि हायर क्लास है अपर क्लास है, उसकी बीमारियां हो गई हैं, जिसको कहते हैं IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
1: जी।
0: अब उसमें किसी किसी को कब्ज हो जाएगा और किसी किसी को डायरिया हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात।
0: आंतों का मूवमेंट अगर कम हुआ तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, तो टट्टी टाइट हो जाएगी, तो कब्ज हो जाएगा।
1: जी, जी, जी, जी।
0: और अगर आंतों का मूवमेंट ज्यादा हो गया, हार्मोन निकला, जल्दी जल्दी आंतें मूव कर रही, तो उसको पानी सोखने का मौका कम मिलेगा, तो क्या होगा, लूज स्टूल हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस का होता है, इसीलिए अभी तक IBS के लिए कोई एग्जैक्ट दवा नहीं बन,
1: और उसका जो है सिर्फ,
0: और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसमें कि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे सीटी कराएंगे सब नॉर्मल आएगा,
1: और पता भी नहीं चल रहा, बीमारी भी बढ़ रही है, और वो परेशानी है, वो समझ नहीं पा रहे।
0: हाँ, जो एंडोस्कोपी होती
1: है, जी जी जी। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे अभी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया पथरी का, पित्त की पथरी यानी गैलब्लैडर, और इसके अलावा किडनी, गुर्दे की पथरी। आजकल हर तीसरा चौथा आदमी जिसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसकी पथरी जरूर निकल रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है?
0: देखिए, इसमें तीन चार चीजें अहम बात है। एक तो हमने कहा कि भाई डाइट का, कि आप फैट ले रहे हैं, तो फैट क्या होता है कि फैट जाएगा लीवर से, तो लीवर फिर वहां भेजेगा, तो गालबेडर में जब पहुंचता है तो गालबेडर में जो बाइल पहुंचता है वो फैट लेके पहुंचा है।
1: बिल्कुल।
0: तो फैट नीचे बैठ जाएगा,
1: और हाँ
0: ठीक है,
1: बिल्कुल,
0: तो फैट नीचे बैठेगा, तो उसमें क्या होता है कि फिर कैल्शियम के भी एक कण आते हैं, कैल्शियम की बॉडी में, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के तो वो क्या बन जाता है, उसको सलज कहते हैं। सलज का मतलब बालू, जैसे बालू के जर्रे,
1: जी जी जी,
0: ठीक है, सलज कहते हैं,
1: उसी टाइप की,
0: ठीक है, सलज कहते हैं। अब लोग ये सवाल करते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब, ये छोटी पथरी है तो ये तो दिक्कत नहीं, बड़ी पथरी में दिक्कत होगी? नहीं, वो छोटा आदमी ज्यादा परेशान करता है,
1: तंग करता है।
0: अब वो गालबेडर से चला जाएगा नीचे नली में, अब नीचे नली में चला गया तो वहां पे पैनक्रियाज होता है बगल में, दोनों आपस में खुलते हैं 1-2 मिलीमीटर के आसपास, कभी कभी साथ में भी खुलते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है, तो पैनक्रियाटाइटिस हो जाती है, जो कि बहुत गंभीर समस्या है,
1: वो गड़बड़ हुई तो डायबिटीज में वो शुरू हो जाएगा।
0: अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो फिर आपका आगे BP होने के चांसेस बढ़ेंगे, आपको आगे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये साइन है, क्योंकि भाई शुरुआत लीवर से हो रही है। तीसरी एक चीज है कि अभी देखा गया, पहले ये कहा जाता था कि 5 ईयर की फीमेल फाइटी फर्टाइल फेयर, इस तरह की चीजें, अब वो चीजें खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि अब तो 20 साल में भी हो रहा है, 25 साल में भी हो रहा है।
1: ये बड़ी दिलचस्प बात है, उम्र बहुत कम है, बीमारी बहुत बड़ी है।
0: 9 साल के बच्चे का ऑपरेशन करा है,
1: हाँ,
0: जिसको कि गालबेडर स्टोन, 11 साल के बच्चे का ऑपरेशन, 13 साल के बच्चे का ऑपरेशन करा है दूरबीन से, जिसको गालबेडर स्टोन,
1: अब बताइए,
0: और मल्टीपल स्टोन
1: है, यानी बहुत सारे।
0: इसमें जब करा गया तो ये जेनेटिक भी है।
1: अच्छा,
0: आप इसमें जो यंग एज में अगर गालबेडर मिल रहा है तो आपको फैमिली में
1: किसी न किसी,
0: मम्मी को स्पेशली फीमेल से आता है,
1: हाँ,
0: और फीमेल में भी गालबेडर स्टोन ज्यादा कॉमन होता है कंपैरिजन टू मेल,
1: मेल में, जी।
0: उसमें एक वजह ये दी जाती है कि एक तो जो प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान भी बढ़ता है, क्योंकि गालबेडर का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है,
1: हाँ,
0: क्योंकि मोटिलिटी भी डिसऑर्डर की वजह से होता है, भाई जब रुकेगा गालबेडर तो वहां पे स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा
1: है,
0: तो इसलिए फीमेल में कंपैरिजन टू मेल ज्यादा होता है। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है, इसलिए कहते हैं कि भाई मोटापा कम करिए,
1: आजकल तो
0: मोटापा सारे बीमारियों की

0: जड़
1: जड़ है और ये खुद एक बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन यहाँ पर है, और बल्कि उनका कहना ये होता है कि अगर दूरबीन से यानी लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराते हैं पथरी के लिए तो दोबारा चांस रहता है, हालांकि उनको शायद ये नहीं पता कि वहां तो पूरा का पूरा पित्ता ही निकल जाता है, लेकिन गुर्दे में उनका कहना है कि अक्सर कराने के बाद फिर से 2-4-5 महीने के बाद वो पथरी आ जाती है, ऐसा क्यों?
2: एक्चुअली होता क्या है कि जैसे गॉलब्लैडर के स्टोन होते हैं, तो इसमें जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, एक पिगमेंट स्टोन भी होते हैं, एक मिक्स स्टोन भी होते हैं। वेस्टर्न कंट्री में मिक्स स्टोन ज्यादा कॉमन है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज्यादा कॉमन है। उसी तरह से किडनी में भी कई तरह के स्टोन होते हैं, 4-5 तरह के स्टोन होते हैं। गॉलब्लैडर का क्या है कि गॉलब्लैडर का अगर आपने निकाल दिया तो कुछ दिनों तक थोड़ी दिक्कत होती है, 3-4 महीने, उसके बाद जो नली होती है सीबीडी वो डायलेट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गॉलब्लैडर के बाद डायरिया हो जाता है, बिलियरी डायरिया। क्यों? क्योंकि बाइल पहले तो स्टोर हो जाता था, स्टोर हो नहीं रहा तो कंटिन्यूस सिक्रीट हो रहा है, तो बाइल एसिड की वजह से वो जो डायरिया होता है। इसीलिए कभी कभी मरीज हमारे पास ऑपरेशन करा के आता है तो कुछ मरीजों की शिकायत होती है कि सर ऑपरेशन के बाद हमें थोड़ा सा पतली टट्टी हो रही है, लेकिन कुछ में होती है, सब में नहीं होती है। तो उसको इसीलिए टर्म दे दिया है बाइल एसिड डायरिया। दूसरा ये कि हम गॉलब्लैडर की सर्जरी करते हैं तो पूरा गॉलब्लैडर निकाल देते हैं
1: बिल्कुल,
2: लेकिन किडनी को आप नहीं निकाल सकते
1: बिल्कुल।
2: तो किडनी में क्या करेंगे, सिर्फ स्टोन निकालेंगे। अब बात समझने वाली यहाँ पे है कि यहाँ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। आपने स्टोन निकाल दिया लेकिन जो बॉडी में अंदर जेनेटिक चेंजेज हैं, और इसमें भी फैमिली हिस्ट्री मिलती है, किसी फैमिली में कॉमन होते हैं कि पता चला एक भाई को, दो भाई को, तीन है, चौथे को नहीं, या फादर को है, मदर को है, इस तरह से है
1: बिल्कुल।
2: तो वो स्टोन वो खाएगा, वो पिएगा, फिर बनेगी, क्योंकि किडनी तो है ना, आपने सिर्फ स्टोन निकाला। एक पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने उससे बताया, मैंने कहा देखिए अभी आपकी सर्जरी आप दूरबीन से करवाए क्योंकि आगे चल करके आपको और सर्जरी कराने पड़ सकती है 2-3 बार। उस मरीज की उम्र 35 से 40 के बीच में थी, यू कैन बिलीव। उसने कहा कि सर ये मेरी 4 सर्जरी हो चुकी है, 5वीं सर्जरी है, और 40 साल के आसपास उम्र रहेगी, 40-42 साल।
1: बताइए पहले से वो जो है 4 सर्जरी करा के घूम रहा है बंदा, ये बड़ी हैरत की बात। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और यहाँ पर आई है, गुर्दे की पथरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या अगर बड़ा पत्थर है 15 mm 20 mm तो क्या उसको तोड़ के निकालते हैं? और एक ये अफवाह फैली है अक्सर लोगों में कि उसके क्रिस्टल रह जाते हैं और फिर पानी कम पीने की वजह से वो फिर से डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ?
2: अब गुर्दे की पथरी में एक एडवांसमेंट और हो गया
1: जी,
2: ये तो दूरबीन से करते हैं, एक RIRS कहते हैं, पेशाब के रास्ते से जा करके और उसको वहां पे पूरी पथरी तोड़ दी जाती है और वो बिल्कुल चूरा चूरा करके पेशाब के रास्ते निकाल देते हैं, कहीं आपको चीरा लगेगा ही नहीं।
1: जी जी जी। अच्छा अगर हम अपने सामान को बता दें कि अगर सर्जरी पर ऑपरेशन पर हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से ये ना पूछें कि ऑपरेशन से पहले तैयारी कैसी होती है तो प्रोग्राम में शायद ये बात बेमानी होगी। डॉक्टर साहब आपको गॉलब्लैडर निकालना है किसी का, तो उसको 24 घंटे पहले आप किस तरह की जाँच करते हैं और क्या एहतियात करते हैं? भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वरना खराब हो जाएगा। हमारे सामान ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन से 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्या जरूरी हिदायत आप लोग देते हैं?
2: देखिए इसमें 2 तरह के मरीज होते हैं, एक में जिसमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी का मतलब कि उसको कोई डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, थायराइड की दिक्कत नहीं है, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो कोई नहीं है, सांस फूलने की दिक्कत नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट यंग पेशेंट हो, तो उसकी जांच कोई जरूरी नहीं कि 2 दिन पहले ही करा जाए, 1 हफ्ता पहले भी कराई जा सकती है।
1: ओके।
2: उसमें खून की कुछ जांचें होती हैं, एक्सरे होता है और ये होता है, ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता
1: है। बिल्कुल सही बात है।
2: और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें हिस्ट्री पेशेंट से मिलना, उससे बात करना, कई बार ये होता है पेशेंट को पता नहीं होता है और इंसिडेंटली डायबिटीज डायग्नोस होती है,
1: हो जाती है,
2: इंसिडेंटली थायराइड डायग्नोस हो जाती है, या इंसिडेंटली कुछ और बीमारी निकल आती है,
1: उसको पता भी नहीं
2: और पेशेंट को पता नहीं होता।
1: बिल्कुल।
2: कई बार ऐसा हुआ है कि बीपी मरीज आया हमारे पास में, बीपी उसका 180 है और उसको पता नहीं, उसको सरदर्द की खाली शिकायत
1: रहती है।
2: तो हिसाब से 2 तरह के हो गए पेशेंट, एक वो हो गए जो नॉर्मल पेशेंट हो गए, उसके लिए हाँ सर्जरी से बेहोशी देने से पहले वो 8 घंटे का सॉलिड का और 6 घंटे का लिक्विड का वो NPO करते हैं, जिसको कहते हैं नील परवलरी, मुंह से कुछ नहीं खाना,
1: खाना नहीं, पेट एकदम खाली रहे, मैदा बिल्कुल खाली रहे, उसमें कुछ पानी भी शायद नहीं,
2: कुछ भी नहीं। मैं इसमें एक मजेदार चीज बताऊं,
1: आप जरूर
2: बताएं। एक पेशेंट को NPO कराया गया, जब OT टेबल पे पहुंची तो हमने उससे बात करी, पेशेंट को बेहोशी देने से पहले भी बात करते हैं
1: जी,
2: तो हमने कहा आपने कुछ खाया पिया तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं खाया पिया है। तो मुझे लगा कि इसकी आवाज कैसी है, तो हमने कहा आवाज कैसी है, कुछ नहीं, मुंह खोलो, तो गुटखा, तो बोले खाना और पीने से मना किया था ना, गुटखा से थोड़ी मना किया था।
1: ये बड़ी दिलचस्प बात है। और लतीफा,
2: तो उसके बाद से मैं गुटखा भी पूछने लगा कि गुटखा तो नहीं खाया।
1: सामान इसको लतीफा मत समझिए, इबरत हासिल करने की बात है कि आप जो खाते हैं टोबैको हो या जो भी चीज, ये हमेशा जिस्म के लिए खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट घर चला जाता है तो 2-3 चीजें बहुत खास हो जाती है। अब वो घर पहुंचा है तो सबसे पहले उसको क्या खाना चाहिए, दूसरी चीज एक बड़ी चीज ये है कि वो नहाए या ना नहाए, ऐसी कंडीशन में क्या क्या जरूरी चीजें वो जरूर बताएं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज पूछी। और अब तो मैं छुट्टी का अगर पर्चा लिखता हूँ किसी मरीज को तो हिंदी में लिख देता हूँ, रोज नहाएं। क्योंकि मरीज पता चला कि गया घर और 10 दिन बाद टांके कटवाने आए, तो 10 दिन उसने अगर नहाया भी है तो टांकों को बिल्कुल ढक के रखता, उस पर ना खोलता ना पानी पड़ता।

0: करने देते, तो वो कहता पानी पड़ेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बहुत भ्रम है, गलत फहमी है ये,
1: बहुत सही।
0: ठीक है, हम उसको कहते हैं कि भाई साबुन कोई भी हो ये साबुन से, और नहाए, और टाकुओं को आजकल आ जाते हैं बहुत सारे पैकेट में आते हैं जो स्टाइल होते हैं,
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: उसे डाइप कर लें, और लैप्रोस्कोपी में तो कुछ करना भी नहीं होता है,
1: छोटे से
0: क्योंकि वो 2 रुपए का बैंडेज आता है, उसी से आप उसको चिपका लीजिए नहाने के बाद में। लेकिन सफाई करना जरूरी है,
1: हाँ, नहीं तो और इन्फेक्शन
0: फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा ये। तो इसलिए हमारा ये होता है कि उस पर लिख देते कि रोज नहाए और टाकों की सफाई का ख्याल रखें,
1: बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पर ये कि जैसे आपने लैप्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ज्यादातर आज इसी की बात की है, तो ऑपरेशन के बाद उस बंदे को कितने दिन तक आप एंटीबायोटिक या पेन किलर दवा सजेस्ट करते हैं?
0: अब देखिए, इसमें एंटीबायोटिक के लिए 2 चीजें होती हैं,
1: जी,
0: ओटी की कंडीशन, क्योंकि जितनी सफाई होगी, बैरियर होते हैं इसमें,
1: जी जी जी,
0: ठीक है। जैसे लैप्रोस्कोपी गॉलब्लैडर सर्जरी में तो एक होता है कि एंटीबायोटिक आप सर्जरी करने से पहले देते हैं, जिसको कहते हैं प्री ऑप एंटीबायोटिक, वो आपको आधा घंटा से 1 घंटे के बीच में देना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे, क्योंकि जब आप इंसिजन दोगे तो कितना भी आप साफ कर लो तो बैक्टीरिया कुछ ना कुछ रहते हैं, आप चाहे जितना भी स्प्रिट और बीटाडीन और उससे साफ कर लो,
1: बिल्कुल।
0: तो वो प्री ऑप एंटीबायोटिक होती है जो विद इन 1 आवर दिया जाता है, ताकि उस वक्त ब्लड में पीक लेवल हो।
1: हाँ, ठीक है।
0: एंटीबायोटिक का बाद में गॉलब्लैडर में बहुत ज्यादा रोल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में
1: नहीं
0: है, क्योंकि पेशेंट का पता नहीं होता कि किस हाइजीन में रहेगा, कपड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो एहतियातन 4-5 दिन के लिए दे दी जाती है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते हम 2 सवाल आपसे करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि आप इतने सालों से सर्जरी कर रहे हैं, कोई दिलचस्प ऐसा वाकया जो आज तक आपके जहन में घूम रहा हो, जब भी आप ओटी में जाते हैं और आपको याद आ जाता है हमने ऐसा किया है, वो हमारे सामने को अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जरूर बयान करें।
0: मैंने 2018 में एक सर्जरी करी थी, एक पेशेंट आया था, उसको कोलन कैंसर था
1: जी,
0: और ऑब्स्ट्रक्शन करके आया था। कई बार होता है कि जब लेफ्ट साइड की कैंसर होते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है
1: जी,
0: हाथों में पूरा
1: जाम हो जाता है,
0: तो हमने जब उसको खोला तो फिर उसको ये था कि पहले बाईपास कर देंगे, पेशेंट का स्टेटस ये है, लेकिन एनेस्थिस ने कहा कि नहीं, इसको ठीक है जी दिया गया, और उसको हमने करीब 5.5 घंटे की सर्जरी करी, और सब टोटल कोलेक्टमी कहते हैं, और कर दिया। और हम उससे पहले जो गैस्ट्रो सर्जरी में काम किए थे और उस तरह से था, तो एक कॉन्फिडेंस होता ही है, तो हमने उसका प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर दिया, मतलब उसका लेटिन का रास्ता भी नहीं बनाया। 5-6 दिन बाद एम्स के एक सर्जन थे, HOD थे, उनसे हमारे ताल्लुकात थे, सर को मैंने भेजा कि सर ये कराइए, तो सर ने कहा कि यार दैट्स गुड, बट स्टोमा बनाना चाहिए था, लेटिन का रास्ता
1: हाँ।
0: तो हमने कहा सर एनास्टोमोसिस वाज सो गुड कि मतलब मैंने ये, और मैंने इसको उस टाइम पे था तो मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया था
1: जी।
0: तो ये मेरे लिए एक मेमोरेबल है। एक मैंने ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट करा था, वो भी 2018 में, अभी तक वो जिंदा है। उनके साथ ये है कि उनका पोता है, मदर नहीं है, तो पोता हमसे अक्सर करके मिलने आता और फोटो खिंचवाता, हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आता कि हमारी मदर को आपने अभी तक रखा है। तो ये 2 पेशेंट मेरे ऐसे हैं
1: जी
0: कि जो
1: एक मेमोरी,
0: हाँ, इमोशनल।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे सामीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप?
0: देखिए, सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: बिल्कुल।
0: और उसमें दिखावे में जो चीजें आ रही है, होम मेड फूड पे ध्यान दीजिए, घर के बने हुए खाने। आप ऑफिस जाते हैं, आप घर का बना हुआ खाना लेके आइए, मैदा बेसन की चीजें छोड़ दीजिए,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। कोशिश करिए कि ना खाएं, आटे चोकर की रोटी खाएं, मल्टीग्रेन या जो भी आपको हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है गेहूं के भी खाएं।
1: चोकर मतलब छान के निकाल ना दें,
0: छान नहीं, चोकर ही तो फाइबर है,
1: वही
0: तो मेन फाइबर, ठीक है, उसको साफ कर लें, कि उसमें अगर कंकर पत्थर है। तीसरे टाइमिंग का है, चौथे खाना चबा चबा कर खाएं। मैं मरीजों को ये भी बोलता हूँ कि एक प्लेट है उसमें 3 पार्ट कर लें, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा हाई फाइबर डाइट और खाने का, सलाद का, और एक हिस्सा थोड़ा जितनी भूख है उससे कम
1: कम खाएं, खाली रखें।
0: चौथी चीज ये है कि ब्रेकफास्ट अच्छा करें, डिनर जो है वो सबसे हल्का होना चाहिए, तो हाई फाइबर डाइट, छिलके वाली चीजें, लोगों के समझने के लिए कि भाई छिलकेदार चीजें जो भी हैं, फल हैं, सेब खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है, अक्सर लोग छील लेते हैं वो,
0: हाँ,
1: वो हटा देते हैं,
0: सेब खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं, खीरा ककड़ी खा रहे हैं तो कोशिश करें कि छिलके के साथ अगर धुल लें अच्छे से उसको, ये तो उसको खाएं, हालांकि उसमें पूरा फाइबर होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस खूबसूरत कारामत गुफ्तगु के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं कि मौका मिला।
1: तो समय ये था हमारा आज का खसूसी सेहतनामा, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे सर्जन डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब। कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त, आदाब।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस

0: का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में धनराज कुमार के स्वर में ये गीत।

0: कैसे
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धनराज कुमार के गाए गीत व भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियो पीप 290.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सनम रे फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज मिथुन की, बोल और संगीत मिथुन का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

अगला गीत सुनिए यारियां फिल्म से, शफकत अमानत अली की आवाज, म्यूजिक आरको की और बोल भी आरको का है।

अगला गीत सुनिए राज 3 फिल्म से, आवाज सफकत अली की, बोल संजय मासूम के और संगीत जीत गांगुली का।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनिए धुरंधर फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कमल के बोल और संगीत।

धुरंधर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकमाधुरी कार्यक्रम। लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं दिनेश कुमार साथी, उर्मिला श्रीवास्तव, अमित यादव। सबसे पहले सुनिए दिनेश कुमार और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभी दिनेश कुमार और साथी के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए उर्मिला श्रीवास्तव के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला श्रीवास्तव के गाये लोकगीत। लीजिए सुनिए अमित यादव के स्वर में ये पचरा।

अमित यादव के गाए इस दादरा के साथ ही लोकमाद्री कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत समर्पित है उस गीतकार को जिसने मोहब्बत को कभी मासूमियत की भाषा दी, कभी शरारत की और कभी इंतजार की और कभी जिंदगी के दर्शन की। नाम है उस गीतकार का हसरत जयपुरी। हसरत जयपुरी साहब की आज पुण्यतिथि भी है।

हसरत जयपुरी साहब के गीतों में शब्द केवल शब्द नहीं होते थे श्रोताओं, बल्कि वो भावनाओं की तस्वीर बन जाते थे। प्रेम की पहली आहट हो, मिलन की खुशी हो, जुदाई का दर्द हो या फिर जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का संदेश, हसरत जयपुरी साहब ने हर एहसास को बेहद खूबसूरती से अपने गीतों में ढाला है।

हसरत जयपुरी और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। राज कपूर साहब की फिल्मों में प्रेम, दोस्ती, संघर्ष और आम आदमी की भावनाओं को जिस अंदाज में पेश किया गया, उसमें हसरत जयपुरी के शब्दों का बहुत बड़ा योगदान था। हम आपको बता दें कि हसरत जयपुरी साहब का जन्म 15 अप्रैल सन 1922 को जयपुर में हुआ था। जयपुर की तहजीब, उर्दू शायरी और साहित्यिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। कविता और शायरी हसरत जयपुरी साहब के लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने का तरीका था।

हसरत जयपुरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका शायर होना भी था। मुंबई आने के बाद हसरत जयपुरी ने लंबे समय तक संघर्ष किया। शुरुआती दौर में उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया, लेकिन उनके भीतर का शायर लगातार लिखता रहा। उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और धीरे धीरे वो हिंदी फिल्म जगत के प्रमुख गीतकारों में शामिल हो गए।

हसरत जयपुरी सिर्फ रोमांटिक गीतकार नहीं थे, उनकी कलम ने जिंदगी, अकेलेपन और इंसानी रिश्तों को भी खूब शब्द दिए। उनकी रचनाओं में हमें एक ऐसा शायर दिखाई देता है जो जिंदगी को बहुत करीब से देखता है।

हसरत जयपुरी की रचनात्मक प्रतिभा को अनेक सम्मानों से नवाजा गया। उनको दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। गीत लेखन के लिए उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का ये एक महत्वपूर्ण प्रमाण है श्रोताओं, लेकिन किसी गीतकार की वास्तविक विरासत

केवल पुरस्कारों में नहीं होती, विरासत होती है उन गीतों में जिन्हें लोग दशकों तक याद रखते हैं, और हसरत जयपुरी के गीत आज भी सुनने वालों के यादों में बसते हैं।

हसरत जयपुरी साहब का निधन आज ही के दिन यानी 17 सितंबर सन 1999 को मुंबई में हुआ। लेकिन श्रोताओं, गीतकार के लिए शायद मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं होती। जब तक उसके लिखे शब्द किसी की जुबान पर हों, जब तक कोई प्रेमी अपने प्यार को किसी गीत में तलाशता रहे, तब तक शायर जिंदा रहते हैं। हसरत जयपुरी साहब भी आज हमारे बीच अपने गीतों के जरिए मौजूद हैं और हम उनको कभी भी भुला नहीं सकते।

तो श्रोताओं, हसरत जयपुरी की जिंदगी और उनके गीतों के इस सफर में हमने देखा कि एक शायर किस तरह शब्दों को संगीत में और संगीत को यादों में बदल देता है। उनके गीतों में कभी बारिश है, कभी चांदनी है, कभी प्रेम है, कभी विरह है और कभी जिंदगी का दर्शन। और शायद इसीलिए हसरत जयपुरी साहब आज भी हमारे बीच हैं, अपने गीतों में, अपनी शायरी में और उन तमाम दिलों में जिन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम समाप्त करने के लिए मुझे यानी अंशुमान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही कलाकार, और ये कार्यक्रम आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी पर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम बोलते नगमे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

0: بولتے نغمے वंदना जी नमस्कार दोस्तों नमस्कार
1: नमस्कार नेहा जी और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: वंदना जी देखिए सोशल मीडिया पे जो हम लोग पोस्टर्स अपलोड करते हैं बोलते नगमे कार्यक्रम के प्रोमोज बनाते हैं तो उसमें कई सुधी श्रोताओं ने कहा कि इस बार हमारी पसंद का गाना रखिए।
1: अरे क्या बात है नेहा जी, अगर जब श्रोताओं की पसंद हमारे कार्यक्रम में जुड़ती है
0: जी
1: तो अपनायत की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है, यानी एक जिम्मेदारी जवाबदेही का एहसास तो हो ही रहा होता है, साथ ही ये भी लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो किस तन्मयता से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और अपनी पसंद पूरे अधिकार के साथ हम तक पहुंचाते हैं।
0: अब 90s में एक फिल्म

0: जब वो सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होती है,
1: जी जी,
0: नाम था रंगीला।
1: ओहो, क्या बात है। तो उसके तो एक से बढ़कर एक गीत है।
0: हाँ, लेकिन वो गीत जिसमें शब्द आपको ऐसा लगेगा कि शायद हर कोई बोलता है उसमें से वो शब्द, जैसे रामा पिया है ना, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन जो ढंग है वो बिल्कुल जुदा है।
1: क्या बात है। और जब रामा आपने शब्द का इस्तेमाल ही किया है नेहा जी,
0: जी,
1: तो जब भी कभी हम किसी घटना को घटित होते देख रहे होते हैं या किसी को सामने पा जाते हैं इस तरह से, तो हाय राम, ये एक हमारे मुख से निकल ही आता है। और जब रामा हाँ। की आप बात करें तो यानी हाय रामा, जब ये जुड़ जाए हाँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत उभर कर आता है। और नाम तो आपने फिल्म का बता ही दिया है
0: जी।
1: और बहुत ही खूबसूरत सी उर्मिला मातोंडकर का जो चेहरा है, जो ग्लैमर है, वो दिखाई पड़ता है। और मादकता से भरपूर ये गीत जब जब पर्दे पर आया तो उसने एक अलग ही धूम मचाई है। और जब सुनेंगे तब हमारे दोस्त समझ जाएंगे कि ये गाना क्यों इतना खास है।

0: फिदा हम है।
1: जब आप इस गीत को सुन रहे हैं श्रोताओं, जरा इसके म्यूजिक पर गौर करिए। तबले की जो ताल है, उसकी जो लयकारी है, इतनी सुंदर। बहुत क्लोज माइक रखा है रहमान साहब ने। मुझे लगता है कि उंगलियों की थाप को, ताल को बहुत करीबियत से कैद करना चाहते थे जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, और किया भी। और वो जो एक एक आवाज़ है, वो शायद अंदर की आवाज़ को उभारती है और कहती है कि देखो कितना सुंदर ये समा है, बहुत खूबसूरत सा। और जब हरिहरन साहब अपनी जादू भरी, मैं कहूँगी गहराई लिए हुए बेस वाली आवाज़ में गाती हैं, हाय रामा, ये क्या हुआ, क्यों हमको ऐसे सताने लगा। और स्वर्णलता जी जब साथ देती हैं, मिठास है गाने में। एक कशिश मालूम पड़ रहा है ना
2: नेहा जी, जो आपने एक कशिश, एक शब्द बोला है ना, जब हम स्वर्णलता की बात करते हैं
1: जी,
2: तो ये कशिश शब्द स्वर्णलता के साथ मिलकर एक दूसरे का पर्याय बनते हुए से नजर आते हैं जब हम इस गीत को सुन रहे होते हैं
1: जी।
2: और जब अभी हमने मुखड़ा सुना इसका, तो एहसास हमारे दोस्तों को भी हो ही चुका होगा। और बहुत ही कम उम्र ईश्वर ने उन्हें दी स्वर्णलता को, बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके गाए बहुत सारे गीतों के साथ इस गीत को जब भी हम सुनेंगे तो हमारी यादों में वो जो उनकी आवाज में घुली हुई चंचलता है, मस्ती है, शोखी है, उसके रंग बावस्ता रहेंगे ता उम्र। तो चलिए आगे क्या कह रहा है ये गीत, वो भी सुनते चलें।

0: वंदना जी, जरा हम कहेंगे कि दोस्त भी हमारे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस गाने को थोड़ी गहराई में समझने की कोशिश करें। महबूब साहब ने इसमें रामा कहा, तौबा जैसे शब्द, तौबा ये क्या जिद है। अब ज़रा इसमें उर्दू के भी अल्फाज आ रहे हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, और जो शूट है, कैमरे का काम है, चारों तरफ सिर्फ ईंटों का बना हुआ एक दीवार सी है और बिल्कुल खंडहर सा नज़र आता है, और उसमें उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई कहीं भी ये जो एक नेचर की, प्रकृति की या इंसानों की जो खूबसूरती है, प्रेम है, वो खिल सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने खंडहर की बात की है तो रेगिस्तान भी दिखाया जा रहा है, तो यही होता है कि रेगिस्तान में भी जीवन बरसता है, वहाँ भी सरसता पैदा हो सकती है अगर दिलों में प्रेम होता है तो। तो पिक्चराइजेशन अद्भुत है,
0: बहुत सुंदर,
1: लयकारी गीत की बहुत खूबसूरत है, हरिहरन साहब की आवाज़ बहुत बेमिसाल लग रही है और एक नई तरह की जो फिल्म होती है उसको इस्टेब्लिश किया था रंगीला फिल्म के जरिए, रामगोपाल वर्मा जी की ये फिल्म है नेहा जी, और इसमें जो एक टपोरी का एंगल लिए हुए आमिर खान नज़र आते हैं, खैर इस गीत में तो नहीं है, और उर्मिला मातोंडकर बिल्कुल अलग रूप रंग में नज़र आती हैं, अपने आप को बिल्कुल चेंज किया उन्होंने।
0: अब जरा देखिए दोस्तों, वंदना जी, उर्मिला भी बिल्कुल नई थी उसमें, रहमान साहब भी बिल्कुल नए थे
1: जी,
0: दो नए लोगों ने मतलब सिल्वर स्क्रीन को अपने कब्जे में ले लिया
1: तो कब्जे में तो ये गीत भी हम सबको ले रहा है अपने, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
0: जी, जरूर।

0: वंदना जी।
1: जी नेहा जी,
0: बात प्रेम की हो रही है, कॉस्ट्यूम की भी हो रही है, सीन की भी हो रही है ना
1: जी।
0: एक गाना आया था बहुत साल पहले।
1: कितने साल पहले?
0: जब आप पैदा नहीं हुई थी तब। इसीलिए मैंने कहा बहुत साल पहले। अच्छा, वैसे अगर ये बात सोचें, आप हो सकता है कि उस समय तोता रही हूँ। या फिर प्यारी सी कोयल जिसकी आवाज बहुत प्यारी। ओ हाँ, ये संभव है, मेरी सहेली भी रही होंगी, हो सकता है।
1: क्या इसमें दो लोगों की व्यथा कथा है?
0: हाँ है, दो आवाजें सम्मिलित हैं और दो लोग। आह क्या नृत्य है। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम कारण तलाशते हैं कि भाई ये चीज इतनी सुंदर क्यों है, आसानी से पता नहीं लगती।
1: अच्छा, आसानी से गीत की तह तक मैं पहुंच चुकी होंगी नेहा जी, जो अगर आप ये बता दें। हेलन है?
0: यस।
1: और साथ में उनके
0: रागिनी।
1: ओहो, तुमको पिया, दिल दिया।
0: ये मेरा करिश्मा है।
1: नहीं, करिश्मा आपका है, लेकिन पसंद मेरी है नेहा जी।

0: गीत तो आज हम दोस्तों की पसंद का सुनवा रहे हैं, लेकिन सच माने में ये गीत मेरी भी पसंदीदा फहरिस्त जो मैंने बनाई हुई है नेहा जी, उसमें ये गीत रखा हुआ है। तो पहले
1: सुनते हैं,
0: चलते हैं जी।

0: जब हम लोग इस गीत को सुन रहे हैं, कितनी सुंदर हेलन लगती हैं और रागिनी, कॉस्ट्यूम, उनके आभूषण और बिजली की तरह नृत्य करती दो अभिनेत्रियां, उनकी हस्त मुद्राओं को देखें या आंखों की मुद्राओं को देखें, मतलब तपाक से बैठती हैं और तपाक से उठ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से ईश्वरीय आशीर्वाद है इन लोगों पर।
1: नहीं बिल्कुल, और नेहा जी, ये आशीर्वाद तभी आता है जब हम साधना रत होते हैं अपने किसी भी काम में,
2: और नृत्य गायन वादन तो साधना की मांग करता ही करता है। जो जितना डूबता है उतना ही कुंदन बनकर निखर कर संवर कर हमारे सामने आता है। और ये जो गीत है, इसके जो भाव हैं, शब्दों में जो छुपे हुए से नज़र आते हैं, वो दिल फरेब हैं, दिल को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देते हैं। और दो दिलों की जब दास्तान होती है और वो कही जाती है, तो इसी तरह से एक खूबसूरत वातावरण तैयार होता है, जैसे अभी हम इस गीत में देख रहे हैं। कितनी जज्बात हमारे जो कि बहुत ही मानी खेज हैं, वो सब इस गीत के साथ तरंगित हो रहे हैं।

0: बहुत सुंदर लता जी और उषा मंगेशकर जी का डुएट कम देखने को मिला है, लेकिन जब मिला वो पूरा मिला। कहते हैं ना कि ईश्वर जब करते हैं तो वो पूरा ही देते हैं। और जी एस कोहली जी जो संगीतकार हैं
1: जी,
0: बहुत कम उन्होंने म्यूजिक दिया है और इसका जो म्यूजिक इतना मधुरता लिए हुए है। कई बार इंसान कुछ काम बहुत सुंदर कर जाता है, उसके बाद शायद वो रंग नहीं ले आ पाता।
1: जी हाँ, और दोस्तों जी एस कोहली साहब हिंदी सिनेमा के गुणी संगीतकार और ढोलक तबला वादक के रूप में भी उन्हें ख्याति प्राप्त थी, और खास तौर पर ओपी नैयर के साथ वो सहायक के रूप में जुड़े रहे काफी लंबे समय तक। और जो अभी हम गीत सुन रहे हैं उसमें तो जो जलवा उनके संगीत का दिखाई पड़ रहा है वो लाजवाब है, बेमिसाल है।
0: बिल्कुल, आप सवेरे तो उठती होंगी ना?
1: क्यों नहीं बोला, आप सुला के ही मानेंगे।
0: कई बार जो है ना
1: मन आलसी हो जाता है, आलस
0: नहीं, आलसी नहीं, किसी को थोड़ा खुरीदना अच्छा लगता है। छेड़ रही हैं
1: छेड़ना है तो सुरों को छेड़िए, उन्हें छेड़ने से जो संगीत पैदा होगा उसका जो मजा होता है वो बड़ा ही संगीतमय होता है। तो मेरी बात अभी रहने दीजिए।
0: मान लिया चलिए कि आप सवेरे उठती होंगी
1: जी।
0: आप देखिए, एक ही समय में कोयल भी बोलती है, मैना भी बोलती है, सूरज की रश्मियां भी पृथ्वी पर आ रही होती हैं, वो भी कुछ बोलने सी लगती हैं। इस सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन तरीके से सबकी ध्वनियां उतर रही हैं कान में। जी एस कोहली साहब वैसे ही रहे हैं। और फारूक कैसर जी के बारे में कैसे बात ना करें?
1: शायर की जो दृष्टि होती है जुदा होती है, वो इतना मर्म स्पर्शी लेखन उनका हो कि एक एक अनुभूतियों को वो जैसे लगता है कि शायर जी रहा हो।
2: और जो ये बात कहती है ना कि दिल के सोए अरमा जागे तेरी ही आवाज से, तो आवाज का जो जादू किसी का होता है उससे हम खुद को कभी भी छुड़ा नहीं पाते हैं। यंत्रवत से हम उस आवाज के पीछे पीछे चल

0: मुझे इसमें से कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे वंदना जी और दोस्तों, जैसे नाज, दगाबाज, जुल्मी, अंदाज, बहुत बहुत सुंदर। और एक बात, जैसे लोग आमतौर पर तो हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन वो उस तरह से देखना कि इंसान शर्म से पिघल जाए।
1: अजीत सामने बैठे ही हुए हैं, वो उसी तरह से देख भी रहे हैं, वो भी मोहित सम्मोहित से नजर आ रहे हैं नेहा जी। लेकिन अभी सम्मोहन में हमें बांधने के लिए अब एक ऐसी आवाज उभरेगी और ऐसा संगीत का करिश्मा नजर आएगा कि हम सब पूरी तरह से गहराई में डूबते हुए से जाएंगे और मन में एक टीस पैदा होगी और बहुत कुछ सोचने पर हमारा दिल भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस उम्दा गजल में न जाने कितने दिलों की बयानियां छुपी हुई हैं।

0: कॉस्ट्यूम है, उनकी जो नज़रें हैं, जिस तरह से वो इस गज़ल को प्रस्तुत कर रही हैं फारूक शेख के सामने, और कहती हैं कि जिसकी जुस्तजू थी वो हमने नहीं पाया, लेकिन सामने वाले को पता भी न चलने दिया और खुद भी पशेमाना हुए।
1: इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो गीत है, हमारे दोस्तों ने समझ ही लिया होगा कि उमराव जान फिल्म का ये गीत है। 1981 में फिल्म आती है। संगीतकार के रूप में खय्याम साहब को, अभिनेत्री के रूप में रेखा जी को, आशा भोसले जी को गायिका के रूप में, और फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेहा जी। और मिर्ज़ा हादी रुसवा का लिखा उपन्यास उमराव जान अदा पर ये फिल्म केंद्रित थी, और रेखा ने एक तरह से उमराव जान की भूमिका को जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। उन्होंने उसी तरह से गीतों के जरिए जो उमराव जान की व्यथा कथा थी, उनका जो अंतर्विरोध था, संघर्ष था, प्रेम की जो लालसा थी, छटपटाहट थी, वो सब अपनी शायरी के जरिए उन्होंने कलमबद्ध जब किया तो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर एक ऐसा असर पैदा हुआ, आज तक हम उसे महसूस कर सकते हैं, उससे उभर नहीं पाए हैं। एक नशा सतारी होता है।

जैसे कई बार चंदा की रोशनी रात में पत्तियों से छन छन के आती है और हम उससे अछूते नहीं रहते, मन करता है कि हाँ बस यहीं बैठे रहें। और जब वो कहती हैं, लोग चांद की ख्वाहिश करते हैं, जब हकीकत पता चली तो ये गर्दिश वाले वक्त ही सबसे अच्छे निकले। और उमराव जान उन महिलाओं में से एक रही हैं जो आगे बढ़ना जानती थी, बहुत तरीके से उन्होंने जीवन को देखा। फिर वो अगली बात कहती हैं कि एक उम्र का एक लंबा सफर तुम्हारे बिना ही तय किया है, ये बड़ी बात लगती है ना।

0: गजल के अतिरिक्त भी दो लाइनें और भी आती हैं जो बाद में हमें सुनाई पड़ती हैं, वो बहुत ही मार्मिक बात कही जाती है, तो उसको भी हम दोस्तों तक जरूर साझा करेंगे
1: जी।

0: रेखा जी, कमाल
1: फारूक शेख की नजरों में वो जो खो जाने का दर्द है वो भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये फिल्म, गीत, संगीत, इसका अभिनय सब उत्कृष्ट। और सलाम हम करते हैं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने कला के जरिए नई सोच हमारे भीतर पैदा की, समझ की एक सलाहियत पैदा की और मर्म स्पर्शी बनाया हमें।
0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप सुनते हैं तो लगता है कि सुनते रहें और ये जो गजल हैं, गीत हैं, नज्म हैं, कुछ दे जाते हैं।
1: और देखिए हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने ये फरमाइशें भेजी थी, तो उन सबको हम सलाम करते हैं और दोस्तों से अब कहेंगे हम इतना कि अगर उनकी कोई पसंद है तो वो हमें ज़रूर बताएं।
0: तो हमारा नंबर नोट करिए,
1: 800-492-6250।
0: तो हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार, आपकी फरमाइशी गीतों का इंतजार। तब तक के लिए हम कहते हैं नमस्कार,
2: बोलते नगमे।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बोलते नगमे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखे लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामे और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण।

0: 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi. The 3-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing and on the other side, the global trust in India is also growing. He said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: On the occasion, Union Minister of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Semicon India 2026 event has brought together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 50 countries. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद साक्षर बनिए, औरों को भी साक्षर कीजिए। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। निजी स्वार्थों को छोड़कर देश की एकता के लिए जिएं।

0: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो। अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आगे क्रॉसिंग और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो अब हम लेते हैं ब्रेक।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब समय है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गोपाल दास का क्लेरियोनेट वादन, राग है शुद्ध सारंग। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री महावीर प्रसाद भट्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्री गोपाल दास का क्लैरियोनेट पर बजाया गया राग शुद्ध सारंग। तबले पर संगत कर रहे थे श्री महावीर प्रसाद भट्ट। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी प्रयागराज। अब हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 10 दिवसीय गणेश उत्सव आरंभ पूरे देश में हो चुका है और विशेषकर से मुंबई में। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है और ये पर्व मुंबई तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। देश के हर हिस्से में गणपति बप्पा मोरया का जय घोष सुनाई देने लगा है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आरंभ करेंगे सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश की इस आरती के साथ और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, जब बात गणेश उत्सव की चल ही रही है तो हमारे कुछ श्रोताओं ने इस पर्व की हमें बधाई दी है। वो हैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, आगरा से राजू लवानिया, जबलपुर से अशोक कुमार सिंह, बुंदेलखंड से राजू यादव, प्रयागराज से गुलाब प्रजापति, पवन साहू, प्रभाकर तिवारी और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कार्यक्रम के फरमाइशी गीतों की तरफ। और पहला गीत जो हमारे पास आया है उसकी फरमाइश की है पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। पुलिस लाइन प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, गौरी पुष्कर, बाला कनौजिया। महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्री जायसवाल। आप सब सुनना चाहते हैं होटल फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, जब भी हमारी किसी से मुलाकात होती है तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल हम एक दूसरे से पूछते हैं, कैसे हो? पर इस कैसे हो के पीछे कवि ने जो दर्द ढूंढा है और इतनी खूबसूरती से इसका वर्णन किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आंखें मेरी ठहर सी गई इन पंक्तियों पर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऊपर की इन तीन लाइनों का सीटी स्कैन किया जाए तो हजार गम, लाखों ख्वाहिशें और बेहिसाब अंत किए हुए सपने मिलेंगे, और इन सब पर मैं ठीक हूँ की ओढ़ाई हुई चादर। कितनी खूबसूरती से इन्होंने लिखा है कि आदमी जो है वो हर किसी को अपना दर्द बयान नहीं कर सकता है, आदमी हर किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर सकता है, कभी कभी खामोश रह जाना पड़ता है। तो गुलजार साहब ने इसी पे एक बात कही है, कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत तो पूछ कर देखिए साहब। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ गुलजार साहब की। और अब आ गया है एक और फरमाइशी गीत, और इस गीत की फरमाइश जिन श्रोताओं की है उनके नाम हैं रोहतक हरियाणा से सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और अंकित कांगड़ा, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, सुनीता रानी, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और इनका पूरा परिवार, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं टूटे खिलौने फिल्म का ये गाना, आवाज है यसु।

अर्ज किया है, मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी ख्वाहिशों के आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे लिए, कुछ हो या कुछ भी नहीं? तुम क्या हो मेरे लिए, कुछ हो या कुछ भी नहीं? मगर मेरी जिंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। क्या बात लिखी है शायर साहब ने, दिल को छू गई। और ऐसे ही दिल को छूता हुआ एक गाना, बेहद ही खूबसूरत सा गाना है, वो फिल्म का नाम है जहर। और इस गाने की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है, उनके नाम हैं हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और देवांशी विश्वकर्मा, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, संकल्प और कृष्ण, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का जहर फिल्म का ये गाना।

निदा फाजली साहब ने क्या खूब बात कही है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता, सब कुछ तो है क्या ढूंढती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। बहुत ही खूबसूरत सी बात निदा फाजली साहब की। और अब आ गई है अगले गीत की फरमाइश, और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये हैं लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद शहनाज खान और बेबी नुसरा, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, संभलपुर से फागुन राय, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, साथ में हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य। और जिस फिल्म की गीत की इन्होंने फरमाइश की है वो फिल्म है पिघलता आसमान। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी प्रयागराज से। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अब बज रहे हैं दोपहर के 1 और थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आकाशवाणी प्रयागराज।

0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है, छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प

0: अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है। साथियों, भारत में power infrastructure का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव सेड इंडिया हैड वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर सेवरल डेकेड्स बट इट वाज पॉसिबल ओनली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। He said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. Talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said party workers across the country are participating in these blood donation camps. Mr. Naveen said under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhinkanta Pandey has said that greater public awareness about the risks involved in derivatives trading is needed as many retail investors continue to suffer losses even after 3 to 4 years of trading in the futures and options segment. Addressing the NAB FID Annual Infrastructure Conclave 2020.

0: शर्मा गुजरात के वडनगर पहुंचेंगे। दरियसना वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की सालगिरह के मौके पर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सेवा संकल्प अभियान के तहत आज एक बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम का इफ्तिताह रियासती हुकूमत के खजाना और पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने किया। मेयर सुषमा खड़कवाल ने तकरीब की सदारत की। वाराणसी, अयोध्या, जौनपुर और चंदौली में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुनक़िद सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर दुआओं के साथ आज सफाई मुहिम भी चलाई जा रही है। आज से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर रियासत भर में 12 बड़े प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इनमें बरकतों का चिराग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, पिक्चर सर्विस, नमो सेवा, इन अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वाडनगर से वाराणसी यात्रा और गुड गवर्नेंस सर्विस डायलॉग शामिल हैं। मुहिम का आगाज सेवा दिवस बरकतों के चिराग से होगा। शाम 7 बजे शहरी अपने घरों और इदारों में चिराग जलाकर खिदमत के इज्तिमाई अहद और तरक्की याफ्ता हिन्दुस्तान 2047 में शामिल होंगे। मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महाना कर दिया है। नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद आज से नाफिजुल अमल होगी। काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बसीरत अंगेज फैसला 51 लाख से ज्यादा इजाफी कारकुनों को मजबूत समाजी तहफ़ फराहम करेगा। भगवान विश्वकर्मा की यौमे पैदाइश पूरी रियासत में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की यौमे पैदाइश पर कारीगरों और रियासत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ वही मुल्क तरक्की करता है जो कारीगरों और कारीगरों का एहतराम करता है। इसी जज्बे को अपनाते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना का आगाज किया था। दस्तकारी को जदीद टेक्नोलॉजी और नई मंडियों से जोड़कर कारीगरों को खुशहाली की राह पर गामजन किया था। आकाशवाणी लखनऊ की सीनियर न्यूज रीडर मीना इरफान का तवील अलालत के बाद कल देर शाम इंतकाल हो गया। वो 60 साल की थीं। उर्दू अखबारात में काम करने के अलावा वो दूरदर्शन लखनऊ में न्यूज राइटर के तौर पर भी काम कर रही थीं। उनकी आखिरी रसूमात आज देर शाम सदर कब्रिस्तान में अदा किए जाएंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट।

0: पनघट सुने बैठी सब बहनी हरण के गंगा और
1: सरस्वती के राम राम, राम।
0: और बहनी का हाल चाल बा
1: गंगा? सब बहुत बढ़िया बा। आ देखा पनघटे पे आए है ना तोरे साथे, तब बस अब मन करा था खोल के अपने बहनी हरण से जी भर के बतियाई ली।
0: बिल्कुल बतियाओ। और आज देखा सबसे पावन दिन है, तो सबके भगवान विश्वकर्मा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं है ना। तो आज के दिन देखा श्रम के सम्मान दे के, हुनर के नमन करे के और निर्माण की शक्ति के प्रणाम करे के है। कहा जाते जहाँ निर्माण है वहाँ विश्वकर्मा हैं, जहाँ हुनर है वहाँ विश्वकर्मा हैं, जहाँ मेहनत है वहाँ विश्वकर्मा हैं। हम अपने चारों ओर जौन कुछ देखी थे, मकान, मशीन, कारखाने, सड़कें, पुल, वाहन, औजार और आधुनिक तकनीक, यही सब के पीछे कौनों न कौनों कारीगर, इंजीनियर, तकनीशियन, मजदूर और श्रमिक के हाथ के मेहनत होते हैं। तो आज के दिन उन्हीं वही मेहनतकश हाथन के सम्मान देवे के दिन है। तो आवा ये पावन अवसर पे हम सब मिलके भगवान विश्वकर्मा जी के नमन करी।
1: बिल्कुल। आ जानत हो प्रत्येक वर्ष ये विश्वकर्मा पूजा गंगा हम सबे कन्या संक्रांति के दिन मनावत ही।
0: अच्छा।
1: हाँ, और देखा तू तो जानत हो ना कि हापन देश भारत जौन है त्यौहार के कोनो एक तारीख नहीं होत, बल्कि हम सबे ओका इतना

0: खुश होई के जोश के साथ उमंग के साथ मनावत ही
1: बिल्कुल
0: कि मतलब वो एक भावना हुई जात है मानत हो कि नहीं
1: बिल्कुल मानित है। देखा हम सब भगवान विश्वकर्मा जी के निर्माण शिल्प वास्तु और तकनीक कौशल के देवता के रूप में पूजित
0: बिल्कुल है ना। वो है कहे चाहती तो उसे कि हाँ। गंगा देखा ये तारीख मात्र नहीं होते हम सब एमा सुमिरन करत ही एक मूल्य के एक संस्कार के देखत ही
1: बिल्कुल
0: एक कथा छिपी रहती
1: है बिल्कुल
0: है ना। तो देखा परिवार के पदे मूल्य समझावा जात है प्रकृति के प्रति मूल यही में से हम सभी समझत ही यही खातिर जौन है जैसे सब त्योहार हम सब इतना खुश हुई कि जोश उमंग के साथ मनावत ही वही तरह आज पूरे भारत में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाता है।
1: और देखा अपने संस्कृति में इन्हें दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार के स्थान प्राप्त हुआ। जैसे हम सभी कुछ बनाए थे तो ये कहा जाता है कि देखा ये मनुष्य के कलाकृति है ठीक है भगवान बनाए हैं तो उनके ये वास्तुकार और शिल्पकार के उन्हें
0: पूरी सृष्टि के प्रथम वास्तुकार शिल्पकार के रूप में उनका जाना जाता है और माना जाता है ना
1: हाँ।
0: कि देखा देवता जौन रहे उनकर औजार से लेकर के और उनकर जो निवास स्थान रहा सब वास्तु वही संहारत रहे वही देखत रहे शिल्पकार जैसे हम सब कहा थी उनका है ना। तो चाहे द्वारिका नगरी की बात हो चाहे भगवान शिव के लंका की बात हो है ना सब का निर्माण में उन्हीं के पूर्ण हाथ है।
1: देखा बहनी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा विशेष रूप से कहाँ कहाँ की ही जाते है श्रद्धा के साथ जहाँ मशीन हैं औजार हैं कारखाने हैं निर्माण कार्य व तकनीक व कारीगरी व श्रम व देखा आज अपने आकाशवाणी परिवार में भी पूजा भय है प्रसाद खाओ है तो देखा जहाँ जहाँ भी मतलब कुछ भी निर्मित वस्तु
0: जहाँ जहाँ रचना है
1: रचना
0: जैसे तू बताओ तो सब फैक्ट्रियन में दुकानन में सब जगह जहाँ जहाँ मशीनरी है
1: बिल्कुल
0: सब जगह आज तो, जानते हो गंगा कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है पूजन के साथ साथ हम सब वाहन आदि जौनो चीज नया कुछ खरीद के चाहती तो बिना पूछे बहुन बिना मुहूर्त जाने भी आज के दिन हम सब खरीद के ले आवती।
1: अच्छा तो देखा एक चीज और हम बताओ थे कि आज हम मशीनन के पूजा करी थे ना
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमें ये ना भूले के चाहिए कि मशीन के चलावे वाला इंसान होते हैं है ना औजार अपने आप काम ना करते हैं उन्हें चलावे वाला हाथ चाहिए कारखाने अपने आप ना चलते उन्हें चलावे वाले मेहनती लोग चाहिए तो बल्कि इंसान की सोच मेहनत और हुनर होते है यही बदे आज हम भगवान विश्वकर्मा जी के साथ साथ उन सभी हाथों के नमन करी थे जो उनकी सबसे पहले काम पे पहुंचे थे और दिन भर मेहनत करत हैं।
0: बिल्कुल सही कह तू देखा जहाँ रचना है वहीं तो रचयिता है
1: बिल्कुल।
0: तो देखा हम सब के हाथ में जौन रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करावे में जौन जौन हाथ लगा होते है जौन जौन हाथ निर्माण करके हम सबका ये सब उपलब्ध करावत है उन्हीं के सम्मान में हम सब आज नमन करत ही।
1: बिल्कुल देखा भगवान जैसे बताओ कि भगवान विश्वकर्मा हमें खाली निर्माण करब ना सिखाते हैं वो सिखावत हैं कि जौन काम हाथ में ला ओका बेहतर तरीके से करा अपने हुनर के लगातार निखारा नई नई चीज़ सीखा और अपनी मेहनत पे विश्वास रखा। देखा आज की दुनिया कितनी तेजी से बदलत बना नई मशीन आवत है नई तकनीक आवत है नया तरीका आवत बा तो यही बदे हमें भी समय के साथ सीखत रहे के होई कैसे कि हुनर वो है मजबूत हो थे जौन सीखब कभो बंद ना करत।
0: बिल्कुल सह कहतु और जौन मशीनरी आदि सब हम सब देखत ही वो खाली देखा मशीनरी मात्र नहीं बाटे है ना वो प्रतीक है हम सब के देश में अन्वेषण के है ना वो प्रतीक है सम्मान और मर्यादा के काहे कि हमार आजीविका वही से चलत है
1: बिल्कुल तो एक बार फिर से सबके विश्वकर्मा भगवान के तो विश्वकर्मा भगवान की जय
0: जय। तो चला अब एक ठे तोहका हम बढ़िया सा गीत सुनवाई देते हैं।
1: गीत सुनवाओ से पहले एक बात हम तुम्हें कहे चाहे कि आजकल चलत बा गणपति भगवान के दिन तो हमें तो आज अगर गणपति वंदना सुनवाई देते तो बहुत अच्छा रहा।
0: बस देखा तू कबू और हम कैसे हेर फेर कर सकते हैं चला तुका बढ़िया से हेम श्रीवास्तव से एक ठे गणपति वंदना सुनवाई दी।

0: सरस्वती बहनी,
1: गंगा,
0: देखा गणपति वंदना सुन के एकदम मन भक्तिमय हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा तू। आ देखा, त्योहार तो आज विश्वकर्मा पूजा के बाद हम सब एक करते रही।
0: हाँ।
1: और गणपति भी, गणपति जी के पूजन भी आजकल चलत है।
0: हाँ।
1: 11 दिवसीय है ना। तो देखा हम सब इतना त्योहार मनावा थी, तो आज हम सोचे थी काहे नहीं एक ठे तो का बातचीत सुनाई दी। त्योहार तो मना रहे, क्या उनकी परंपराएं भी समझ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: अब बातचीत मधु चौधरी से करे हैं रजनी चंद्रा, तो चला सुन लीन जाए।
0: चलो सुना जाए, बहनी आरन भी सुने।
2: त्योहार का अर्थ होत है प्रति वर्ष कौनो निश्चित तिथिया या समय पर मनावा।

0: जाए वाला वह धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक उत्सव जैसे जेमा लोग सामूहिक रूप से आनंद और उत्साह मनावत हैं। तो आज हम यही से जुड़ी एक बातचीत अपने पनघटे पे लाया है कि त्योहार तुम मना रहे हैं का उनकी परंपराएं भी समझ रहे हैं। देखा बहनी, आज पनघटे पे आए बैठे मधु चौधरी बहनी, आपके बहुत बहुत स्वागत बैठे।
1: भारत त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर अलग अलग सामाजिक, धर्मों और समुदायों क्षेत्र के अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, तीज, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, मकर संक्रांति, न जाने कितने त्योहार हैं जो हमारे जीवन को खुशी, उत्साह और उमंग से भर देते हैं। हम नए कपड़े पहनते, घर सजाते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम केवल त्योहार मना रहे हैं या उनकी परंपराओं और मूल भावनाओं को भी समझ रहे हैं। देखिए, हमारा त्योहार केवल मनोरंजन या छुट्टी के अवसर नहीं है। प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक संदेश छिपा होता है। दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। होली आपसी प्रेम और भेदभाव मिटाने की सीख देती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। तीज करवा चौथ से पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है।
0: बिल्कुल सही कहो बहनी। देखा बहनी, अपने देश में विभिन्न संस्कृति और पर्व उत्साह मनावा जाता है, एक बदे बहनी का बतावे जाते।
1: हमारा देश सांस्कृतिक परंपराओं का पालन बहुत ही करता है।
0: हाँ बहनी,
1: देश का हर राज्य और प्रदेश की अपनी ही परंपराएं होती हैं जो वे पालन करते हैं। अगर हम इस बात से शुरू करें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और फसल कटने, उगने और बीजारोपण हर पल को उत्सव की तरह मनाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसी परंपरा में कहीं बैसाखी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू और मकर संक्रांति मनाते हैं। इतनी मेहनत के बाद फसल कटती है तो खुशी से गिद्दा और भांगड़ा भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहो बहनी। देखा, इतना बढ़िया बताओ बहनी कि सच बात है, हमारी संस्कृति और धर्म जौने है हम सभी के एक अच्छी उड़ान तो देते है, साथ ही साथ जब अपने कर्तव्य का हम करत है उसे जो फल मिलत है उसे आनंदमय हो के
1: जी,
0: ओकरे ऊपर जब उत्सव होते है तो डबल आनंद हो जाता है बहनी। कहे का मतलब है कि दुगना आनंद के अनुभूति होते है। तो देखा बहनी, अपन प्रकृति भी परंपराएं और धर्म के रूप चलत है, तो ए पर का बतावे चाहती बहनी।
1: आपने अच्छा प्रश्न किया। हमारे देश की जलवायु और त्योहार एक दूसरे से संबंधित है।
0: अच्छा,
1: या यूं कहे कि एक दूसरे के पूरक। होली पर होली जलाते हैं, रंग और पानी से खेलते हैं और जी भरकर स्वादिष्ट पकवानों का लुफ्त उठाते हैं कि अब तो गर्मी भी आ रही है और गर्मी का स्वागत और जलवायु से वातावरण बदल रहा है तो उसका भी इंतजार होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी प्रकार इस त्योहार पर आप घर परिवार में मिलकर एक साथ रहने का मौका मिलता है, मतभेद भूल कर एक दूसरे के गले लगते हैं। दीपावली त्योहार तो घर की मरम्मत, सफाई पुताई और सजावट से भरा हुआ है। हर कोई दिवाली पे सफाई, लिपाई पुताई करके अपने घर को सजाता है। और वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि बरसात के बाद ही दीपावली का त्योहार आता है। वर्षा के कारण हुई क्षति भी, जो सीलन होती है, जो कहीं से टूट फूट दिखती है, पानी रिसता है, वो भी दूर करते हैं।
0: एक बात और कहा चाहती हूँ मैंने कि जो ने उस समय जब बरसात होते है तमाम तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते घर में, तो जहाँ जहाँ पे कहते हैं मैंने कि छुपा वाला जगह होते हैं हमारे सभी के खेत के पीछे के जैसे हुए या रसोईया के कुछ कोना हो या अपने घर के कुछ कोना आतर होते है, तो जो जैसे मच्छर या कोनो तरह के कीड़ा आ जाते तो जब हम सफाई करे थे तो कुल ई सब के भी सफाई
1: हो जाती है। सही कहा आपने। दीपावली पे जो दिए जलाते, हवन होता है, पटाखे चलाते, उसके धुएं से कीड़े मकोड़े मच्छर आदि भी समाप्त हो जाते हैं। ईद पर भी नए कपड़े, नए पकवान और सभी से प्रेम से गले मिलना अपना ही महत्व दर्शाता है।
0: अच्छा बहनी,
1: एक बात और कहूंगी, हमारे त्योहारों के नाम पर जो व्रत उपवास होते हैं, सही मायने में तो ये शरीर को साफ करने का ही काम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: देख, हमारी परंपराओं ने व्रत आपके ऊपर है। आप एक दिन का व्रत रखें, महीने में एक दिन तो पूर्णमासी रख लीजिए।
0: बिल्कुल।
1: आप हफ्ते में एक दिन रखें तो कोई सोमवार रखता है, कोई गुरुवार रखता है। अगर आप 15 दिन में रखते हैं तो कोई एकादशी रखता है और प्रदोष रखता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: इसी तरह कोई 9 दिन का व्रत रखता है। ईद पे तो जो रोजा रखते हैं वो भी व्रत है, वो एक महीने का रखा जाता है। तो हमारे देश ने सब चीज की व्यवस्था की हुई है हमारे त्योहारों परंपराओं ने।
0: देखा बहनी, जैसे कि त्योहार की तू बात करो कि तीज, तो देखा मधु बहनी, अपने जो ने अगर हमारे सभी के बहनी हरे जो हरे ताल का

0: तीज व्रत उपवास रहा थे जौने कले मनावा गरा बनी तुहु रहे हो वो हम सब पहनियारे भी रहे हुई हैं तो एपे का चर्चा करे चाहे तू।
1: देखिए मैं एक बात बताऊं, तीज और करवा चौथ पर पति के लिए सुहागने व्रत रहती हैं,
0: अच्छा बहनी
1: लेकिन हम भूखे रहकर किसी की उम्र बढ़ा देंगे ये तर्क संगत नहीं है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि हम भूखे रहे और हमारे पति की व्रत बढ़ जाए और या बेटे हम बेटे के लिए व्रत रखे तो बेटे का उम्र बढ़ जाए, लेकिन ये त्योहार पति पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाने उन्हें और करीब लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
0: एक दूसरे के समर्पण भी होते हैं,
1: समर्पण होता है कि आज मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रखी है, पूरे दिन पानी भी नहीं पी, मैं जरा टाइम से घर पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंचूं, तैयार हो जाएं हम, इसी तरह सुहागने फिर से तैयार होते हैं घर पर, हम घर परिवार में इतना काम होता है कि हमें कंघी तक करने का मौका नहीं आता, तो ये पति भी हमारे तब देख के आकर्षित होते हैं और हम एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने में ये है। और एक बात और कहूंगी कि सभी लोग नौकरी करने इधर उधर जाते हैं, बहन बेटी शादी होकर दूर बस जाती है, सावन का महीना एक जो आता है वर्ष सभी बहन बेटियों को मायके की याद दिलाता है,
0: बिल्कुल,
1: और रक्षाबंधन का त्योहार तो बहनों को खींच कर भाइयों के पास ले जाता है, यदि नहीं जा पाई तो कम से कम फोन तो जरूर करती है, राखी भेजती है और उनसे उनकी याद करती है, एक दूसरे को याद करते हैं। भारत की संस्कृति में तो ये परंपराएं आज भी कायम है, जब हम किसी बहुत ही ज्यादा व्रत भाई बहन को देखते हैं तो आज भी हम भाव से भर जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो जो ये त्योहार ही है जो हम इतने व्रत हो गए हैं चल फिर नहीं पा रहे लेकिन हमें अपना भाई याद आता है, अपनी बहनें याद आती है, ये त्योहार ही है हमें जो एक दूसरे के करीब लाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी कि दिखा अगर हम कोनो समय का इंतजार करते है तो दिखा उस समय पे तो हम नहीं मिल पाए, मुला एक त्योहार होते है जो ने हम सभी के आपसी मेल मिलाप के बढ़ाए देते है और जो ने भाई बहनी पति पत्नी एक दूसरे से कबो कबो रोजगार है या कोनो समस्या है या पारिवारिक कोनो बात विवाद है या कोनो भी तरह की समस्या होते मुला उस सब के समाप्त कर देता है त्योहार।
1: नवरात्र गणेश उत्सव जैसी परंपराएं हमारी संस्कृति प्रकृति पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हैं। यदि हम इन त्योहारों का अर्थ ही भूल जाएं तो उसका वास्तविक महत्व भी धीरे धीरे कम हो जाएगा।
0: बिल्कुल
1: इन त्योहारों के साथ साथ हमारी संस्कृति अपने मृतक पितरों पूर्वजों को भी नहीं भूलती,
0: बिल्कुल
1: उनके लिए भी 16 दिन पितृ पक्ष और ईस्टर मुहर्रम आदि की व्यवस्थाएं हैं।
0: बिल्कुल सही कहो बहनी, कहे कि देखा एक जो समय समय कहते हैं प्राकृतिक मेहरबान है धर्म और संस्कृति पर, कहे से कि देखा जब कहते नहीं कि जब त्योहार शुरू होते हैं, हमारे त्योहार कैसे शुरू होते हैं, जैसे हम सभी सावन से शुरू हो जाते हैं, सावन से जो हमारे देवी देवता हैं वो अपन भार एक दूसरे देवी देवता के जैसे जैसे पर्व आवत रहते एक दूसरे के समर्पण कर जाते हैं और वो कुछ समय के लिए अपने आप के जो कहते हैं कि धरती बसाए हैं वो धरती से कुछ समय के लिए थोड़ा सा छुट्टी ले लेते हैं, मुला एक दूसरे के अपने कार्य का सहेज के जाते हैं, समझाए के जाते हैं कि एक बात तू कराई कार्य, जैसे कि अवैन भोलेनाथ रहे सावन में, फिर उकरे बाद जो है हमार आए गए का कहते हैं गणेश जी,
1: फिर कृष्ण भगवान आ गए,
0: फिर गणेश जी आ गए, बिल्कुल, फिर धीरे से
1: नवरात्र
0: 15 दिन का वो रहता है, तो
1: फिर उसके बाद देवी माता,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा
1: माता आ
0: जाएगी, ये प्राकृतिक जो कार्य है ये कभी नहीं रुकत, और देखा जब हमारे सबके सांस्कृतिक परंपराओं में ये है तो हम सब अभी अपने जीवन में लगा सकते हैं। मुला देखा बहनी आज जो ने महंगाई के समय बा बड़ा हर चीजन के दाम में त्योहार मनावत कितना कठिनाई होता है, चाहे कौनो भी श्रेणी के परिवार हो, ये बदलत समय और डिजिटल युग में हर चीजन महंग बा, तो बहनी कैसन त्योहार और परंपरा के मनावा जा सकते बतावा।
1: मैं तो ये कहूंगी आज आधुनिकता और सोशल मीडिया के प्रभाव से त्योहार मनाने का तरीका ही बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: सजावट, कपड़े, महंगे कपड़े, दिखावा और मोबाइल पे तस्वीरें साझा करना कई बार त्योहार का मुख्य उद्देश्य ही बन जाता है, जो हमारा महत्व को बिल्कुल बदल देता है।
0: बिल्कुल,
1: हम ये भूल जाते हैं कि त्योहार हमें परिवार और समाज को जोड़ने, जरूरतमंदों की सहायता करने तथा अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य करता है।
0: बिल्कुल,
1: अब देखिए कि जैसे ये धनतेरस है, दिवाली है, अक्षय तृतीया है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसमें ये कहते हैं कि आप सोना खरीदिए, अरे आपके पास जब पैसा ही नहीं है या कम पैसा है,
0: बिल्कुल,
1: कैसे हम खरीदेंगे, ये परंपरा नहीं है, इसी बहाने हम कुछ चीज खरीदते हैं जो हमारे बजट में हमारे उसमें आता, हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं।
0: देखा ये हमारे जो है आने वाली पीढ़ी के जो व्यवस्थित एक कहानी बनावट, मुला जब हमारे ये समस्या ना हो कि हम

0: के जो ने धन की कमी है।
1: ये तो देखिए, हम एक मैं बात कहूंगी कि भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी पानी तो है ही, लेकिन
0: बिल्कुल
1: उसके बाद हमारी शिक्षा है।
0: हाँ बहनी।
1: जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा पूरा व्यस्त जिंदगी है, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई व्यवहार कर रहा है, चाहे कोई मजदूरी कर रहा है, जो भी जिसका जो कर रहा है, लेकिन व्यस्त जिंदगी में ये त्योहार हमें थोड़ा सा हंसने खिलखिलाने का मौका देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: अवसर देते हैं, खुश होने का देते हैं। अच्छा, नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो जो हमारे कपड़े रखे हैं हम वही पहनते,
0: बिल्कुल
1: ऐसे तो हम रोज नहीं पहन पाते। तो ये दिखावे की नहीं है, ये लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है कि हम ये खर्च करेंगे, ये दिखाएंगे और नए नए डालेंगे मीडिया पे हम, तो हमारा
0: बिल्कुल
1: बहुत ज्यादा वायरल होगा। लेकिन जानती है, एक समय था जब सर्दी आती थी और
0: हाँ
1: सर्दी में स्वेटर या जैकेट पहनते थे, तो एक जैकेट 3-4 महीने की सर्दी है पहन ली और हमारा मौसम खत्म हो गया, हमने उठा के साफ करके रख दी, अगली
0: बिल्कुल
1: सर्दी में फिर पहनेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, अरे वो जैकेट तो हमने अपने ग्रुप में फेसबुक पे डाल दिए, तो अब हम वो दोबारा कैसे पहने, यही
0: हाँ
1: खर्चे बढ़ा रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: बहनी। काहे के हो जाता कि अगर ये सब हम सभी लोग देख चुके हैं तो देखा हुआ कपड़ा दोबारा नहाए पहना, ये
1: हाँ
0: मानसिकता कितनी
1: हाँ
0: कहाँ तक ले जाता है इंसान
1: हाँ
0: का।
1: बस रोज फोटो पे जा रहा है, इसीलिए ये बच्चों में और बड़ों में भी ये मानसिकता ही आ रही है कि बस हम ये दोबारा ना हम पहने ना करें या ना डालें। लेकिन वो जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, उसके
0: जी
1: लिए कितना वो महत्वपूर्ण
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना। हाँ
0: देखा बहनी आप एकदम सही कहा तो मुला, देखा जो ये महंगाई की समस्या है, अधिकतर जो ने हमारे सारी उपयोगिता की चीजें हैं वो सब डिजिटल हो गई हैं, जिसकी वजह से लेन देन के प्रक्रिया में सुविधा तो हो ही गया है मुला, खर्चा बहुत बढ़ गया है। इसे लोग बिना सोचे विचारे ये खर्च का उठा लेते हैं अपने बीड़ा, और जो ने कि जहाँ पे 1 रुपए या 10 रुपए खर्चा हो के है वहाँ 100, 50 या 500 रुपए 1,000 की तरह निकल जाते हैं। तो भैया बहनी अपने आप के समझें कि जितनी उपयोगिता उतना खर्च करें।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये
0: जी
1: जानती है, आजकल एक चीज और हो गई है कि ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहते हैं कि हमने घर बैठे बैठे खरीदारी कर ली,
0: ऑर्डर कर
1: उसकी
0: दिया।
1: वजह से इतना ज्यादा आपका फिजूल की खर्ची हो रही
0: जी
1: है
0: हाँ
1: कि आपको अच्छा दिखा, अरे सस्ता लग रहा है, आपने अनावश्यक चीज ले ली
0: बिल्कुल
1: और इसके लिए आप बस खर्चा करे जा रहे हैं। ये आपके सुविधा के लिए बनाई गई चीजें हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है, हर चीज का दुरुपयोग होता है। आवश्यकता है कि हम त्योहार को पूरे उत्साह से मनाएं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनकी परंपराओं को भी समझें। बच्चों को त्योहार की कहानियां, रीति रिवाज और उनके पीछे के छिपे संदेश बताएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, अनावश्यक खर्चे और दिखावे से बचें, त्योहार की खुशी दूसरों के साथ बांटें। अंततः त्योहार तभी सार्थक है जब उसके साथ हमारी संस्कृति और संस्कार भी जीवित रहे। हमें केवल त्योहार मनाने वाला नहीं, बल्कि उनके मूल्यों को समझने वाला समाज बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहो बहनी। काहे कि देखा बाहरी दिखावे पे ना जाए चाहिए, जो उन्हें अपने परंपरा है उका हम अपने आवे वाले समय में अपने जो भी रीति रिवाज है, जो आने वाली पीढ़ी है बच्चे हैं उनका हम अपने को शिक्षा दी। तो जब हम त्योहार मनावत हैं तो अपने सांस्कृतिक और परंपरा धर्म के अनुसार ही करत हैं, जेमा कुछ लोगन का आपसी भाईचारा उत्साह और रीति रिवाज हो जाता है। बहनी ई बात में कितना सच्चाई है बतावा।
1: देखिए, हमें अपने बच्चों को केवल ये नहीं बताना चाहिए कि आज पूजा करनी है, बल्कि ये समझाना चाहिए कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। पूजा करने के लिए 1 मिनट भी काफी है, 1 घंटा भी, जो आपके है। लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है हम किसी को लगा दें, तब हमारी संस्कृति, समृद्ध भारतीय संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहने के लिए हमें उनके ऊपर उनको देनी है, ना कि उनके ऊपर थोपनी है। हमारी संस्कृति की पहचान त्योहार है और उनके पीछे पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, परिवार, समाज और प्रकृति से जुड़े संदेश भी होते हैं। लोक कलाएं, गीतों, नृत्यों और रीति रिवाज हमारी जीवित विरासत का हिस्सा है।
0: बिल्कुल
1: नवरात्र में पूजा के साथ लोक नृत्य, संगीत आदि हमारी विरासत, संस्कृति का ही हिस्सा है। गुजरात का गरबा, बंगाल का धुनुची नृत्य, डांडिया, उत्तर प्रदेश में रामलीला मंचन, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की धरोहर।

0: जो आज भी जीवित है।
1: बिल्कुल सही कहो बनी, दिखा ये धर्म और ये संस्कृति इस पर्व के द्वारा ही हम सभी में आज भी मिला दिखा, इस समय समय की बात है और तीर्थ त्योहार से ही उत्साह मिले के एक साधारण सा मौका है। तो दिखा मधु चौधरी बहनी, आप पनघटे पे आयन, इतनी नीक नीक बात जीत करें, इतनी नीक नीक जानकारी साझा करें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरस्वती बहनी।
3: हाँ गंगा।
2: देखा मधु चौधरी बहनी से रजनी चंद्रा बहनी कितना बढ़िया फरियाए फरियाए बतियाए कि त्योहारे खाली ना मनावे, ओकरे परंपरा के भी समझे के चाहिए मन इनके।
3: बिल्कुल, बिना परंपरा के सब अधूरा बाटे।
2: बिल्कुल,
3: तो चला अब हम तोहका अपने पनघटे की परंपरा के पालन करते हुए एक थे बढ़िया सा सोहर सुनवाई दी, धानी। हाँ। धानी नगर अयोध्या, अनुराधा श्रीवास्तव से।
2: चला सुना जाए, बहनी हरण भी सुने।

0: सरस्वती बहनी।
1: हाँ गंगा,
0: देखा कितना नीक गाँव नहीं रही ना।
1: बिल्कुल, देखा सोहर सुन के तो आनंद आ गया है ना।
0: बिल्कुल आनंद आएगी। तो आप देखा तो का और आनंद आए कि एक तो जानकारी वाली बात आज अपने रसोई घर में वा।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो चला भैया, इतना तू जानकारी दे वाली हो तो देर ना करा, जल्दी
0: देखा
1: से बतावा।
0: जो हाँ, तो रसोई घर से आज हम ये बतावा चाहते हैं कि घर में उपलब्ध जो चीज आई उसे पौष्टिक नाश्ता कैसे बन सकत है।
1: अरे वाह।
0: है ना, देखा सुबह के नाश्ता हमारे दिन के पहली शुरुआत होते है। अगर शुरुआत अच्छी होते तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहा था। लेकिन का पौष्टिक नाश्ता बनावे के बदे हमेशा महंगी चीज की जरूरत होते? बिल्कुल
1: नहीं,
0: ना
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: नहीं।
0: तो हमारे घरे में, अपने घरे के रसोई में ऐसे बहुत सी चीज होती जिससे हम स्वादिष्ट, पौष्टिक और कम खर्च वाला नाश्ता तैयार कर सके थे। तो देखा सुबह उठे के बाद सबसे
1: हाँ,
0: पहले तो हमारा शरीर कई घंटे के अंतराल के बाद भोजन पावत है।
1: बिल्कुल।
0: तो यही लिए सुबह के संतुलित भोजन हमें दिन भर के शुरुआत में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अच्छे नाश्ते में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व तो शामिल होते हैं, जैसे कि अनाज और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा होता है, दाल, चना, मूंगफली, दूध या दही से प्रोटीन मिलता है, फल और सब्जी से विटामिन और खनिज मिलता है, मेवे और बीज से स्वस्थ वसा मिलता है। ठीक है, पर्याप्त पानी से शरीर में जल संतुलन होता है। अब देखा बची चीज, जरा सोचा के चाहिए कि अगर हमारे घरे में रोटी बची बा रात के तो वो बेकार ना होते, उसे हम सभी रोटी के रोल बना सकी थे। जैसे रोटी में सब्जी खूब ढेर सारी ले लो, भुजिया और
1: ताजी
0: ऊपर
1: ताजी हरी हरी
0: हाँ
1: सब्जी।
0: ताजी ताजी सब्जी ले लो, उसमें टमाटर की चटनी डाल के उसका गोल गोल रोल करके गदेलन के दे दा,
1: अच्छा,
0: इतना मजे से खाई है कि पूछा जी,
1: खुश होई होई के।
0: खुश होई के। तो देखा सब्जी वाली रोटी भी बनाए सकते, अगर घर में पोहा बा तो उसे बनाए सकते हैं, सब्जी वाला पोहा खूब ढेर सारी सब्जी डाल दा और पोहा बनाए दा, इतना फायदेमंद होता है कि गदेलन अच्छे से खाबो करिए और उनके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: सूजी बा तो सूजी के चीला बनाए दा या सब्जी वाला उपमा बनाए दा, बेसन बा तो बेसन के चीला बनाए दा, और अगर चना या मूंग बा तो अंकुरित दाल के चाट बनाए दा, बढ़िया से चटपटी
1: हाँ,
0: एकदम,
1: देखा
0: है ना।
1: कितना बढ़िया बतावत हो।
0: तो दूध और केला बा तो केला और दूध के पौष्टिक मिला पेय मनायलो का, जैसे पीस के जिसे कहते हैं कि बनाना शेक, तो केला और दूध पीस के हल्का चीनी डाल दो, गदेलन बड़े मन से पी लिए थे। और अगर दही बा तो दही पोहा, दही चाट या सब्जी के साथ दही खा, देखा अलग ही स्वाद हो कर रहा था, और छाछ बनाए के पी रहा। हालांकि बरसात में दही थोड़ा सा कम खाए के चाहिए, और ज़रूरत हमें देखा महंगे सामान के नाइन में जैसे कहे कि थोड़ी सी रचनात्मकता अगर आदमी के अंदर बा तो चीज़ फेंके के बजाय उसे आसान नाश्ता बनाए सकते हैं
1: मतलब
0: हम
1: कि थोड़ा
0: सब।
1: सा ध्यान देवे की जरूरत है। मतलब घर ही में सब कुछ अगर नहीं बा तो कुछ तो होत है,
0: कुछ
1: तो
0: होते
1: बस
0: हैं।
1: थोड़ा दिमाग लगावे की जरूरत है कि जौन चीज उपलब्ध बा वही से हम का नया कर सकत ही, का अच्छा कर सकत ही, का स्वादिष्ट बनाए सकत ही।
0: बिल्कुल देखा, सबसे अच्छी बात का होते कि ऐसे खाने के बर्बादी भी बहुत कम होते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी बा। देखा किसान भैया हमार सब कैसे कैसे अनाज के जोड़त हैं, और प्रकृति के रूप तू देखते हो
0: बिल्कुल
1: ना,
0: भाई,
1: तब भाई देखा हम सब के चाहिए कि अन्न के कदर हम सब करी।
0: बिल्कुल भाई नहीं, देखा भोजन की बर्बादी बिल्कुल ना करे के चाहिए, तो खाने की बर्बादी ना करें। बची हुई रोटी के इस्तेमाल हो सकत है, सब्जी के हो सकत है, जैसे देखा दाल अगर बची हो तो दाल सवेरे उठ के आटा में गूंद ला बढ़िया से, ओमे थोड़ा सा अजवाइन डाल दा, थोड़ा प्याज डाल दा, अगर मलाई हो
1: और
0: घरे में थोड़ी सी मलाई डाल दे, इतना स्वादिष्ट पराठा बनत है ना, क्योंकि चाहे अचार से खा चाहे दही से खा मन एकदम खुश हो जाता है।
1: देखा गंगा बहिनी, तू तो बहुत ही बढ़िया बताओ कि देखा कोनो चीज घरे के जो ना बर्बाद ना होए, फेंकाए नहीं, है
0: फेंकाए
1: ना।
0: ना,
1: तो ध्यान अगर हम सब देवे थोड़ा सा, तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल हम सब के पैसा भी बर्बाद ना होए और अन्न के कदर भी होए।
0: यही नाते तो कह

0: ला
1: अब
0: हाँ
1: गंगा एक ठे तो का बढ़िया सा गीत सुनवाई दी है ना,
0: बिल्कुल
1: तो चला एक ठे बढ़िया सा गीत तो का सुनवाई देती दिल्ली 6 फिल्म से।

0: सरस्वती बहनी,
1: गंगा
0: देखा पनघटे पे अपने आवा अगर, तो कितनी नीक नीक बतकही होत है, कितना नीक नीक गीत गौ नहीं होत है, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी हमें सबके बहनी हरन के मिलत है। हमार तो मन कहा था कि हम पनघटे पे ही बैठी रही दिन भर।
1: अच्छा ऐसा बात है।
0: बिल्कुल। अच्छा देखा एक बात और, अब देखा बरसात जात वह है ना, तो जोन मसा माछी हैं ये बहुत अति कैदे हैं, तो यही नाते मच्छर उच्छर के बहुत ध्यान दें, नीमी के खूब धुईयर सुलगाए के रखें, और गोरुन के लगे तो अक्सर कही के, जैसे देखा मनई के लगे तो मनई कही देते हैं, लेकिन गोरुन के भुलाए जाते हैं, वो जीव हैं बहनी, देखा हमें सबका दूध देते हैं, उनसे कितना मतलब
1: बिल्कुल हम सब दैनिक जीवन में बहुत जरूरी थे। हाँ
0: यही नाते मनई के साथे साथे गोरु बच्चों के भी ध्यान दें, और धान के फसल तो इस बार देखा कितनी बढ़िया भय है ना, धान के फसल हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया भय, कितना पानी बरसें दऊ, यही नाते फसल अच्छी भय, तो फसल अच्छी भय यही खुशी में भी, और बहनी हरन जोन प्रोग्राम हमारे सुनत हिन ओकरे खुशी में भी एक ईमेल संदेश चला सुना जाए और बहनी हरन भी सुने।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी, और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: panghatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGHATPROGRAM@gmail.com।

0: एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई। सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
1: सरस्वती बहनी,
3: हाँ
1: इंतजार रही,
3: बिल्कुल इंतजार रही। देखा हमार बहनी रेन अपने मन के बात हम सब तक जरूर पहुंचावे, काहे कि हम सब सच में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
1: बिल्कुल, तो देखा वो कहा था ना कि पनघटे पे आए के जाए, आए के बाद जाए के मन ना है कहा, लेकिन देखा एक नियमित समय बा ओकरे अंदर हमें सबके बातचीत करके, अच्छी अच्छी जानकारी दे के, अच्छे अच्छे लोकगीत सुनाए के, बहनी हरन से बतिया ले थे। तो अब घरे चले के बेला होत बा, बहनी हरन से राम राम किया जाए।
3: राम राम बहनी हरे।

0: ना कि पनघटे पे आए के जाए, आए के बाद जाए के मन ना कहा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही
0: देखा
1: कहा तुम।
0: एक नियमित समय बा, ओकरे अंदर हमें सबके बातचीत करके अच्छी अच्छी जानकारी दे के अच्छे अच्छे लोकगीत सुनाए के पहनी हरण से बतिया ले थे। तो अब घरे चले के बेला होत बा,
1: तो
0: बहनी
1: बहनी
0: हरण
1: हरे,
0: से राम राम किया जाए,
1: हाँ
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: बहनी
1: बहनी
0: हरण।
1: हरे।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Once again, Prime Minister Narendra Modi inaugurates SEMICON India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन 2.0

0: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
3: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खाब वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
6: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
1: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से

0: गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज

0: बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूलकिट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
2: Draining the swamp that provided an इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। यह है आकाशवाणी प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आपने सुना समाचार जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से हो रहा था। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित हमारा अगला कार्यक्रम उमंग।

खाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी। मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर। आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहां भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं।

ने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
1: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में, तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
0: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल,

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न

0: उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं।

0: नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
4: बच्चे का

0: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने,

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सांध्यकालीन सभा में शाम 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 4 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियां हम सभी के साथ आज ये शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, और हर बार की तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है। आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत जरूर आपकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना, किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई, कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया, और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए।
1: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, कि क्यों फौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए। तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फौज, डिफेंस फोर्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फौज ज्वाइन करने के लिए। ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी। उसके बाद मेरे पिताजी भी फौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया, बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी। तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही, और इसलिए यू नो इट वाज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा। सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप ज्वाइनिंग।
0: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में, आने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड कर्नल विवेक चौहान, जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
1: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना, मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे, और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था, यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो। सो मैं शैतान बच्चा था, पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिन्ड हो गया और थोड़ा शांत हो गया, बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबडी।
0: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया।
1: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा। मैं NDA से हूँ और फिर IMA से पास आउट हुआ, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में नोन हैं, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इनटू बॉयज़।

नंदन वंदन अभिनंदन संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यकीन मानिए हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने

0: to men, and discipline is a very large part of it. And you know, once जैसे मैंने कहा एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये discipline की boundaries थी इससे जो है I have become a more disciplined or possibly a better person.
1: बिल्कुल, आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेस उसे पूरी तरह से बदल देती है, हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है, जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है।
0: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना, दी ट्रेनिंग एकेडमीज ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर अलग बैकग्राउंड से लेते हैं एंड दे ट्रेन यू इन टू द फाइनेस्ट दैट द कंट्री प्रोड्यूसेस sometimes with pain, sometimes without pain, but the end result is always good.
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो पहले NDA, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ जहाँ पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने ज़रूर उसको एंजॉय किया। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेज ज्वाइन की भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर जो अंदर का बच्चा था ना वो जीवित रहा और वहाँ पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया, तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया?
0: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। जब हम इंडिया गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम IMA पहुँचे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हमें ज्वाइन किए थे। सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है, एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन IMA, नॉट दैट NDA में नहीं था, बट कंपैरेटिवली IMA वाज अ मच बेटर टाइम।
1: NDA एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप CDS का एग्जाम देने के बाद या फिर वो जो NDA से जाकर फिर IMA ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेज लाइफ ना देखी हो। एक बात और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अब सुन रहे होंगे, मुझे चाहते हैं उनके बच्चे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म फोर्सेज जाता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है, हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहाँ जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल। आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है वहाँ लाइफस्टाइल इतनी ईजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकल कर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांत शालीन ऑफिसर बन गया?
0: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था, लेकिन एक ट्रांजिशन है, यू नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम। सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ यूनिक ट्रांजिशन एंड दैट I think is the what training teaches you over 4 years कि आप responsibility कैसे लेते हैं, decision making कैसे करते हैं और आप कैसे जो है pressure को सहते हैं, उसमें कैसे react करते हैं। So I think that is the transition between you know before joining the forces and after joining the forces.
1: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी और मेरे दोस्त जब इंटरमीडिएट एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद वो काफ़ी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम पग इंटरमीडिएट एकेडमी देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है, अंतिम पग क्या है?
0: सो अंतिम पग इज दैट फाइनल स्टेप विच

0: changes you from a carefree bindaz under trainee to a responsible decision making officer. कहने को तो वो एक सेकंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड. यू नो, आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में, जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं.
1: वाह क्या बात है. उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया. केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर ये गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम. और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं. और जब एक ऑफिसर की दिल की बात ये गाना कहता है, तो समझ जाइए उसके लिए, उसकी सर्विसेज, उसके लिए सेना के क्या मतलब है.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो जिंदगी जैसे 360 डिग्रीज टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो दैट अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे बिकॉज यू गेट कमीशन एट 21, 22, 23 ईयर्स ऑफ एज, सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे, रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हों, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं। सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योरसेल्फ इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था, एंड नाउ यू कम इन टू अ सिचुएशन वेयर देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल, यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders, and this is a very interesting, very painful, and very necessary stage. आप तभी जब जब आपके soldiers आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, they can approach you, आपके साथ train कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, that is the day you truly become an officer.
0: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहाँ पर आप स्वयं से लड़ते हैं। मैदान जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ है।
1: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग, है ना। वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया, एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर as good as the troops that you lead, jinki command aapko di gayi hai. So ye pehli ladai aapke saath hai, because that hard work takes effort.
0: Abhi aapne jitni baatein mujhe batayi hain, kahin na kahin ek prashn aur mere dimag mein aaya hai, aur aksar jab hum in teen shabdon ko dekhte hain to ye matra shabd nahi reh jate, inka maayna, inki paribhasha bahut zyada badi ho jati hai. Agar main kisi bhi officer se puchungi to bas wo yahi kahenge, naam namak nishan, नाम नमक निशान क्या है?
1: सो दिस इज द ethos ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे, तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर

0: कल्चर्स हैं उन सब के से आए हुए थे। नागास थे, मीज़ोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे। एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है उसके बीच में देर इज़ नो अफिनिटी, देर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के वनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा ये फौज आपको सिखाती है। देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आँच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले। दैट इज़ वाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए, ठीक है। वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो। एंड इफ़ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो, जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आँच ना आए, ठीक है। सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड देयरफॉर नाम नमक निशान।
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पर टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो 1.5-2 साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं, अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है। और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई, एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है, उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वाज इन अ मल्टीनेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे, तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहाँ आप को दूसरे की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
0: सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो, सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें,

0: उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा, आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड यू नो, यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, इट्स केपेबिलिटीज एंड वट काइंड ऑफ पीपल यू नो ऑपरेट इन दैट। सो एंड यू नो ऑन अ मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड ऑल सोशल इवेंट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, इसमें भी इंट्रैक्शन होता था। तो दिस वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज वेरी गुड फॉर एक्सपोजर एंड फॉर डिस्प्लेइंग आर केपेबिलिटीज टू द वर्ल्ड।
1: बहुत खूब। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में। एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज खूब दबा के डांस और मजे लेते थे।
1: तो ये बात निश्चित है कि जब अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब छम्मा छम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें छम्मा छम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ जी, बाद में भी मिशंस जब हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफ़ी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटिजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपके यूएन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और इसको खूब
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उसे एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए। जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए, आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: वेलकम बैक संदेश टू सोल्जर्स. आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है. और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं. और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ. तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान. कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है. ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो थोड़ी गलती से हो गया. तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे. तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज़ हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे. सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज़ हो गए. तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ. जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट. अच्छा. तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो. तो वो आज ही निकालो का इफ़ेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए. तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट ईजी टू गेट. तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, दो हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो

0: मेघालय से, हमको बोला कूच करो चलो पहुंचो। तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर। वो क्या ट्रेन के गार्ड के केबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो। लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए, तीन चार दिन लगे पर हम पहुंच गए। एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम। आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे साथी वहाँ आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं, तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है। सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु डिड अ वेरी इम्प्रेसिव जॉब। एंड जो लोग वहाँ जाते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हाई ऑल्टीट्यूड में उन हाइट्स पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है। वहाँ का एक इंटरेस्टिंग वाक्या सुनाता हूँ। तो मैं पहुँच गए हम, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग लोकेशंस में, तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर कवर नहीं था क्योंकि वो हमारा इक्विपमेंट वैसा था। तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह जो सरदार जी थे। अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे, तो मैंने भी हेलमेट पहना होता। फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी हुई थी। अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना। तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता। फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखता और मैं देखता उसकी तरफ, तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ। फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट। सो दिस वाज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स आल्सो।
1: बट ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है।
0: Yeah, I think this is the ethos which we are brought up with, you know. And while it was not funny that time, today in hindsight, I can laugh over it, and so can Jagtar.
1: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे तो उनको ज़रूर हंसी आती होगी। लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग कहूँगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए ही कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है, और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो, और वापस अपने साथी को लेकर आना ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन में फतह तो हासिल करनी ही करनी है, पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर, यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
1: जी, अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुँच गए। तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है, क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देयर इज़ वन लाइफ, एक जिंदगी है, और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना। ऐसा कोई चीज़ छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया। सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया, मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, डेढ़ साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे, और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए, ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया। सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है, और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअल

0: इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में. सो पूरे कश्मीर घाटी, अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला. लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में, डिफ़िकल्ट एरियाज में, वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स. देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए, बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू एट सम रिस्क, समटाइम्स क्वाइट अ बिट ऑफ रिस्क, इज़ वन ऑफ द फ्यू सेटिस्फाइंग थिंग्स दैट मेरे को लगता है in my career as a helicopter pilot.
1: क्या खूब. हमारे हम जो भी काम करते हैं उसमें एक सेटिस्फाइंग पॉइंट जरूर होता है, और आपके लिए सेटिस्फाइंग पॉइंट था जहाँ पर जीवन दान, यानी कि जीवन बचाया. और अपने जीवन को जब हम उसका उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और ऐसा सिर्फ एक आर्म फोर्स पर्सन ही सोच सकता है कि जीवन को तो हाथ हथेली पे लेकर चलते हैं और इस उद्देश्य से चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है.
0: और इसका यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन कमराडरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क. तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअल्टीज हो गई. 2 आदमी हमारे, उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था. बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता क्योंकि रोड दूर था. तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो ज़िद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा. और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया. So, you know, this is part of the ethos, this is part of the story of the Indian Army, that for each other, there is a lot of risk, a lot of assistance that we give to each other.
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना, यहाँ पे भी एक तरह का एक्सचेंज है. आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था. दिस ऑल बट इट रिवॉल्व्स अराउंड यू.
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स, कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई, ठीक है. अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रांग ethos.
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया. 23 साल बाद रिटायरमेंट. वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर. क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ छोड़ आया हूँ?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था, और रिटायरमेंट से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था. एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट, फ्रॉम दैट उस ग्रुप से आप निकलना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 months ऑफ स्लीपलेस नाइट्स टू डिसाइड कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं. बट फाइनली जब मैंने छोड़ा, उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. यू नो आई वेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया. वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में. सो दैट

0: जब तक मुझे जो रियलाइज़ होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे हूँ, वो रियलाइज़ हो नहीं पाया. एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर. आज भी आई फॉलो द सेम टाइमलाइन. सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट.
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर, फिर अपनी सर्विसेज देना और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, निश्चित रूप से. लेकिन मैं जानना चाहूँगी, व्हाट आर प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो?
0: ओके, सो प्री मैच्योर रिटायरमेंट बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज़ रिटायरमेंट, अप्लाइंग फॉर रिटायरमेंट और टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर योर मैंडेटरी सर्विस पीरियड और योर मैंडेटरी बॉन्ड पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड. परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 20 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार सोल्जर्स के लिए अलग अलग रैंक पे टाइम निर्धारित है. सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स बड़े सारी, इट्स अ लाइफ ऑफ सैक्रीफाइस. And sometimes because of various compulsions or personal reasons, a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization agrees on the justification ki haan aapki baat mein merit hai, they will let you go before your mandatory time. So that is what premature retirement is.
1: जी, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के ज़रिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं. यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं. बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र शारी मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है. तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. जय हिंद, जय भारत. तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है. पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है. अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से, और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत. संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है. और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त, जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन्ड ऑफिसर तैनात हुए थे. तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई सर, ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस, और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे. तो क्या कहना चाहते हैं?
0: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज़ उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते. अगर आपके घर से पीस है, आपकी वाइफ

0: जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है. सो दैट इज़ अ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली. एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज, फॉर द वाइव्स ऑफ ऑल आर सोल्जर्स हु लेट देम गो, हु ग्लैडली लेट देम गो टू देयर फील्ड पोस्टिंग्स, फॉर देयर डिप्लॉयमेंट्स, फॉर देयर ट्रेनिंग्स, बिना रो धो के, बिना रकस क्रिएट करे हुए, बिना कंप्लेंट्स करे हुए, और उनकी एब्सेंस में अकेले घर संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखभाल करना, पेरेंट्स को देखभाल करना, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज़ अ क्रेडिट टू द लेडीज, टू ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम.
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए.
1: वाह क्या बात है. तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है. और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. सो मैं यही कहना चाहूँगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड. बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पा लीजिए. हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, यू नो, प्लीज बी प्राउड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, बिकॉज दे डू सैक्रिफाइस अ लॉट on your behalf, and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
1: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश. और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ, निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं. तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना, और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है. तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात.

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव तुसुबान 2.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

यह है कार्यक्रम का पहला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर, फिल्म का नाम भेड़िया।

कार्यक्रम का पहला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर, फिल्म का नाम भेड़िया।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, शंकर एहसान लॉय की आवाज में। संगीतकार भी शंकर एहसान लॉय हैं। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म का गीत। अमाल मलिक की धुन है, कुमार का गीत और आवाज़ अरिजीत सिंह की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साल 1947 का वो मंजर याद आता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त हमारे पास चुनौतियों का पहाड़ था, गरीबी, संसाधनों की कमी और एक अनिश्चित भविष्य। लेकिन आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ से सामने दिखता है भारत @2047 का एक नया और भव्य सपना। सोचिए, जब हम अपनी स्वतंत्रता का 125वां साल मना रहे होंगे, तब हमारा भारत कैसा होगा? तब भारत केवल इतिहास के पन्नों में अपनी गाथाओं के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली एक महान शक्ति बनेगा। आधुनिकता और सामाजिक न्याय का एक ऐसा प्रतीक होगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देगी। तो चलिए इस सुनहरे भविष्य के सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और आप सुन रहे हैं युववाणी।

अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जो 2047 के भारत को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करेगा, और वो है तकनीक और आत्मनिर्भरता। आज से कुछ साल पहले तक हम तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन 2047 का भारत सिर्फ दूसरों की बनाई तकनीक का इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता बिल्कुल नहीं होगा। हम दुनिया को समाधान देने वाले सबसे बड़े निर्माता होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस रिसर्च और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत दिमाग का लोहा पूरा विश्व मानेगा। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? शहरों और गांवों के बीच का जो डिजिटल अंतर आज हमें दिखता है ना, वो 2047 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देश के किसी भी सुदूर गांव में बैठा बच्चा भी उसी हाई स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठा सकेगा जो किसी भी मेट्रो शहर के नागरिक को मिलती है। यानी तरक्की अब सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश के रग रग में दौड़ेगी।

किसी भी देश की असली ताकत उसकी मशीनी या तकनीक नहीं, बल्कि उसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति होती है। और 2047 के भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा और हमारी महिलाएं होंगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आ चुका होगा। 2047 में हमारी पढ़ाई केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका पूरा फोकस स्किल्स, रिसर्च और नए नए बिजनेस शुरू करने यानी स्टार्टअप पर होगा। हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी देने वाले बनेंगे। और जब बात तरक्की की हो तो हमारी नारी शक्ति, कैसे हम भूल सकते हैं उन्हें। 2047 में भारत की महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। अंतरिक्ष की खोज से लेकर सेना की कमान संभालने, खेल मैदानों से लेकर देश का शासन प्रशासन चलाने तक, हर जगह महिलाओं की बराबरी की और सबसे मजबूत हिस्सेदारी होगी। जब देश की आधी आबादी इतनी सशक्त होगी तो भारत को महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई देश तेजी से आर्थिक तरक्की करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बैठता है। लेकिन 2047 का भारत दुनिया के सामने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी मिसाल पेश करेगा जो दुनिया को ये सिखाएगा कि तरक्की और पर्यावरण कैसे एक साथ चल सकते हैं। 2047 में हमारी सड़कें प्रदूषण मुक्त होंगी। सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और ग्रीन फ्यूल से चलने वाले वाहन होंगे। हम बिजली के लिए कोयले पर नहीं बल्कि सूरज की धूप यानी सोलर एनर्जी और बहती हवा पर निर्भर होंगे। नेट जीरो नीतियां हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी होंगी। हम एक ऐसा भारत बना रहे होंगे जहां आर्थिक समृद्धि भी होगी, सामाजिक न्याय भी होगा और हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी। ये भारत @2047 केवल सरकार का सपना नहीं है, ये हम सब 140 करोड़ भारतीयों की एक साझा संकल्प है। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, वही हमारे कल के महान भारत की नींव होगी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: श्रोताओं, अब बारी है हमारे सेगमेंट प्रेरणा पुंज की, और आज की हमारी प्रेरणा पुंज है रोजा पार्क्स। 1 दिसंबर 1955 की शाम अलाबामा राज्य के मोंटगोमरी शहर में एक साधारण सी दिखने वाली 42 वर्षीय दर्जी रोजा पार्क्स बस में सवार हुई। उस दौर में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जिम क्रो कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों और बसों में नस्ली भेदभाव कानूनी रूप से लागू था। बसों के शुरुआती कुछ सीट्स केवल श्वेत यात्रियों के लिए आरक्षित होते थे और अश्वेत यात्रियों को पीछे की सीटों पर बैठना पड़ता था। जब बस में श्वेत यात्रियों की संख्या बढ़ी तो बस चालक ने रोजा पार्क्स और उनके साथ अन्य 3

इन अश्वेत यात्रियों को अपनी सीट से उठकर पीछे जाने को कहा। बाकी तीन यात्री तो उठ गए, लेकिन रोजा अपनी जगह पर जमी रही। उन्होंने शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ उठने से मना कर दिया। रोजा पार्क्स का ये इनकार केवल शारीरिक थकान के कारण नहीं था। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, लोग हमेशा कहते हैं कि मैंने उस दिन अपनी सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैं थकी हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं शारीरिक रूप से थकी हुई नहीं थी, मैं जिस एकमात्र चीज से थकी थी वो था अन्याय के आगे झुकना। इस इनकार के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने रंग भेद के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया। रोजा के समर्थन में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 13 महीनों से अधिक तक बसों का बहिष्कार किया गया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने बसों में नस्लीय भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया। इस घटना ने 1964 के सिविल राइट्स एक्ट का मार्ग प्रशस्त किया। परिवर्तन लाने के लिए हमेशा भाषणों या हिंसा की जरूरत नहीं होती। अन्याय के खिलाफ लिया गया एक शांत, निर्भीक और दृढ़ निर्णय भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।

श्रोताओं, अब बारी है हमारे प्रश्न मंच सेगमेंट की, जिसमें हम सवाल पूछते हैं और जिस सही जवाब अगले कार्यक्रम में हम देते हैं। तो कल का सवाल मैंने पूछा था, जन प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 12 नवंबर। और आज का सवाल है, डीएनए की खोज किसने की। वैसे आपको बता दूं, जिन्होंने डीएनए की खोज की है उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और ये सवाल का आंसर ना मैंने क्लास 10th में पढ़ा था, और जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो डीन जो हमारे थे वो साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने ऐसे फन में पूछा बच्चों से, तो फिर मुझे लगा कि मतलब पढ़ाई कहीं भी काम आ जाती है, आप किसी भी स्ट्रीम से रहें। तो आज का सवाल है, डीएनए की खोज किसने की। आप इसका सही आंसर हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8004926250। आई रिपीट, 8004926250।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे युववाणी आकाशवाणी का, ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का

0: सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र

0: के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सविता सागर और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा हिंज लाल से किसान चर्चा सुनेंगे। हिंदी कार्यक्रम शाम 7:31 पर, इसमें आप सुनेंगे अपर्णा गोरे की कहानी। सुगम संगीत रात 7:45, इसमें आप रेणु पटेल के स्वर में गीत और भजन सुनेंगे। रात 9:30 होगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे उस्ताद निशात खां का सितार वादन। फिल्म संगीत रात 8:00, सबरस रात्रि 8:30 पर और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत में किसान भाई डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा स्टीविया की खेती कैसे करें। प्रातः 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें आप डॉक्टर एस एम सिंह की वार्ता सुनेंगे। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां, इनका होम्योपैथी समाधान। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन सकते हैं सवेरे 7:00। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सवेरे 7:30 और रात्रि 10:30 पर आप कमला बोस का ख्याल व गायन सुनेंगे और दिन में 12:15 पर शेष कुमार तिवारी का बांसुरी वादन। सुगम संगीत सवेरे 9:50 पर और रात 7:45। सवेरे 9:50 पर कलाकार होंगे समृद्धि श्रीवास्तव और रात 7:45 महेश्वर दयाल। लोकगीतों के कार्यक्रम में सवेरे 10:30 पर सुनिएगा दिनेश कुमार अभयराज और साथियों के स्वर में लोकगीत। शाम 6:30 लोकगीतों के कलाकार होंगे कमलेश चंद्र यादव और साथी। शाम 6:30 लोकगीतों के अलावा पंचायत घर में ग्रामीण भाई शिवांकी सिंह से की गई बातचीत सुनेंगे। राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। श्रोता अपने फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। गृहलक्ष्मी में 7:15 ग्रामीण बहनें डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव की वार्ता सुनेंगी। वार्ता का विषय होगा भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा। नन्ही दुनिया शाम 5:00 और संस्कृत कार्यक्रम शाम 7:31 पर। अक्षयवट में रात्रि 8:30 पर आप अनिल कुमार श्रीवास्तव की वार्ता सुनेंगे। वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां होगा। रात 10:00 सुनिएगा दिलीप तिवारी का लिखा नाटक टूटा हुआ पंख। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में देशगान।

0: अभी आप समूह स्वर में देश गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 107.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नवदिल्ल्यां सेमिकॉन इंडिया 2026 इति कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अकारि। सेमीकंडक्टर क्षेत्रे च प्रारूपणाय 200 नवोद्यमानां पोषणं विधीयते इति केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। मोदिनः 25 लोकसेवाव्रत पूर्ति अवसरे भाजपेति दलस्य मासात्मकं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य प्रभृति समालब्धम्। पीएम विश्वकर्मा योजनायाः अद्य वर्षत्रयात्मकम् आनुपूर्विक कार्यकालं पूर्णतां गतम्। भारतेन पाकिस्ताने आतंकी संरक्षणं विगोपितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं भारतम् अफगानिस्तान दलेन सह योत्स्यते। अथ

0: वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूमि परिसरे 26,000+ सेमिकॉन इंडिया इत्याख्यस्य त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। त्रिदिवसीयं सम्मेलनमिदं भारते सहकारस्य, निवेशस्य, नवाचारस्य, प्रतिभाविकासस्य च संवर्धनाय केन्द्रितमस्ति। अत्रावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकी तन्त्रं तीव्रगत्या प्रसरति, यच्च नवाचाराय, निवेशाय, विकासाय च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयति।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी न्यरूपयत् यत् एकत्र भारतस्य अर्थव्यवस्था संवर्धते, अपरत्र च भारतमालक्ष्य वैश्विक विश्वासोऽपि दृढीभवति। तेन प्रतिपादितं यत् समवान पूर्णायां वैश्विक परिस्थितौ अपि भारतेन 17.8% वृद्धिमानाङ्कः पञ्जीकृतः। अस्मिन्नेव काले जापान देशस्य ऋणमूल्याङ्कन संस्थया भारतस्य सार्वभौम ऋण श्रेणी समुन्नयिता। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् देशस्य प्रत्येकम् अपि नागरिकः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पबद्धतया कार्यं करोति।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् क्षेत्रे अस्मिन् आधारशिला स्थापिता अस्ति, अग्रे च सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः माध्यमेन उद्योग निर्माणं भविष्यति। या 6 प्रमुख स्तंभेषु आधारिता अस्ति। एतेषु स्तंभेषु अर्धचालक अभिकल्पना यंत्राणि, स्मृति घटकाः, सिलिकॉन तत्वं, मिश्रित तार्किक निर्माण घटकाः, अनुसंधान विकासश्च अन्तर्भवन्ति। मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् सर्वकारेण भारते अर्धचालक आवश्यकतानां संपूर्ण क्षेत्रे चिप अभिकल्पनायै न्यूनातिन्यूनं 200 नूतन उद्यमान संस्थाश्च समुपकर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। अत्रावधेयं यत् भारतस्य अभिकल्पना सामर्थ्यं विश्वविश्रुतमस्ति, अतः सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः अन्तर्गतं अर्धचालक अभिकल्पना संस्थानां संवर्धनमेव प्रमुखं लक्ष्यं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतावद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने तस्य जन्मदिवसे हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयताम्। सामाजिक सञ्चारपटले सन्देशं प्रेषयन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः विगतेषु 25 वर्षेषु श्रीमोदिनः अनुकरणीयां लोकसेवां, राष्ट्रनिर्माणाय च तस्य अभूतपूर्वं योगदानं प्राशंसयत्। उपराष्ट्रपतिना न्यरूपयत् यत् श्रीमोदिनः दूरदृष्टि सम्पन्ने नेतृत्वे भारतं विश्वस्मिन् हि विश्वे एकं प्रकाशमानकेन्द्रत्वेन विभाति, अथ च विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं वर्तते। अपरत्र कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी चापि अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं जन्मदिवसस्य शुभाशयान् व्याहरताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सतत सार्वजनिकजीवनस्य, लोकसेवाव्रतस्य च 25-वर्षीयपूर्णताम् अवबुध्य भारतीयजनतादलस्य मासात्मकं देशव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य प्रभृति अबाधित प्रामाण्येन समालब्धम्। आगामी मासस्य 17 दिनांकं यावत् आनुपूर्विक क्रमेण

पंचो राम राम भैया। देखा अपने पंच भैया बहनी हरन से तो हम यह कहा भैया कि ई टेम जौन है अपन खेती किसानी में जौन प्रमुख धान की फसल बा और ई धान की फसल का ध्यान रखा बराबर बहुत जरूरी बा। काहे कि धान के फसल में भी तरह तरह के रोग बिरामी लाग जात हैं, तो ई धान के फसल में कौनो भी तरह के रोग बिरामी ना लागे ई के बचाव के खातिर अपन टेम टेम से निगरानी करत रह।

और साथ ही साथ अपना जैसे कि अपन विशेषज्ञ भैया बहनिया से जानकारी लेके अपन दवा दर्पण का भी प्रयोग करें और दवा का छिड़काव करें। साथ ही साथ खेती किसानी में सा फसली खेती का भी बड़ा महत्व बा। तो किसान भैया बहनी हरिन जैसे कि अपन दलहनी फसल के साथ साथ जौन है भैया देखा बाजरा है, मूंग फली है, तिल है और भी तरह तरह के अपन फसल ले सकत हैं। तो जौन है कि अपन सा फसली खेती यानी मिश्रित खेती के साथ साथ एक फसल के साथ साथ और भी अधिक फसल का लाभ निकाला थे। इसके साथ ही साथ किसान भैया बहनी हरिन का भैया देखा एक बात और हमें जानकारी देवा चाहिए थे कि खेती किसानी में तो भैया काम धाम लागे रहते हैं, मुला अपने स्वास्थ्य के भी जौन है विशेष तौर से ध्यान रखा बहुत जरूरी बा। तो जौन भैया देखा जौन बीपीएल सूची के तहत भैया बहनी बा उनका ऐसे परिवारन के खातिर जौन है सरकार भी तरह तरह की योजना चलाएल बा और साथ ही साथ जौन है कि वह योजना में एक आयुष्मान कार्ड योजना। तो योजना के तहत अपन किसान भैया बहनी हरिन भैया देखा अपन आयुष्मान कार्ड जौन है जरूर बनवा लें। ई खातिर जौन है परिवार के स्वास्थ्य के इलाज बदे 5 लाख के एक मुश्त भैया सरकार की ओर से यह योजना के तहत लाभ मिलत है। देश के भी कई भैया देखा चाहे जौन भी कोने में जाए के अपन जौन भी सूची में अस्पताल के नाम दिहल गवा है ऐसे अस्पताल में जा कर के अपन स्वास्थ्य की जाँच परख कर सकते हैं। तो खेती किसानी के साथ ही साथ भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुला आज अपने किसान भैया बहनी हरिन का अपने पंचायती में एक किसान चर्चा भी सुनवा जाई हिंचलाल पटेल से रानू जायसवाल की बातचीत बा ये तो सुनवा जाई। मुला अपने किसान भैया बहनी हरिन का बहनी सविता सागर संघातिन की गाई एक विकास गीत बा तो यह सुनवा दें तो फिर आगे किसान चर्चा हो तो सुने।

0: हाँ भैया, देखा सविता सागर संघातिन के गाई लोकगीत तो हो गए, साथे साथ भैया जौन किसान चर्चा वाली बात रही है तो देखा भैया कि आपन जौन है किसान भैया बहनी हरिन सुनिए भैया, देखा आगे बात बत कही हुई किसान भैयान का सुनवा दिया।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हाँ भैया, देखा किसान भैया बहनी रहना अपन संदेश तो सुन लें भैया, देखा जब उन किसान चर्चा वाली बात रही तो हिंच लाल पटेल से रानू जायसवाल की बातचीत बा किसान भैया बहनी हरण सुनाए।
3: देखो भैया, समय समय पे अपने पंचायती में किसान भैया बहनी है आवत रहे थे और किसान चर्चा पे बातचीत होत रहे थे। आज अपने किसान चर्चा में हिंचलाल पटेल भैया आए हैं। हिंचलाल पटेल भैया, अपन परिचय दे दें, आपके घर कहाँ बाटे, हमारे श्रोता हरिन के बताए दें भैया।
4: जिला रोहानी बनपुरवा।
3: अच्छा, तो हिंचलाल भैया ये बताओ, आप खेती खेती कौन के इस समय कौन कौन खेती किए हैं?
4: धान लगावा।
3: हाँ,
4: मूली लगीबा।
3: अच्छा,
4: और ग्वालफली लगीबा।
3: अच्छा,
4: तरोई लगीबा।
3: हाँ, तो ये सब के खेती आप किए हैं, मतलब सब्जी का भी खेती किए हैं और साथे साथे का नाम से अनाज का भी खेती किए।
4: हाँ।
3: हिंचलाल भैया ये बताओ, धान के खेती कैसे हो रहे, काका कहे रहे कि पैदावार अच्छा हुआ?
4: जुताई कराए रहे।
3: अच्छा,
4: नौफरवा से।
3: नौफरवा से।
4: हाँ।
3: ओकरे बाद का कहिए भैया?
4: ओके बाद पुलाव कराए रहे।
3: हाँ,
4: दिन्नाव।
3: अच्छा, हिंचलाल भैया ये बताओ, जो उन धान के बेहन डालत है, खुद ही डालत है कि खरीद के लिया?
4: नहीं, स्वयं डाली थे।
3: स्वयं डालत।
4: हाँ।
3: अच्छा, एक विधा का चीज के ध्यान रखे के चाहे किसान भैया बहनी हरन का?
4: ध्यान का जुताई के पानी भर के।
3: अच्छा,
4: उसके बाद बिया छीट दे।
3: अच्छा,
4: मसूर की सिंचाई करिए, तैयार हो जाते हैं।
3: तैयार। अच्छा, कितना दिन में बेहन तैयार हो जाते हैं? इंशाल्लाह बेहन
4: एक महीना में हो जाते हैं।
3: अच्छा, ओकरे बाद का कर रहे थे इंशाल्लाह?
4: ओके बाद परवाह के लगवाई दिया।
3: लगवाई दिया।
4: हाँ।
3: तो लगावत की का का चीज के ध्यान देवे के होते?
4: लगवाई को ध्यान कुछ नहीं।
3: कुछ नहीं,
4: कुछ
3: बिना पानी के लगाए दी है?
4: नहीं, पानी तो भरी जाते
3: हैं। पनिया भरी है तो पनिया कितना हो चाहिए एकर ध्यान देवे के हो कि नहीं? किसान भैया बहने
4: पानी ओकर डूबे भरे के रह चाहिए।
3: अच्छा, तो मतलब आप बेहन लगाए दिहन ओकरे बाद तैयार। अच्छा, और कौन कौन चीज के ध्यान देवे को हिंचलाल भैया? जैसे धान हम लगाए दिए, धान बढ़े लगा तो कब खाद दिया जाए, कब पानी दिया जाए, ये किसान भैया बहनी हरन के हमें बतावें ताकि उन्हों लाभ लें जैसे आप धान के अच्छा पैदावार करे थे।
4: खाद छीट के धान लगवाई दे।
3: हाँ,
4: 15 रोज़ खाद डालाई।
3: अच्छा अच्छा, घास निकाले भी का करे थे हिंचलाल भैया? जैसे धाने में घास जाम गए हैं ओकरे भी का की है?
4: दवाई छिड़काव कई दी है।
3: दवाई छिड़काव कई?
4: हाँ।
3: कौन चीज़ के ध्यान रखे कि चाहे हिंचलाल भैया दवाई छिड़काव में, कब छिड़का जाए, कि पानी भरा रहे तब छिड़काए दवाई, कि खेत सूखा रहे तब छिड़काए, जौन से कुल घास जर जाए?
4: नहीं, सूखा रहे दवाई।
3: अच्छा,
4: सूखा रहे।
3: हाँ,
4: दवाई छिड़क दी, घास जर जाए।
3: अच्छा,
4: हाँ।
3: तो कितना दिन बाद पानी भर जाए तब खेत में?
4: पानी 15 रोज भर जाए।
3: अच्छा, तो कितना पैदावार हो गया था?
4: 15 क्विंटल के बीघा हो गया था।
3: 15 क्विंटल।
4: हाँ।
3: तो धनवा बेचबो कर रहे थे?
4: धनवा बेची थे कि अब खाई
3: तो कहाँ, मतलब व्यापारी हरिन के बेचे?
4: व्यापारी आवत है।
3: व्यापारी?
4: हाँ।
3: अच्छा, सोसाइटी में ना देते?
4: सोसाइटी में नहीं दे, फार्म नहीं बनावा।
3: अच्छा।
4: हाँ।
3: चलें ठीक है। अच्छा ये बताओ हिंसला भैया, जैसे जब आप धान लगाओ तो ओकरे पहले माटी के भी जांच करा?

0: आए हुए हैं।
1: माटी नहीं जांच कराए रहे।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: तो यानी माटी के एकरे पहले जांच भरहान हुए।
1: पहले भर रहा
0: अच्छा
1: लेकिन ऐसा नहीं करा हुआ।
0: अच्छा सब्जी की खेती में कौन कौन खेती की है नहीं चला हुआ?
1: सब्जी ग्वाल फली लग करे है ही,
0: हाँ
1: मूली लगवाए है ही।
0: अच्छा, तो मूली कितना लगाए हैं?
1: मूली 2 बीघा है।
0: 2 बीघा।
1: हाँ
0: अच्छा ये बताओ, मूली लगावे में कौन कौन चीज़ के ध्यान देवे के होता? किसान भैया बहनी हरे लगावत हैं, कितना जने के बारिश होता बैठ जाते हैं और कितना जने के बढ़िया होता, तो कौन चीज़ के ध्यान रखें कि ताकि के नाम से कि बिया मरे कम बढ़िया जामे?
1: मूली जो है उचास खेते में
0: हाँ हाँ
1: ढालदार पर
0: हाँ
1: लगवाओ है।
0: अच्छा, तो कौन कथा से जोतावें, ट्रैक्टर से जोताई के तैयार करें खेत कि बैल बरधा से करें या
1: बैल बार
0: काटा से
1: जे
0: करें?
1: करे बैल बरदा हो बैल बरदा जोता हुआ ही
0: अच्छा
1: ना ही वाला बेटा कराई दे।
0: अच्छा आप कौन से जोता रहे?
1: हम तो वाला बेटा कराए रहे।
0: अच्छा
1: हाँ कराए के हंगवाई दिया
0: हाँ हाँ
1: ओके बाद नफरवा से
0: हाँ
1: पुन जोतवावा
0: अच्छा
1: अब पुन हंगवावा
0: हाँ हाँ
1: हिंगवाई के बाद बिया छीट दिया।
0: अच्छा
1: बिया छीट के हल्के में मिलवाई दिया
0: हाँ हाँ हाँ
1: मिलवाई दिया ओके मूली जामी आई।
0: अच्छा, ये बताओ मूली में कौन खाद के प्रयोग करे थे नाम?
1: गोबर खाद।
0: गोबर खाद।
1: हाँ
0: अच्छा, सनई ढैचा भी बोवा तो
1: सनक
0: यूँ?
1: बोई थे
0: अच्छा
1: ढैंचो।
0: वो खाद के प्रयोग आप
1: हाँ
0: करे
1: हाँ
0: थे। अच्छा मुरई कैसन भाया है भैया?
1: मुराई बढ़िया भाई रही।
0: बढ़िया भाया है।
1: हाँ
0: तो कितना आमदनी हुई जो हुई अभी तक?
1: अरे हम करीब 1 बीघा में 1 लाख रुपया तक के हो
0: अच्छा
1: गए हैं।
0: बढ़िया आमदनी है हो
1: हाँ
0: निकाल
1: बढ़िया
0: दिया।
1: आमदनी में भाई
0: तो दोबारा मुरई लगाए हैं
1: दोबारा
0: मूली?
1: मूरी हमारे लही 1 बीघा
0: अच्छा यानी 2 बीघा के खेती किए
1: उसे
0: हैं?
1: 20 मूरी बा
0: अच्छा
1: जौन बेच लिया
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: से 20 बा।
0: तो रेटो अच्छा दे तो है।
1: हाँ राइटर बढ़िया बा 350 रुपया पसेरी।
0: अच्छा
1: हाँ
0: चलें ठीक हुआ। अच्छा ये बताओ भैया कर्म से एकरे बात के खेती में का का तैयारी करत हैं?
1: अब एक बाद वही खेत जोतावत है गाजर बोबी है।
0: अच्छा गाजर के भी खेती आप
1: हाँ
0: करे
1: गजर
0: थे।
1: करी थे
0: अच्छा उम्र कौन कौन चीज के ध्यान देवे को हैं चला?
1: ओह में ध्यान कुछ नहीं दे एक बार
0: हाँ
1: बस जोताई के बस सीधा बोआई दो का
0: अच्छा घास पात निकालत हुए हैं?
1: घास उस तो निकल जात कांटा से
0: अच्छा काटा
1: कांटा।
0: चलवावत
1: हाँ
0: हैं?
1: कांटा चलाई दिया
0: हाँ
1: ओके
0: हाँ
1: बाद घास निकल गई
0: अच्छा
1: बस छीट दे
0: हाँ
1: छीट के पहटाई दे बस फुर्सत हो गया।
0: अच्छा मेड़ी उड़ी मारत हुई हैं?
1: पटरा बनाए पटरा सींच के लिए।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये बताओ इंचलाल भैया कितने दिन में पानी भरे होते गाजर में?
1: पानी बस 2-3 रोज में उका भर दे
0: अच्छा
1: बुआई के बाद है
0: हाँ हाँ
1: दो
0: हाँ
1: तीन रोज में उका भराई कर दे।
0: अच्छा, और कौन चीज़ के ध्यान देवे को होते जिसे कीट पतंगा ना लगे करकी रौना ना लगे? कुछ जने इंचलाल भैया जिसे बोवत थे तो पता चला था चूटी माटा उठा ले जाते हैं।
1: ओका छिड़काव दवा होता ना
0: अच्छा तो
1: कका कका छिड़क दे मेड़े के
0: अच्छा मेड़े मेड़े का नाम
1: बस
0: से
1: वो बस मेड़े के अगल बगल छिड़क दे बस।
0: अच्छा, तो ऐसे ही ये है कि उनको जो उन अनाज है
1: हाँ
0: ओके का नाम से
1: हाँ ना ढोई है।
0: हाँ चूटी माटा
1: हाँ
0: न ले जी है।
1: हाँ
0: अच्छा, और सब्जी में कितना खेती किए हैं?
1: और सब्जी में तरोई लगी बा
0: अच्छा तरोई कैसे
1: तरोई
0: का
1: ठीक ही रही।
0: बढ़िया है?
1: हाँ बढ़िया है
0: तो कौन चीज के ध्यान रखे को तो जमीनिये में होता है क्योंकि विदा कोई झमड़ा उमड़ा बनावत है?
1: जमीनिया में
0: अच्छा
1: जमीनी में फरत हो
0: अच्छा कुछ किसान भैया बहनी अरे इंचलाल
1: बेड़
0: भैया
1: बनाओ थी
0: हाँ
1: बेड़। हाँ
0: हाँ तो इसे बनाए हैं ना आप कि नहीं?
1: ना ही हम नहीं बनाए है इतना बांस कहाँ मिले।
0: अच्छा, जब मेड़े पर रहे थे तो तब बहुत ध्यान देवे को था कि ज़्यादा पानी न लगे?
1: ना ही कुछ ना ही हम ध्यान दे बा
0: हाँ
1: हम ध्यान देने की नहीं बा
0: अच्छा,
1: बस ढाल खेते पर बोई बस।
0: मतलब ई बात के ध्यान जरूर दे कि
1: हाँ
0: पानी रुके न
1: रुके
0: खेत
1: ही ना
0: में।
1: पानी।
0: अच्छा ऐसा खेत बोए कि
1: हाँ
0: जहाँ पानी रुके न और
1: हाँ
0: बढ़िया से काम से बोई दे और समय समय पे
1: हाँ अब
0: ध्यान दे।
1: कोइरान खेते में
0: हाँ हाँ
1: उचास ही चाहत है
0: अच्छा
1: अब धान थोड़को चाहत है धनहा खेते में बोई दे
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो उचास खेते में बोई दे बढ़िया फसल होते है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो ये बताओ इंचलाल भैया एक एक नाम से बाजार लेके जाते हैं बेचे उचे?
1: नहीं बाजार जाते है जसरा
0: अच्छा
1: जसरा मंडी लागत है
0: हाँ हाँ
1: वहीं
0: हाँ
1: बेचे जाते है
0: अच्छा, तो कैसा आमदनी देते हैं?
1: ठीक देते है।
0: ठीक देते हैं। अब इंचलाल भैया ये बताओ खेती किसानी के तो बात होते हैं, गोरु चौवा भी रखे हुए हैं?
1: हाँ 2 भैंस हैं
0: 2 भैंस हैं
1: दो भैंस हैं गैया बा।
0: गैया
1: हाँ
0: हैं, तो लागत है।

0: कि ठाट है,
1: एक भैंस लागत है।
0: हाँ
1: हाँ एट बनी बा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो दूध
1: दूध डेयरी पर जाते हैं पहले टाइम।
0: हाँ
1: दूसरे टाइम के खावा जाता है।
0: खावा जाता
1: हाँ
0: तो जो दूध डेयरी पर जाते हुए उकर पैसा भी आवत
1: पैसा मिला था। हाँ
0: तो ऐसे गुरु चौबा के
1: हाँ चुनी चुकर
0: चुनी चुकर हो जाता।
1: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ चल भैया,
1: हाँ
0: कि जोन गुबरवा होते हैं
1: हाँ
0: ओकर का करत
1: ओकर सीधा गड़वा खुदवाई है।
0: हाँ हाँ
1: वही डलवाई दी थे।
0: अच्छा जोन खरपतवार रहे तो
1: सब
0: डाल के
1: कतवा सतवा सब बटोरन फटोरन में डाल दी थे।
0: हाँ हाँ हाँ
1: उसके बाद खास सड़ जाते बन जाते है।
0: अच्छा
1: हाँ तो खेते में पड़ा था वो।
0: अच्छा तो और खाद कम पड़े पे खरीदो जाते हैं
1: खरीदा जाता है।
0: खरीदा जाता।
1: हाँ
0: अच्छा
1: खरीद दिन जाते तो डीएपी पी नहीं मिला पड़ा।
0: हाँ हाँ हाँ अच्छा ये बताओ कि आप अपने खेती में कौन खाद का प्रयोग ज़्यादा करते थे?
1: गोबर ज़्यादा करे थे हम।
0: गोबर का
1: गोबर के
0: जो ना आसानी से मिल
1: हाँ
0: जाता
1: मिल
0: है वो
1: जाए।
0: अपने खिया हो
1: हाँ
0: गो करत।
1: गोबर है सनई है
0: अच्छा अच्छा
1: ढैंचा है
0: हाँ हाँ हाँ
1: एक हाथ के हो जाते हैं
0: अच्छा
1: तो का सीधा और बेटा कराई दी थे
0: हाँ हाँ
1: सड़
0: हाँ
1: जाते।
0: सड़ जाते।
1: हाँ
0: अच्छा कुछ किसान भैया बहनी है रे भेड़ो बैठो आवत हैं जानवर बैठा होते
1: भेड़ों
0: हैं
1: बैठा होते।
0: अच्छा उकर भी फायदा रहे थे।
1: हाँ बहुत फायदा करता है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो उसे ये है कि कम से रासायनिक खेत का प्रयोग खाद का
1: हाँ
0: प्रयोग ना करे पड़े।
1: ना करे वह।
0: अच्छा और हिंसलाल भैया अब तो नई खेती की तैयारी होता है
1: हाँ गाजर के
0: गाजर का,
1: गाजर बहुत
0: और
1: तैयार
0: गाजर के
1: होते हैं।
0: अलावा भी कौनों खेती?
1: गाजर के अलावा का
0: हाँ आलू वालू कुछ
1: अरे
0: हैं?
1: आलू मान लो 10-15 बीसा ज़्यादा नहीं
0: ज़्यादा ना है
1: नहीं।
0: तो मतलब आप अपने खेती जो उन देते हैं जोर उस सब्जी के खेती पे ज़्यादा देते हैं।
1: हाँ सब्जी के
0: अच्छा तो टमाटर वमाटर के भी कुछ
1: टमाटर 10-20 साल
0: 10-20 साल लगे हैं?
1: बात थोड़ा थोड़ा
0: अच्छा तो 10-20 साल में कितना टमाटर हो जाते हैं इंचलाल भैया?
1: अरे हो बहुत हो जाते हैं।
0: अच्छा तो वो मंडी ले जाते हुए हैं
1: अब कितना का कुछ खाई ले का मंडी
0: ना ही
1: रहता ही
0: कुछ
1: है।
0: किसान भैया बहनी हरे ऐसे नहीं कि भाई व्यापारी आपन सेट किए हैं
1: ना ही
0: उनके
1: मंडी हम लोग
0: उनके
1: बस
0: द्वारे से ही आवत हैं बेचारे लेके
1: ना ही
0: चला
1: सीधा
0: जाते हैं
1: मंडी
0: सीधा
1: हमारे
0: मंडी।
1: पास साधन बा सीधा मंडी
0: अच्छा अच्छा
1: बेचा
0: ये
1: जाता
0: बताओ
1: है।
0: इंचलाल भैया पानी के साधन में कौन कौन व्यवस्था रखे हैं?
1: पानी हमारे पास निजी बोर है।
0: निजी
1: निजी
0: बोर।
1: बोर है
0: अच्छा नहर वगैरह भी हो?
1: नहर होगा नहर की जेकर खेत बहुआ पर सींचत है हम
0: अच्छा
1: अपने
0: आप अपने निजी से?
1: अपने निजी सिंचाई करी थे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा और जोते उते भी ट्रैक्टर उक्टर रखे हैं
1: नहीं
0: कि?
1: ट्रैक्टर नहीं रखे ही सब वैसे काम होते हैं
0: अच्छा
1: दूसरे ट्रैक्टर से।
0: दूसरे के ट्रैक्टर
1: हाँ
0: से चलें ठीक है। अच्छा ही चला भैया आप आए हमारे पंचायती में किसान भैया बहनी हरन के बताएं कि खेती कैसे किया जाए।
2: भैया देखा जौन है हिंचलाल पटेल से रानू जायसवाल की किसान चर्चा। किसान भैया बहनी हरेन सुनिन गुनय और लाभ उठामय। पंचायती से विदा लेकर बेला होत है तो किसान भैया बहनी से विदा लिहल जाए तो पंचों राम राम।
3: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान चर्चा लखनऊ केंद्र से, किसान वाणी लखनऊ केंद्र से।
4: भारत सरकार

0: जय हिंद।
1: ओम प्रकाश भैया,
0: हाँ रियाज भैया,
1: देखो जब बात की जाए अपने खेती पाती के, तो एक चीज और हम पंच ध्यान रखी थे कि जो खेती पाती है उसके साथ में जो है चार व्यवसाय और करी थे।
0: एकदम भैया, जहां कृषि विविधीकरण की बात होती है उमहन यही पाए शामिल किनगा है, ताकि अपने कृषि उद्यम के साथ साथ और भी सह व्यवसाय किन जाए।
1: बिल्कुल, इसे ही हुआ था भैया कि अपन खेती पाती भी प्रभावित नहीं हुए थे और चार पैसा के अतिरिक्त जुगाड़ हो जाते हैं।
0: एकदम, और यही पाए भैया जहां पर हम सभी जो पारंपरिक खेती करी थे उसके साथ साथ बागवानी की बात की जाए, मत्स्य पालन की बात की जाए, मौन पालन की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे सह उद्यम है जो हम खेती के साथ साथ कर सके।

0: बिल्कुल, देखो आप बात की हो मत्स्य पालन के, अगर हम पंच मछली पालन कर रहे हैं तो समन्वित रूप से अगर होकर करे थे तो बहुत बढ़िया लाभ हम पंच कमा सकी थे।
1: एकदम भैया। और मत्स्य पालन में यहाँ कहा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोटीन का साधन है।
0: मत्स्य पालन के एक अगर विस्तृत रूप जाना जाए तो कुछ मछली ऐसी हुई थी कि जो उन सतह के ऊपर रहा थी, कुछ जो उन रहा थी बीच में रहा थी, और कुछ जो सतह के जमीन के
1: बराबर चलती है,
0: बराबर चलत हैं। तो अगर हम पंच सब मेर के मछली
1: यानी
0: पालें,
1: तीन स्तर पर जो अगर तालाब बनावा जाए तो तीन स्तर पर जो मछलियां पाली जाती हैं
0: हाँ
1: उनका हमका लेख है, ताकि जो हमका पानी के हर एक स्तर पर हमका लाभ मिल जाए। भैया देखो बात बहुत सारी हैं,
0: हाँ
1: लेकिन आज की खबरन की बात भी हो जाए अपने पंचन के साथ।
0: बिल्कुल, तो सुन लीजिए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत अब लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपए तक का ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था में ब्याज पर 5% की छूट सरकार की ओर से वहन की जाएगी। सरकार के अनुसार इससे किसानों को महंगे कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी और खेती किसानी से जुड़ी जरूरतों के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के लिए सरकार पर करीब 38 करोड़ 40 लाख रुपए का वित्तीय भार आने का अनुमान है। प्रदेश सरकार का कहना है, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।
0: ओम प्रकाश भैया,
1: हाँ भैया,
0: बागवानी में हम पंच देखो तमाम तरीके के उत्पादन करी थे, उनमें से पपीता के उत्पादन भी करी थे।
1: एकदम भैया, तो कहे ना आज पंचन के यहाँ पपीता पर विशेष जानकारी दवा दी जाए, और इसके बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार भैया, और इनसे बात कही कीनिए डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खेती के साथ साथ आप बागवानी कर रहे हैं और खास करके पपीते की उन्नत बागवानी करना चाहते हैं, तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर दिनेश कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां पपीते की उन्नत बागवानी करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या कुछ संभावना है?
4: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। पपीता एक अत्यंत लाभकारी फसल है और एक गुड़ों से भरपूर होता है, और हमारे देश में इसकी खेती फल उत्पादन के साथ साथ पपेन उत्पादन के लिए भी किया जाता है,
3: और सब्जी उत्पादन में भी,
4: सब्जी उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि देखा गया है कि इसमें विटामिन के साथ साथ जो इसमें और पोषक तत्व हैं इसकी भी बहुत भरमार है, और इसका ये देखा गया है कि कच्चा फल भी और पके हुए फल दोनों को लोग खाते हैं,
3: यानी बाजार भाव अच्छा मिल सकता है, पूरे साल संभावनाएं बहुत कुछ हैं।
4: बाजार में इसकी हमेशा मांग रहती है और लोगों को जो मांग है उससे उनको पैसे अच्छा मिलता है।
3: तो जो किसान भाई बहन पपीते की उन्नत बागवानी शुरू करना चाहते हैं तो खेत का चुनाव कैसा करें?
4: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेत हमेशा बलुई डोमट होना चाहिए। इसका ये होता है कि बलुई डोमट में बरसात में पानी नहीं रुकता है, साथ में जमीन का जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में होगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें होगा कि खेत आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पोषक तत्व जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये अगर अच्छा होगा तो उसमें जब हम पौधे लगाते हैं तो उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ में जब उसका उत्पादन होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है।
3: यानी जीवांश की मात्रा अच्छी हो, जल निकास का प्रबंध हो, यही मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी पपीते की उन्नत बागवानी।
4: हाँ, इसके साथ में जैसे हम कहते हैं कि पपीते की कौन सी किस्म अच्छी है,
3: हाँ,
4: इसमें देखा जाए तो जो हमारे पास एक रेड लेडी वेराइटी है ये बहुत अच्छी होती है, और इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे पहले नर और मादा अलग अलग होते थे तो हम एक गड्ढे में 2 पौधे लगाते थे, इसका क्या है एक ही पौधे लगाएंगे उसमें आपका फलत आता है, और इसको क्या करते हैं 6 फुट बाई 6 फुट पर इसको हम लगाते हैं, और इसका जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो इस नर्सरी को हम जहाँ भी अच्छे मतलब दुकान से आप बीज ले आइए या हमारे आपके राज्य सरकार के हर जिले में हाईटेक नर्सरी है वहाँ से भी आप पपीते के पौधे लेकर के और उसको हम लगा सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, नर्सरी का उपयुक्त समय क्या है, और जहाँ हाईटेक नर्सरी से अगर पौध ले रहे हैं तो रोपाई का उपयुक्त समय क्या है पपीते की?
4: ऐसे देखा गया है कि जैसे हमारे यहाँ

0: खूब होता है। तो बरसात जुलाई अगस्त में ज़्यादा होता है, तो 15 सितंबर के बाद अगर आप नर्सरी से पौधे लेकर के उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसके बाद ठंड चालू हो जाता है। ठंड में हमें क्या करना चाहिए कि पौधे के ऊपर छप्पर घास फूस से थोड़ा सा ढक करके, और जितना जाड़ा पड़ता है जाड़े में उसको बचा के रखिए। जाड़े के बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा गर्मी चालू होगा, क्योंकि लगाने के 4 से 6 महीने बाद उसमें फूल आना चालू हो जाता है। फूल आने के बाद उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे पहले भी जैसे ही पौधा आप लगाते हैं तो उसमें आपकी जैसे गोबर की खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो भी क्या करते हैं कि मिट्टी के जांच के बाद 200 से 250 या 300 ग्राम नाइट्रोजन, उसी अनुपात में फास्फोरस, उसी अनुपात में पोटास, जब इन तीनों को देते हैं तो पौधा हमारा खूब हष्ट पुष्ट होता है। और जब फल आता है, फल लगने के 4 से 6 महीने के बाद पक करके तैयार हो जाता है, तो हम उसको चाहे अपने खाने के लिए या बाजार में बेचने के लिए उपयुक्त तो होता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ नर्सरी डालना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
0: अभी देखा जाए तो अभी आप नर्सरी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि नर्सरी जब हम डालते हैं तो उसको कम से कम 2 महीने लगता है तैयार होने में। अगर अभी हम डालते हैं तो नर्सरी तैयार होकर के आपको अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह मिलेगा। फिर जैसे ही आप लगाएंगे इसके बाद ठंड चालू हो जाता है। जब ठंड हो जाता है तो हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पपीता एक ऐसा फसल है कि अगर बहुत धूप हो जाए, गर्मी हो जाए तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पानी हो तो दिक्कत है।
1: और ठंड तो है ही है,
0: हाँ, ठंड में भी इसको दिक्कत होती है।
1: तो अच्छा होगा कि अपने जनपद के हाईटेक नर्सरियों से या जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जगह जगह, वहां से पौध ले लें। और रेड लेडी वैरायटी की खासियत क्या है डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है ना कि रेड लेडी जो वैरायटी है इसमें कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि नर मादा दो पौधे लगाए थे, इसमें एक ही पौधे में दोनों रहता है। और उसमें आपको एक गड्ढे में एक पौधा लगाइए और इसका फल अगर जब पकता है तो एकदम लाल रंग का होता है, और उसका एक फल का वजन 1.5 से 2 किलो होता है, और उसका खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है।
1: यानी हर पौधे पर आपको फल लगेंगे ही,
0: हाँ, हर पौधे पर आपको फल
1: इसकी
0: लगेंगे,
1: गारंटी है?
0: हाँ, इसकी गारंटी है।
1: जहाँ पौध रोपण करना है किसान भाइयों बहनों को, तो उसके पहले क्या गड्ढों की खुदाई करनी होगी? कौन कौन सी व्यवस्था?
0: ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे आपकी गड्ढे कम से कम 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर गहरा आप खोद लीजिए।
1: यानी आधा घंटे?
0: हाँ, आधा घंटे आप खोद करके फिर ऊपर की आधी मिट्टी अलग, नीचे की आधी मिट्टी अलग रख के, और ऊपर वाले मिट्टी में आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद हो, उसके साथ में थोड़ा सा नीम की खली हो, दोनों मिला के भर दीजिए। भरने के बाद इस समय आप कहीं भी हाईटेक नर्सरी से आप इसके पपीते के पौधे लेकर के और आप उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद उसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए, फिर पौधा आपका चलना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद निराई गुड़ाई, खाद पानी ये सब देते रहेंगे, पौधा आपका अच्छा चलेगा।
1: डॉक्टर साहब, क्या बीच बीच में फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग करते रहना है?
0: हाँ, ये भी देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पौधा बढ़ेगा तो उसको खाद और पानी दोनों चाहिए। तो खाद में क्या मेजर होता है आपका? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है, पत्तियों की हरी हो जाती है और जो है सूर्य के प्रकाश में खाद बनाता है। फास्फोरस क्या होता है, उसका जड़ का विकास करता है। पोटास का काम होता है कि उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है। तो इसको क्या है कि खेत के जांच के अनुसार आपको 200 से 250 या 300 ग्राम नाइट्रोजन, 200 से 300 ग्राम फास्फोरस, 200 से 300 ग्राम पोटास अगर आप देते हैं। और उसको भी क्या करना चाहिए, 2 महीने या हर महीने थोड़ा थोड़ा दीजिए। और आजकल क्या है कि जो हमारा बूंद बूंद सिंचाई है, फर्टिगेशन है, इसके माध्यम से करेंगे तो इससे आपकी खाद और पानी दोनों की बचत होगी, और हमें अवस्था के अनुसार जिस खाद की आवश्यकता होगी उसको अगर हम डालते हैं तो जो फल आएगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
1: यानी जल विलेय उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और उसी के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग कर
0: हाँ,
1: सकते हैं?
0: उसके माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरान है, ये सब का भी उसके माध्यम से करते हैं, तो उससे हमारे जो फल की गुणवत्ता है, पौधों की जो हष्ट पुष्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पपीते के उन्नत बागवानी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 6392431410, 6392431410। 6392431410।

0: 1410।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का पपीते की उन्नत बागवानी के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों संत में ही कहना चाहते हैं कि पपीता एक लाभकारी फसल है, लगाने के एक साल के अंदर ही आपको फल मिलेगा और वो फल से आपको अच्छा खासा इनकम मिलेगा, और जब इनकम अच्छा मिलेगा आपका जो पूरा परिवार है सब खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो पूरा देश खुश रहेगा।
1: डॉक्टर दिनेश कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पपीता की उन्नत बागवानी कैसे करें किसान भाई बहन, इसके

0: बार है, सब खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो पूरा देश खुश रहेगा।
1: डॉक्टर दिनेश कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पपीता की उन्नत बागवानी कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रियाज भैया।
4: हाँ प्रकाश भैया।
3: देखो जानकारी तो हो गए लेकिन कुछ गीत गौनाई भी हो जाए।
4: बिल्कुल, अपने पंच इंतजार कर रहे हैं कि ओम प्रकाश भैया कोनो झमकौवा गौनाई लेके आए हैं।
3: तो भैया देखो देर न कीन जाए, स्नेहिल श्रीवास्तव बहनी पूर्वी गीत सुना रही का सुना जाए।

0: रियाज भैया, बहुत सारे ऐसे किसान पंच हैं जोन कहूँ ना कहूँ एक नई तकनीक अपनावत हैं और एक मुकाम कायम करते हैं। तो आज के किसान के क्रम में भैया आज अपने बीच में यहाँ है शिव कुमार मौर्य भैया, जो सब्जी उत्पादन पर यहाँ जानकारी दे रहे।
1: तो आओ सुना जाए, जानकारी लेने जाए।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक के रायपुर गांव, जहां के प्रगतिशील किसान शिव कुमार मौर्य भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। शिव कुमार भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: भैया आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके खेत में हैं?
3: हमारे खेत में डॉक्टर साहब इस समय भिंडी है, परवल है, लोभिया है, कुंदरू है, इतनी सब्जियां लगी हैं डॉक्टर साहब।
2: और सहजन उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं?
3: जी डॉक्टर साहब, हमने सहजन लगाया हुआ है, आधा एकड़ में वो है, और उसकी हम फलियां जब आती हैं उसको बेचते हैं, और दूसरा हम सिरका बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, तो सहजन का सिरका हो जाता है। इसकी पत्तियों को डॉक्टर साहब हम जो है तोड़ के और अपनी ड्रायर मशीन में सुखाते हैं, सुखाने के बाद में इसका पत्तियों का हम पाउडर बनाते हैं और इसको हम बेच देते हैं, और ये न्यूट्रिशनल डायनामाइट है, सुपर फूड है, इसको बच्चे युवा सभी लोग ले सकते हैं डॉक्टर साहब।
2: तो कुल सब्जी उत्पादन का रकबा कितना है इस समय?
3: सब्जी उत्पादन का रकबा डॉक्टर साहब इस समय जो है एक एकड़ में है हम किए हुए हैं।
2: तो परवल और कुंदरू की कोई खास वैरायटी है आपके पास?
3: डॉक्टर साहब परवल की हमारे यहाँ तीन वैरायटियाँ हैं, देसी ही हैं, स्थानीय वो किस्म है और बहुत ही बढ़िया है। उसको खूबी ये है कि तोड़ के रखने पर सूखती नहीं है और उसको ग्राहक बहुत डिमांड करते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है डॉक्टर।
2: और कुंदरू?
3: कुंदरू की भी स्थानीय प्रजाति है और उसमें हल्का भारी होता है
2: जी,
3: तो इसको भी खाने में बहुत ही पसंद करते हैं और फलत बड़ी अच्छी आती है डॉक्टर साहब इसकी।
2: और लोबिया की कोई वैरायटी?
3: लोबिया की एक अच्छी वैरायटी है, हमने इलाहाबाद से डॉक्टर साहब मंगाया है और वो करीब 1.5 फीट से अधिक का है जो है।
2: अच्छा, फलियां उसकी? हाँ
3: जी, हमने इंची टेप से नापा है तो 1.5 फीट से अधिक है और कम से कम 2 से 2.5 महीने उसकी फलत आती है डॉक्टर साहब।
2: और भिंडी की फसल भी आपके खेत में है?
3: हाँ, भिंडी भी डॉक्टर साहब लगाए हुई हैं और हर जो है तीसरे दिन भिंडी की हमारी तोड़ाई होती है और ये अच्छी किस्म की है और इसको जो है हम अपने यहाँ गाय पाले हुए हैं
2: जी,
3: उसका जीवामृत बनाते हैं और उसको पिलाते हैं हम अपनी फसल को, भिंडी को, तो उससे बड़ी स्वस्थ भिंडी होती है और हमारे घर से ही लोग आके ले जाते हैं डॉक्टर साहब।
2: तो जो भी सब्जियां पैदा कर रहे हैं, परवल, कुंदरू, लोबिया, भिंडी और सहजन, तो उसमें क्या रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या?
3: रासायनिक डॉक्टर साहब नहीं करते, हमने पशुपालन किया हुआ है, हमारे पास गाय है, भैंस है, तो उन्हीं का गोबर होता है, उसको हम देसी खाद बना के सड़ा के और बर्मी खाद भी बनाते हैं डॉक्टर साहब, तो यही दोनों हम देते हैं जिससे जो हमारा उत्पादन होता है वो विषमुक्त होता है और इसको लेने के लिए लोग घर पर आते हैं और हमने फार्म को अपना एग्रो टूरिज्म भी बना दिया है
2: जी।
3: तो इसको देखने के लिए दूर दूर के किसान है, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं और आज संयोग से यंदी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए हुए हैं।
2: यानी तो कृषि पर्यटन का आपने केंद्र बना दिया है अपने खेत को?
3: हाँ डॉक्टर साहब जी जी हाँ हाँ।
2: तो ये बताएं कि आप जैसा कह रहे हैं कि परवल, कुंदरू, लोबिया, भिंडी और सहजन की फसल इस समय आपके खेत में है, तो हाँ, इसकी बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की तोड़ाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: परवल का हम खेत तैयार करते हैं अक्टूबर में, पहले से हम नर्सरी सितंबर में बना लेते हैं थैले में
2: जी,
3: वो पौधा डेवलप हो जाता है तो उसको हम जब लगा देते हैं तो पौधा ऐसे ही पड़ा रहता है और जैसे मार्च लगता है उसके बाद में उसमें बढ़िया कल्ले आने से चालू हो जाते हैं।
2: हाँ।
3: और फिर उस कल्लों को हम मचान बनाए हुए हैं उसी पर लसा देते हैं, तो उसी पर वो लस जाते हैं।

0: हैं और बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है, तो जो फलत आती है वो नीचे लटकती रहती है और खराब नहीं होती, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। डॉक्टर साहब, किसान मचान विधि से अगर वो खेती करता है तो उसका जो है दवा का पैसा बच जाता है, समझिए।
1: परवल और कुंदरू आप मचान पर करते हैं,
0: हाँ, परवल और कुंदरू डॉक्टर साहब हम मचान विधि से करते हैं।
1: और लोबिया की फसल?
0: हाँ, लोबिया भी डॉक्टर साहब इस समय हमने जो है सह फसली किया हुआ है, भिंडी नीचे है और उसके ऊपर जो है लोबिया लगा हुआ है। नीचे भिंडी बढ़िया फलत आ रही है और ऊपर से झांगा टाइप का बना दिया और लस रहा है, तो नीचे वो का जो है फलत लटक रहा है, उसको हम तोड़ लेते हैं। मतलब एक ही रकबे में, एक ही जमीन में और एक ही समय और श्रम में जो है हमको भिंडी भी मिल जा रही है और जो है लोबिया की भी फसल मिल जा रही है।
1: तो ये सब सीख आपको मिली कहाँ से?
0: डॉक्टर साहब, ये हमारे पिताजी थे स्वर्गीय बंसराज मौर्य, वो किसान थे तो उसी को हम देखते रहे और देखते देखते और हमारे घर में बड़े भैया वो भी कर रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जिले में है, वहाँ जाता हूँ, कृषि विश्वविद्यालयों में भी है, तो इससे हमको तमाम अपने प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जाने का डॉक्टर साहब अवसर मिला, जिससे जो है हमको नई नई जानकारियाँ मिलती गई। और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी किसान सुन रहे हैं वो भी थोड़ा घुमक्कड़ बने और सरकार की योजनाओं का लाभ लें।
1: जो आप पैदा करते हैं सब्जियां, उसको बेचते कहाँ हैं?
0: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ स्थानीय मार्केट जो है नवाबगंज है, वहाँ बिकती है और ज्यादा सब्जियाँ हमारी घर से ही बिक जाती है। और दूसरा, हमने जैसे डॉक्टर होते हैं उसे फैमिली फार्मर बना लिया है और हम जो फसल होती है उसका फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप पर डाल देते हैं स्टेटस पर, तो लोग देखते हैं और देख के उनको पता चलता है कि आज ये सब्जी तैयार है, तो लोग लेने के लिए चले आते हैं, हमको नगद पैसे मिल जाते हैं, मेरा घर से ही बिक जाता है डॉक्टर साहब।
1: तो जो भी सब्जी उत्पादन आप कर रहे हैं, उससे साल में आपकी कितनी आमदनी हो जाती है?
0: सब्जियों से कम डॉक्टर साहब हमारा 2.5 से 3 लाख का हो जाता है।
1: और आप सहजन भी पैदा करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उससे भी अतिरिक्त आमदनी
0: हाँ
1: होती
0: जी
1: हो?
0: जी डॉक्टर साहब, इस बार हमने सहजन का बीज भी हमने बनाया, हमने कई जो है अपने और अन्य प्रदेशों में बीज को मैंने डाक और कोरियर से डॉक्टर साहब भेजा, जिससे हमको अतिरिक्त इनकम भी हुई और दूसरा उन लोगों ने हमको धन्यवाद भी दिया। और एलोवेरा के भी खेती करते हैं, तुलसी का भी डॉक्टर साहब करते हैं, सब मिला करके करीब 9 से 10 लाख का हमारा सब्जी और औषधि का साल का हो जाता है डॉक्टर साहब।
1: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: हाँ डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यों से खुशहाल हैं और इसका मैसेज हम कॉलेजों में भी जाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि आप खेती से नाता जोड़े रखिए, हमारे फार्म पर आएं और जो सफल किसान है वहाँ जरूर विजिट करें।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: डॉक्टर साहब, मेरा मोबाइल नंबर है 95-54-90-27-15, 9554902715, 95-54-90-27-15।
1: शिव कुमार मौर्य भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। इस समय आप परवल, कुंदरू, लोबिया, भिंडी और सहजन का उत्पादन कर रहे हैं और खुशहाल हैं। आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: और अब चलत चलत जो है मौसम की जानकारी दे दो।
6: तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ में बौछार पड़े के संभावना है। बाकी

0: इस तारीख से लेके 23 तारीख तक मौसम शुष्क रहे। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज यानी 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक संभाग में कहूँ कहूँ पर वर्षा गरज चमक के साथ में बौछार पड़े के संभावना है। बाकी 21 और 22 तारीख में मौसम शुष्क रहे के संभावना है।
1: तो ये तो रही बात मौसम की, चलत चलत अपने पंचन के यहाँ अपने कार्यक्रम के पता बता दी जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया कार्यक्रम के पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
0: इसके अलावा ओम प्रकाश भी अपने किसान पंच जो है ईमेल के माध्यम से भी अपन बात हम तक पहुंचा सकत हैं। तो ईमेल के पता है farmandhomeairlko@gmail.com।
1: अब कार्यक्रम के समय समाप्त हो रहा है तो पंचन सी लीजिए आज्ञा।
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 103 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर

0: पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह यात्रा ऊर्जा से भरपूर होकर सकारात्मक भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, विरासत और विकास, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बढ़कर अपनी छाप छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, AI मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
1: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का AI मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
2: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। UPI से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में UPI के माध्यम से आप जहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते हैं। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आज शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों, लाभार्थियों ने भी घरों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर 76 बटुकों ने मां गंगा का पूजन किया। सामने घाट पर मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। लखनऊ में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वृहद सफाई अभियान का आरंभ किया। बस्ती में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। इसी क्रम में आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है।
3: ये 25 वर्ष बहुत विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हुए हैं। जन कल्याण की अनेकों योजनाएं लागू हुई हैं। हम लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जिस व्यक्ति के कामों से, विकास कार्यों से देश दुनिया में फर्क पड़ा हो, हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो कृतज्ञता पूर्वक हम उनको आभार प्रकट करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं 3 तलाक कानून के बारे में।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में बड़े बदलाव ला दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यह कानून भारत के संविधान के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देता है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट दर्ज की गई। मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास से जोड़ा है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी

0: बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: तीन तलाक कानून का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये मुस्लिम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शिल्पकारों, कारीगरों सहित समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जो देश शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। गोरखपुर के श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में आयोजित श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में आज 3 करोड़ से अधिक लोग कारीगरी शिल्प से जुड़कर रोजगार और स्वावलंबन की राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के अंतर्गत विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी और मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने आज महोबा में ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों में होने वाली खराबी की संभावना को कम से कम करना है, ताकि मतदान के समय मतदाताओं को मशीनों की तकनीकी खराबी के चलते इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी लखनऊ की वरिष्ठ समाचार वाचक मीना इरफान का कल देर शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 60 वर्षीय थी। उर्दू अखबारों के साथ वह दूरदर्शन लखनऊ में भी बतौर न्यूज राइटर कार्यरत थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.1 यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, यानी इसमें आप सुनेंगे अपर्णा गोरे की कहानी सांझ दीप।
1: यह बरखा की ही कोशिश है कि धरती के कणकण में सुकून समाया है। कांवरिये कंधों पर लाठी रखकर उस लाठी के दोनों छोरों पर सजावट की हुई मटकियों में जल भरकर काशी नगरी की ओर चल रहे हैं। धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर भक्तिमय गुण से धरती अलंकृत हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरा भी शिव के दर्शन के लिए उठ खड़ी हुई है। गंगा नदी

के पावन जल से पुण्य लाभ तो जानते हैं, वही नदी के दुर्लभ जल से शिवमय होने का सुलभ विचार दर्शनीय है। वाराणसी की ओर बढ़ती हुई राह पर एक तरफ से भक्तों की तथा कांवरियों की टोली चल रही है और दूसरी तरफ से वाहनों का आवागमन हो रहा है। बरसात के मौसम में रास्ते की चिकनाई से, गड्ढों में जमा बरसाती पानी से चलने में कठिनाई हो रही है। जी जान से भरपूर प्रयास करते हुए कांवरियों ने श्रावण मास की तिरछी बारिश में भीगना जारी रखा है। अब कुछ राहत हुई क्योंकि बूंदाबांदी धीमी होकर सीधी धरती पर गिर रही है। अभी और कितनी दूर जाना है? पहली बार कंधे पर लाठी रखकर दोनों छोरों पर मटकियों में जल भरकर उसने इतना रास्ता तय किया, लेकिन आसान नहीं लगा। तो बाबा जी से पूछने पर उन्होंने वात्सल्य भाव से उत्तर दिया, अभी तो बहुत दूर चलना होगा, अभी ना थको बेटा जी, हमारी भक्ति ही शक्ति है। जो आज्ञा, लेकिन मैं विश्राम करना चाहता हूँ। बेटा जी आगे चलो, यदि कोई पड़ाव मिला तो वहां विश्राम भी कर लेना। जो आज्ञा बाबा जी। बेटा जी कदमों का भरोसा करना, गिन गिन कर पग धरना। उसके गीले बालों पर ध्यान गया तो उन्होंने कहा, गीले बालों को गमछे से पोछ लो। उसने गमछे से गीले बालों को पोछा। आजकल उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर कम है और बाबा जी का अधिक ध्यान रखता है। 16 बरस का नवी कक्षा में पढ़ने वाला सचिन उनके साथ अद्भुत वाराणसी देखने जा रहा है। झूसी के एक सामान्य वर्ग के परिवार का बड़ा बेटा होकर भी उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उससे छोटी बहन सरिता ही घर बार का सास संभाल करती है। सरिता भी अब 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन सचिन से अधिक अभ्यास करती है, अधिक जानकार है। उससे प्रयागराज के संगम क्षेत्र, मेला क्षेत्र, गांव खेत और नई नई इमारतों की अच्छी जानकारी है। वह माता पिता व चाचा की सेवा करती है, सचिन की जरूरतों का ध्यान रखती है, सहमी रहती है, फिर भी बहती रहती है सरिता। सचिन निठल्ला दिन गुजार सकता है, किंतु बाबा जी से उसे धार्मिक, सात्विक, सामाजिक व सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। वास्तव में दादी की मौत के बाद सचिन के दादाजी ने घर छोड़ दिया। नदी के घाट पर ही 18 वर्षों से सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत किया। सचिन ने लगभग पूरी राह को गौर से देखा, उसे कहीं कोई विश्राम की जगह दिखाई नहीं दी। पहली बार जीत करके उसने बाबा जी के साथ इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा की है। वह अम्मा और सरिता के साथ जब मेहर की यात्रा पर जाता है तब वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं हुई। आरामदेह स्थान, ऊंचाई तक सुरक्षित सीढ़ियाँ, अच्छा प्रसाद तो मेहर देवी का दर्शन ही है। पास ही गांव में ननिहाल है, सचिन के अम्मा का जवाब नहीं है, बेटा जी यहीं पर विश्राम कर लो, कुछ और भी जरूरी हो तो मांग लो। बाबा जी के साथ वह एक छोटे से टेंट में दाखिल हो गया। उसकी आधी थकान तो कुर्सियां और जलपान देकर ही मिट गई। यहाँ विश्राम करने के बाद तरोताजा होकर रम्य वातावरण में चलते हुए वे सब अगले पड़ाव पर पहुंचे। गरजती हुई काली घनघोर घटाओं की ध्वनि में आतंक नहीं है, किंतु एकाएक जोरदार बिजली कड़की और सचिन भयभीत हुआ। वह भीग चुका है, वह थर थर कांप रहा है। बाबा जी ने उसे टेंट के अंदर बिठला कर उसको बदलने के लिए कपड़े दिए। गर्म पेय पीकर सचिन को कुछ हिम्मत आई, तब पूछा, बेटा जी अब बताओ तुम्हारे चाचा कैसे हैं? पिछले कुछ महीनों से अखाड़े में नहीं दिखे, उनकी तबीयत कैसी है? अरे रघु पहलवान को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ कैसे होगा, वो हमारे चाचा जो ठहरे आजकल अम्मा के ऑर्डर से हमारी केयर करते हैं। केयर क्या होती है? केयर करना यानी पूरा ध्यान रखना होता है। एक दिन मेरे खराब मार्क्स देखकर क्लास टीचर ने अम्मा को मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। अम्मा ने घर आते ही चाचा को बहुत कुछ सुनाया।
कहा कि चाचा के साथ कद काठी सेहत के वास्ते लड़के को अखाड़े जाने को कह

लेती थी। क्या पता था कि रघु पहलवान की सोबत में पड़कर लड़का बिगड़ जाएगा। भाभी, सब तुम्हारी मिस्टेक से हुआ है। चाचा भी चुप ना रह पाए। भाभी, पांचवी भी पास नहीं हुई और लड़के को हाई स्कूल में पढ़ाना चाहती हो। आसमान में बिजली कड़क रही है, बेरोक टोक बरसात की बूंदे जी भर के बरस रही है। सचिन की अम्मा भी चाचा पर बरस पड़ी। बड़े ढीठ हो, तुम्हें कॉलेज में अच्छे प्रतिशत से पास होने के वास्ते हमने भी जो बन सका वह किया। हमारी लड़की हमारी देखा देखी सीधी साधी करवट है। रघु, तुम कान खोलकर सुन लो, अब आगे कोई लापरवाही न करना। अम्मा का गला भर आया, रुलाई फूट पड़ी। तब उनके दो आंसुओं की कीमत जानकर रघु चाचा ने मेरी पढ़ाई लिखाई करवाने की जिम्मेदारी उठा ली। सचिन की मासूम बातें सुनकर बाबा जी को सुखद एहसास हुआ। अम्मा ने शांत होकर कहा, हमारा लड़का फेयर है, उसकी केयर करो। इस कारण चाचा अखाड़े नहीं आए, अब समझे? सचिन ने मुस्कुराकर इतराते हुए बाबा जी को देखा। उन्होंने कहा, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना। सुशोभित बनारस में उन्होंने प्रवेश किया। आओ चलकर वाराणसी की सावन जैसी महिमा देखेंगे। धीमे धीमे यहाँ वहाँ इधर उधर आगे पीछे देखते हुए सभी कांवरियों ने भक्तिमय होकर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया। सचिन को बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर में जगमगाती हुई सांझ देखकर अचंबा हुआ। दीपों का अलबेला दृश्य देखना तो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। वापिस घर का रास्ता तय करना भी एक लंबी दूरी तक बराबर लगातार चलते रहना ही है। सचिन ने बाबा जी से जिद की, बाबा जी आप भी घर चलिए। नाना बेटा जी, उस घर में मेरी स्त्री बरखा ने दम तोड़ दिया। वह शिव भक्त बरखा थी। अक्सर बचत को काशी जाकर शिव की पूजा व प्रसाद में खर्च कर देती थी। इस कारण घर में भी सदा कलह क्लेश होता था। बरखा कहाँ सुनती थी, कोई बात किसी से न कहती थी ना ही सुनती थी। बाबा जी उदास हुए, फिर दर्द से कराहते हुए आप बीती सुनाई। मेरे पाँव में उस दिन सड़क दुर्घटना में घायल होने से गहरी चोट आई थी। कुछ दिनों तक सिलाई का काम नहीं मिला क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। छत बरसात के कारण टपक रही थी। मैंने बरखा की बचत से छत की मरम्मत करवाई। पुरानी मशीन बेचकर बदले में कुछ रुपए देकर नई मशीन खरीदी। बाबा जी के मुंह से आह निकली, उनके पाँव पर पुराना जख्म है। तब मेरी वजह से वह काशी नहीं गई। सावन भादो बीत गए, लेकिन उसके बाद न सांझ हुई न बरखा रही। सचिन ने पूछा, पर आपने घर क्यों छोड़ दिया? अगले 2 महीने मैंने शोक में दर्द में गुजारे। अगले 2 वर्षों के बाद बचत को लेकर काशी में शिव की पूजा की। बरखा के अनुसार ही पूजा विधि करके प्रसाद लेकर घर वापिस आया। मेरे मन में वैराग्य जागा। मैंने माया मोह त्याग कर शिव शंकर की शरण में रहना ही बेहतर समझा। अब भी घर में नई मशीन होगी, घर की मजबूत बनाई छत नहीं टपकती होगी। सांझ दीप जलता होगा, उसकी रोशनी से घर का कोना कोना मुस्कुराता होगा। हाँ जी, अब भी घर में सांझ दीप जलता है। लेकिन सिर झुकाए हुए सचिन अकेला ही प्रसाद लेकर वापिस घर के अंदर आया। उसकी अम्मा ने सिलाई मशीन पर नया कुर्ता पायजामा सिलकर नजरें मशीन से हटाई, उसे देखा। उसकी आंखों में काली घनघोर घटा के बावजूद बिजली सी कुछ चमक आई। आ गए बेटा सचिन। हाँ जी अम्मा, प्रसाद लाया हूँ। शाबाश, खुश रहो। यह नया कुर्ता पायजामा पहनो, हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तुम्हारी पसंद के मोतीचूर के लड्डू और अनरसे की गोलियां बनाई हैं। अम्मा प्लीज, कचौरी सब्जी भी बनाओ, तो मेरे चारों दोस्तों को भी दावत में बुलाऊंगा, प्रसाद भी खिलाऊंगा। भाभी, कचौरी सब्जी बनाओ, हमारा सचिन समझदार हो गया है, इसका लाड़ दुलार करो। बरखा दादी की भांति काशी विश्वनाथ का प्रसाद हमारे लिए लाया है। जैसी दादी वैसा ही।

0: पोता है। रघु, सब तुम्हारी समझदारी, त्याग और केयर का नतीजा है। अम्मा ने चाचा की तारीफ की तो बाबूजी ने भी गर्व से कहा, हमारा लड़का फेयर है और हमारा भाई केयर टेकर अच्छा है। बाबूजी फोन दीजिए, मणि, शामू, सुदामा और सुंदर को बुलाना है। हाँ बेटा, खुश रहो, यह लो फोन, जिसे चाहो बुलाओ। बाबूजी ने उसे मोबाइल फोन दिया। अम्मा रसोई घर में गई। सचिन ने सभी मित्रों को फोन करके दावत में बुलाया। नया कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो गया। भगवान के सामने सांझ दीप जलाकर सुमिरन किया। सांझ दीप की ज्योति से घर का चमकता हुआ निखरता हुआ चित्र जिंदगी के कैनवास पर उभर रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा ने दरवाजा खोला तो चारों मित्रों ने हंसते मुस्कुराते सचिन को जन्मदिन की बधाई दी। श्यामू ने खुश होकर कहा, बधाई हो सचिन, हैप्पी बर्थडे, देखो हम तुम्हारे जन्मदिन पर किसे लाए हैं। मणि ने उत्साह से कहा, बाबा जी बारिश में भीग गए हैं, इन्हें सूखे वस्त्र पहनने को दो ताकि सर्दी जुकाम ना हो। सांझ दीप की रोशनी में सचिन, चाचा, बाबूजी, अम्मा और सरिता साफ साफ बाबा जी को देख रहे हैं। सुदामा ने कहा, ये हमें तुम्हारे घर के बाहर मिले, हमने इन्हें तुम्हारे जन्मदिन की दावत के बारे में बताया, जन्मदिन का सुनकर आशीर्वाद देने आया हूँ। बाबा जी ने सचिन के सिर पर हाथ रखा, गदगद होकर बोले, बेटा जी तुम्हारे दोस्तों ने जन्मदिन की दावत को बताया तो मुझसे घर के बाहर खड़ा रहना, बारिश में भीगना एवं बीमार होना नहीं हो पाया। सचिन और उसके दोस्त हंसने लगे। सचिन एकाएक पुकारने लगा, देखो अम्मा, इन्हें पहचानो, बाबूजी कुछ तो बोलिए, रघु चाचा तो पहचान गए हैं, सरिता बहना हमारे बाबा जी दादा जी आए हैं। सभी खामोश है, आश्चर्य से बाबा जी का मुंह ताक रहे हैं। रघु पहलवान, दावत के लिए स्वागत नहीं करोगे? रघु बौचक्का होकर बाबा जी को देख रहा है तो अम्मा ने कहा, आइए बाबा जी, आपका ही घर है। वेलकम वेलकम, सरिता ने कहा। क्या वेलकम? बाबा जी ने पोती से पूछा। आपका स्वागत है दादाजी, सरिता ने कहा। बाबा जी ने सांझ दीप की टिमटिमाती लौ की भांति दोनों हाथों को जोड़कर भगवान के समक्ष शीश झुका दिया।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपर्णा गोरे की कहानी सांझ दीप। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं रेणु पटेल। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में तुलसीदास का भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेणु पटेल के स्वर में तुलसीदास का भजन। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज में सीतेश आलोक का लिखा गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप रेणु पटेल के स्वर में गीत और भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को फिल्म बेवफा में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में फिल्म ताल से। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन ए आर रहमान।

कैलाश खेर की आवाज में अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम था सलामी इश्क। आइए अब सुनते हैं समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, आवाज है कुमार सानू अलका याग्निक की। फिल्म का नाम जीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं M.S. सुबुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में रवि पवार का लिखा गीत। आइए अब सुनते हैं कैसर उल जाफरी का कलाम पंकज उदास की आवाज़ में।

0: अभी आप सबरस कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5

0: अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी, क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
3: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹3,000 जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है।

0: है, आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
3: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी

0: कमी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the same. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
3: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem

0: ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment, and growth.
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, पिछले साल हमने

0: और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिले एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिले एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कही।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है।
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चीप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबरा मीटिंग की मेजबानी की जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक़े राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि यह भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनत को फरोग देना है जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तहकीक तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निज़ाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने आज कहा कि वो अपने माशी मफादात के तहफ्फुज और तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेगा। वजारत खारजा ने कहा कि भारत अपने 140 करोड़ शहरियों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ ज़राए और बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वजारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतही हुकाम से बातचीत हुई है। भारत ने दो तरफा ताल्लुकात पर उसके मुमकिन असरात वाज़ह कर दिए हैं। वजारत खजाना कल से नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब सफर के लिए माली एयानत के मौजू पर दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। वजारत ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में रियासत और मरकजी खित्तों के वज़राए खजाना और खजाने के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कई रियासतों के वज़राए आला और वज़राए खजाना भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है। उन्होंने भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोबगे और वजीर खारजा

0: डीएन ढुंग्याल के हमरा भूटान आने वाले भारतीय शहरियों के लिए बैन अल-अक़वामी यूपीआई के दूसरे मरहले का मुश्तरका तौर पर आगाज किया। डॉक्टर जयशंकर थिम्पू भूटान के दो रोजा दौरे पर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई के इस्तेमाल के साथ ये इकदाम भारत और भूटान के दरमियान यूपीआई पर मबनी दो तरफा डिजिटल अदायगी की कनेक्टिविटी को मुकम्मल करता है। इस मौके पर भारतीय इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तौसी से मुतालिक मफाहमतनामे का भी तबादला किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तावुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। जनाब जयशंकर ने वजीर आजम टोबगे और भारत में तैयार करदा 54 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत ई मोबिलिटी और पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भूटान की पेशकदमी की हिमायत कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में आज ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाकए एक छोटे से शहर वडनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेंद्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मुहिम का आगाज जनाब नरेंद्र मोदी के आबाई शहर वडनगर से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी को मुल्क मुकदम के उसूल से बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। इस अभियान के पहले दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अतिया करने के कैंप लगाए गए हैं। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खून अतिया किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। आज शाम आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसके तहत खानदानों खासतौर पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन ने अवामी खिदमत में जनाब मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इजहार करते हुए दिए जलाए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर पुरजोश मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनकी क्यादत और तआवुन के लिए भरपूर सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस दौरान वो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अवामी फलाह बहबूद के पुख्ता अज़्म के साथ काम करते रहे हैं। सेवा और सुशासन के विजन से मुतासिर होकर हुकूमत जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए काम कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज में माई गोफ प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके लिए इस विजन को अमली शक्ल देने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
1: 2014 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभाला तो उनके तर्ज हुक्मरानी में एक अहम तस्वर नुमाया तौर पर सामने आया। ये तस्वर आवाम और शहरियों के दरमियान बराह रास्त और मुसलसल राबता कायम करना है। इस नजरिए के तहत जुलाई 2014 में भारत के शहरियों की शमूलियत के लिए प्लेटफॉर्म माई गोफ का तस्वर पेश किया गया और इसे शुरू किया गया। ये प्लेटफॉर्म हुक्मरानी और पॉलिसी साजी में अवाम की साझेदारी को यकीनी बनाने का एक अहम जरिया बन चुका है।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गोव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे।

0: आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: जुलाई 2026 तक तकरीबन 6.5 करोड़ शहरी माई गॉव प्लेटफॉर्म पर अपना इंदराज कर चुके थे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: देही तरक्की व ज़रात और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने अहलकारों को हिदायत दी है कि वो उन मौाक़ों की निशानदही करें कि किस तरह विकसित भारत जी राम जी स्कीम गांवों को तरक्की याफ्ता और खुदकफील बनाने में माविन साबित हो सकती है। स्कीम से मुतालिक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि रोजगार के मौाक़े पैदा करने के साथ साथ इस स्कीम को पायदार असासे कायम करने और देही बिरादरियों के लिए देरपा फायदे और देही मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए कारामद साबित होना चाहिए। जनाब चौहान ने सभी अहदेदारों से अचानक मुआयना करने की हिदायत की ताकि स्कीम के तहत शुरू किए गए कामों का जायजा लिया जा सके। कोयले की वजारत ने आज नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला कानों की नीलामी के 16वें दौर का आगाज किया। इस मरहले में 25 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है, जिनमें 21 काने मुकम्मल तौर पर और 4 जुजवी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं। ये काने कोयला पैदा करने वाली 9 रियासतों में वाक़ हैं। वजारत के मुताबिक आज की तारीख तक कुल 147 कोयला कानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे सालाना मुतवक्का आमदनी 47,500 करोड़ रुपये से जायद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE से कहा है कि वो छठी जमात के तलबा के लिए लाजमी तौर पर 3 जबानों की पॉलिसी को 2027 के तालीमी सेशन तक मौखर करने पर गौर करे ताकि तलबा को नए निज़ाम में मुंतकिल होने में आसानी फराहम हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश आज पूरे मगरबी बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर ख़वातीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अन्नपूर्णा योजना मगरबी बंगाल में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अमल को तेज़ करने में अहम रोल अदा करेगी। मर्दों की क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 मैचों की बैन अल-अक़वामी T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 221 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान को जीत के लिए 222 रन का निशाना दिया है। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत शुरुआती 2 मैच जीतकर पहली ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा, जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म जनाब मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां।

कहकशां कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सईद राई की लिखी ये गजल चित्रा सिंह की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अजीम मलिक का कलाम, आवाज चंदन दास की।

हर्ष ब्रह्म भट्ट के लिखे इस कलाम को गाया था मिताली सिंह ने। गजलों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा दोस्तों, इस अंतराल के बाद कहीं जाइएगा नहीं।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। कहकशा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।

अभी आप सुन रहे थे हरी हरन को। आइए कार्यक्रम के अंत में आप सुनते हैं हर्ष ब्रह्म भट्ट की लिखी ये खूबसूरत गजल, आवाज भूपेंद्र सिंह की।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कहकशां कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आदाब, नमस्कार और आप सभी संगीत प्रेमियों का दिल की गहराइयों से आज के कार्यक्रम में स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त एकता शुक्ला। कहते हैं कि संगीत में वह जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की अनकही बातों को बयां कर देता है। कभी कोई धुन हमें बीते हुए खूबसूरत लम्हे में ले जाती है तो कभी कोई नगमा किसी अपने की यादों को फिर से ताज़ा कर देता है। फिल्म संगीत की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है जहां हर सुर एक कहानी कहता है और हर धुन एक एहसास के साथ आती है। जिंदगी की कोई ना कोई खूबसूरत तस्वीर लेकर हर गीत आता है। तो आइए आज की इस सुरीली महफिल में कुछ पल अपने नाम करें, दिल को संगीत के हवाले करें और खो जाएं उन सदाबहार नगमों के जादू में जो हर दौर में हमारे दिल पर राज करते आए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आज की ये संगीत यात्रा आपके चेहरे पर

कभी कभी मन की बातें कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और तब आँखें, यादें और संगीत ही दिल का हाल बयां करता है। प्रेम की राह में रूठना, मनाना, इंतज़ार करना और अपने प्रिय की राह तकना, ये सब ऐसे एहसास हैं जिनमें एक मीठी सी कसक होती है और एक अनोखा अपनापन भी। जब प्रीतम रूठ कर बाहर चला जाए तो प्रेसी क्या करे, नम आँखों से और एक दिल की पुकार के साथ करती है इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार।

कहते हैं कि जब दिल मोहब्बत से भर जाता है तो हर खूबसूरत चीज़ किसी अपने के नाम करने को जी चाहता है। चांद की चांदनी हो, फूलों की खुशबू हो, या फिर रंगों से सजी कोई हसीन महफिल, दिल बस यही सोचता है कि इस सारी खूबसूरती को अपने महबूब के नाम कर दे। मोहब्बत भी कितनी अनमोल शय है ना, जो किसी की मुस्कराहट में अपनी दुनिया तलाशती है और किसी की एक झलक पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही नाजुक एहसासों, दिलकश रंगों और बेपनाह चाहत की खुशबू से सजी ये है हमारी अगली पेशकश।

कभी कभी दिल के एहसास हमारी अपनी ही समझ से परे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब बीती हुई बातों को याद नहीं करेंगे, अब किसी पुरानी याद को अपने दिल पर हावी नहीं होने देंगे, मगर दिल तो दिल है, अपनी ही धुन में चलता है। कभी होठों पर मुस्कान सज जाती है तो कभी उसी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द की नमी आंखों तक चली आती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाने की जितनी कोशिश करें वे उतनी ही शिद्दत से हमारे करीब लौट आती हैं। मोहब्बत की भी अजीब दास्तान है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी अपने ही जज्बातों के सामने बेबस कर देती है।

कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त के साथ भले ही दूर चले जाएं, मगर उनकी यादें दिल के बेहद करीब होती हैं। कभी कोई पुरानी मुलाकात याद आती है तो कभी किसी की हंसी कानों में गूंजती है, तो कभी पीते हुए लम्हों की एक छोटी सी बात आंखें नम कर जाती है। यादों का भी अपना एक अलग ही संसार होता है, जहां गुजरा हुआ कल भी हमारे साथ

चलता है और किसी की मौजूदगी हर पल एहसास दिलाती है कि जैसे वो छू रही है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाने के बाद भी हमेशा यादों का हिस्सा बने रहते हैं। उनकी बातें, उनकी मोहब्बत, उनके साथ बिताए हुए पल कभी पुराने नहीं पड़ते। तो आइए यादों के इस खूबसूरत और भावुक सफ़र में कुछ पल बिताते हैं इस नगमे के साथ।

तो दोस्तों, आज इस सुरीली महफिल से विदा लेने का वक्त भी आ गया है। उम्मीद है सुरों के इस सफर ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा और कुछ मीठी यादें ज़रूर ताज़ा की होंगी। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को अपने दिल में संजोए रखिएगा। फिर मिलेंगे, मैं आपकी दोस्त एकता शुक्ला संगीत की एक नई महफिल में कुछ नए नगमों के साथ। कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। हमारा नंबर है 800-49-26-250। नंबर पुनः सुन लीजिए, 800-49-26-250। और अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं उस्ताद निशात खां। आइए सुनते हैं इनका राग चांदनी कल्याण में सितार। तबले पर संगत कर रहे हैं सफाकत अहमद खां।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद निशात खां का सितार वादन सुन रहे थे राग चांदनी कल्याण में। तबले पर संगत कर रहे थे शफाकत अहमद खां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्ले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।